FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 27वीं तिथि, तदनुसार 18 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 और 40 सेकेंड हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हिंदी समाचार सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। समाचार के तुरंत बाद हम आपको लिए चलेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों के लिए आकाशवाणी के मुंबई केंद्र।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से कल लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है।
2: अब जैसे जालंधर है, यहाँ की पहचान खेलकूद से है, तो जालंधर कैंट स्टेशन में पंजाब की खेल परंपरा और लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। आप आनंदपुर साहब स्टेशन जाएंगे तो वहाँ तख्त श्री केसगढ़ साहब की झलक दिखाई देती है। कालका स्टेशन पर श्री काली मंदिर के दर्शन होंगे। यानी हमारे स्टेशन अब हमारी संस्कृति सभ्यता के प्रतीक भी हो गए हैं।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृत शेरहटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की सेवा, उनके जीवन स्तर में सुधार और प्रगति के नए अवसर सृजित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिक देवभव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करते हुए पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। खेलों में हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय

0: मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद अंतिम चार में पहुंची। इसके परिणाम स्वरूप क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया, जिससे सिंधु को वॉकओवर मिल गया। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

लीजिए सुनिए आज का चिंतन। शास्त्रों में कहा गया है, शब्द से इंसान की पहचान होती है। शब्द एक तरह का भोजन ही है, अगर स्वयं को अच्छा न लगे तो दूसरों को मत परोसिए। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुने भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा में प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारा अगला कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में होगी श्रृंखला सायंकालीन संधि प्रकाश राग। कलाकार हैं गायिका विदुषी आरती अंकलीकर। पुराने फिल्मी गीत सुनिएगा भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। हमें रही प्यार के ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे 7:30 पर। त्रिवेणी कार्यक्रम 8:15 पर। चित्रलोक ये कार्यक्रम सुनिएगा 8:30 पर।

गायक और संगीतकार भूपेंद्र सिंह पर केंद्रित होगा आज के फनकार कार्यक्रम। सुबह 9:30 पर और रात 9:30 पर। दस बजे गीतों भरी कहानी, भाई हो तो ऐसा, लेखक और वाचन स्वर श्याम माहेश्वरी का, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी।

11:30 पर मैटिनी शो के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे रूपक जल है तो कल है। इसके अंतर्गत पर्यावरण विशेषज्ञ शुभज्योत मुखर्जी से यूनुस खान की बातचीत। प्रस्तुति जुबैर खान की। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम सुनिएगा 12:05 पर। 1 बजे आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सुरीला सफर। सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम सुनिएगा 2:30 पर। मन चाहे गीत, ये कार्यक्रम 3 बजे से। दिन में 3:30 पर नाट्य तरंग कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे नाटक जमीन आसमान, लेखक हैं अनूप सेठी। शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिएगा लेखिका निर्देशिका सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। छाया गीत कार्यक्रम का पुनर्प्रसारण शाम 5 बजे से। तराने नए पुराने, ये कार्यक्रम सुनिएगा 5:30 पर। संध्या रंजन, ये कार्यक्रम 6:35 पर शाम।

सरिता कार्यक्रम में होगी श्रृंखला सायंकालीन संधि प्रकाश राग। अभिनेत्री जरीना वहाब द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 7 बजे से। ज्ञान विज्ञान का कार्यक्रम जिज्ञासा का प्रसारण किया जाएगा शाम 7:45 पर। रात 8 बजे हवा महल कार्यक्रम के अंतर्गत सुनो कहानी विश्वास का तीसरा भाग आपको सुनवाएंगे। ये है मुंशी प्रेमचंद की कहानी का रूपांतरण, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की। चित्रलोक कार्यक्रम रात 8:15 पर। आपके लिए ये कार्यक्रम सुनिएगा रात 9 बजे से। भूपेंद्र सिंह पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम रात 9:30 पर। छाया गीत कार्यक्रम रात 10 बजे से। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम सुनिएगा रात 10:30 पर। झरोखा में ये थी रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने श्री रामचरितमानस गान भाग 253। प्रसंग है अरण्यकांड।

शूर्पणखा से खर दूषण समेत राक्षसी सेना के विध्वंस का वर्णन सुन रावण के अंग प्रत्यंग जल उठे। बालक दिखने वाले दशरथ पुत्रों की वीरता और उनके साथ एक अत्यंत सुंदर स्त्री के होने का समाचार जान रावण सोच में पड़ जाता है। वो जानता है कि देवता, मनुष्य, पशु पक्षी किसी योनि में कोई ऐसा प्राणी नहीं जो उसके सेवकों का भी सामना कर सके। यदि पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए स्वयं भगवान ने ही अवतार लिया है तो वो हट पूर्वक उनसे वैर मोल लेगा और स्वयं प्रभु के वाणों से मारा जाकर मुक्ति प्राप्त करेगा। ऐसा निश्चय कर वो रथ पर अकेला सवार होकर वहां चला जहां सागर तट पर मारीच रहता था।

0: संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला के अंतर्गत आजकल आप सुन रहे हैं सायंकालीन गाए बजाए जाने वाले रागों की चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रही हैं मशहूर गायिका आरती अंकलीकर। इस श्रृंखला की कड़ी में आज सुनिए राग पूरिया कल्याण।
1: संगीत सरिता सुनने वालों को आरती अंकलीकर का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप तो जानते हैं कि हम संधि प्रकाश रागों के बारे में कुछ विवरण, कुछ चर्चा यहाँ कर रहे हैं। इन्हीं रागों में संधि प्रकाश राग पूरिया कल्याण, इसके बारे में मैं आज आपको कुछ बताना चाहती हूँ। कई बार हमने देखा है कि गायक जो है पूर्वा कल्याण और पूरिया कल्याण, इनको एक ही राग समझ के जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पूर्वा कल्याण एक अलग राग है और पूरिया कल्याण अलग है। पूर्वा कल्याण में जो ऋषभ है वो मारवा की तरह और पूरिया कल्याण में ऋषभ जो है पूरिया की तरह लगता है। हालांकि देखा जाए तो इसके स्वर एक ही हैं, लेकिन ये जो ऋषभ का ट्रीटमेंट जो है वो दोनों रागों में अलग है। इसकी वजह से पूरिया कल्याण और पूर्वा कल्याण, ये दोनों अलग दिखते हैं। आज हम पूरिया कल्याण के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पूरिया कल्याण का जो जन्म है मारवा ठाट से हुआ है। आप जानते हैं कि ये सायंकालीन संधि प्रकाश राग है। संध्याकाल में पूर्वी और भैरव ठाट जन्य पूर्वी, गौरी आदि रागों के गाने के पश्चात इस राग को गाना चाहिए। इसका कारण आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि इसमें धैवत जो है शुद्ध लगता है। और पूरिया, पूरिया धनाश्री, श्री, लेकिन बाकी जो राग हैं उनमें धैवत कोमल है, मारवा में तो शुद्ध है। तो इन रागों को गाने के बाद, यानी पूरिया धनाश्री पूरिया, इन रागों के बाद कोमल ऋखब और शुद्ध धैवत लेके जो राग आते हैं उनकी बारी आती है। तो ये पूरिया कल्याण जो राग है संधि प्रकाश राग होने के साथ साथ एक परमेल प्रवेशक राग भी है। कोमल ऋषभ के साथ शुद्ध धैवत होने के कारण ये राग अपने पश्चात आने वाले रे ध शुद्ध वर्ग के रागों की पूर्व सूचना देता है। रे ध शुद्ध वाले रागों के पूर्व एवं रे ध कोमल वाले सायंकालीन संधि प्रकाश रागों के समय, यानी कि 4 से 7 बजे सायंकाल के अंतिम चरण में इस राग को गाना चाहिए। वैसे देखा जाए तो प्रचार में तो लोग 11 बजे तक भी इसको गा देते हैं, बजा देते हैं।

लेकिन ये उसका सही समय नहीं है। इसको 7 बजे यानी कि सायंकाल के अंतिम चरण में ही गाना चाहिए। इसका वादी स्वर है गंधार, संवादी है निषाद। पूरी अंग से पूरिया कल्याण जो जाता है हम देख चुके हैं। इसका आरोह अवरोह इस प्रकार है।

राग पूरिया कल्याण पर आधारित अब एक गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है बदलते रिश्ते।

संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला के अंतर्गत आजकल आप सुन रहे हैं सायंकालीन गाए बजाए जाने वाले रागों की चर्चा। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया मशहूर गायिका आरती अंकलीकर ने।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। अभी आप सुन रहे थे उमा देवी और सुरैया की आवाजों में शकील बदायूनी का लिखा ये गाना। संगीतकार थे नौशाद और फिल्म थी दर्द। आइए अब सुने गेटवे ऑफ इंडिया फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। रचना है राजेंद्र कृष्ण की।

गेटवे ऑफ इंडिया, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। शब्दकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार मदन मोहन। ये गाना भी मदन मोहन का स्वरबद्ध किया हुआ। लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें। इंदिवर के बोल फिल्म है छोटे बाबू।

आवारा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के बाकी गीत छोटे से अंतराल के बाद सुनवाएंगे।

0: देवदास फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुबारक बेगम की आवाज में। साहिल लुधियानवी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ

0: एडल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

कुमार बाराबंकी का लिखा ये गाना था, फिल्म थी बारादरी और इसे गाया मुबारक बेगम और लता मंगेशकर ने। आज दोस्तों मुबारक बेगम की याद का दिन है। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के कुछ गाने उन्हीं की याद को समर्पित थे। अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है।

FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

उगते सूरज की किरणें आप सभी के जीवन में रोशनी लाएं, फूलों की महक ताजगी दे आप सभी को। दिन बीते आप सभी का बहुत ही शानदार, हर पल नई खुशी मिले आप सभी को। सुप्रभात, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नमस्ते रोहतास में। तो हमेशा की तरह आज भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुविचार से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है।

श्रोताओं, आज है 18 जुलाई, तो आइए नज़र डालते हैं आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर। आज ही के दिन 18 जुलाई को 1947 में भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को शाही स्वीकृति मिली थी। 1980 में आज ही के दिन दो घटनाएं घटी थीं। जी हाँ, पहली घटना ये घटी कि 18 जुलाई को 1980 में भारत में निर्मित उपग्रह प्रक्षेपण वाहन SLV-3 से रोहिणी उपग्रह को कक्षा में भेजा गया। और 1980 में आज ही के दिन यानी कि 18 जुलाई को टेलीविज़न का पहला रंगीन प्रसारण मद्रास से किया गया। उन्नीस सौ 1994 में आज ही के दिन ब्राज़ील ने चौथी बार विश्व कप फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। 2003 में आज ही के दिन वाई वेणुगोपाल रेड्डी रिजर्व बैंक के नए गवर्नर चुने गए। अमेरिका ने 50 करोड़ डॉलर का पाक का कर्जा माफ़ किया आज ही के दिन 2004 में। अट्ठारह जुलाई को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों पर डालते हैं नज़र, तो पाते हैं कि 18 जुलाई को 1861 में भारत की पहली महिला स्नातक और पहली महिला फिजिशियन कादम्बिनी गांगुली का जन्म हुआ था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का जन्म भी 18 जुलाई को 1918 में हुआ था। प्रसिद्ध गज़ल गायक मेहंदी हसन 18 जुलाई 1927 को जन्म लिए थे। 1935 में आज ही के दिन काम कोटी पीठ कांचीपुरम तमिलनाडु के शंकराचार्य

जयेंद्र सरस्वती का जन्म हुआ था। भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार राजेश जोशी का जन्म भी 18 जुलाई को 1946 में हुआ। हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री, जी हां, प्रियंका चोपड़ा का भी आज ही के दिन यानी कि 18 जुलाई को 1982 में जन्म हुआ है। और भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना, जो कि चमकती हुई महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इनका भी जन्म 18 जुलाई को 1996 में हुआ है। और अब 18 जुलाई को दिवंगत हुए व्यक्तियों पर डालते हैं नज़र, तो कुछ व्यक्तियों के नाम हम यहाँ लेना चाहेंगे। 18 जुलाई को 1948 में भारतीय सेना के वीर अमर शहीद पीरू सिंह का निधन हो गया। 1998 में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी अब्दुल हमीद कैसर का निधन हो गया। भारतीय शास्त्रीय गायक जगदीश प्रसाद, जी हाँ, इनका निधन 2011 में आज ही के दिन हुआ। 18 जुलाई को 2012 में हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का निधन हो गया। 18 जुलाई को 2017 में सुप्रसिद्ध भारतीय कवि, संस्मरणकार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा समीक्षक अजीत शंकर चौधरी का निधन हो गया। 18 जुलाई को 2022 में भारतीय सिनेमा के ख्याति प्राप्त पार्श्व गायक और गजल गायक भूपिंदर सिंह का निधन हो गया।

तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी 18 जुलाई के बारे में। और अब चलिए एक भक्ति रचना सुनते हैं, तृप्ति शाकिया की आवाज़ में, रवि चोपड़ा का लिखा हुआ ये गीत, संगीत आबिर मुखर्जी का है और एल्बम है छांव तेरी चुनरी की।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: विज्ञापन के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नमस्ते रोहतास में। और अब इस कार्यक्रम में आइए एक नज़र डालते हैं स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर। नीट परीक्षा में रोहतास जिला के उत्सव राज, हर्ष वर्मा और सत्यम कार्तिकेय ने रोहतास जिले का मान बढ़ाया। जी हां, नीट 2026 के परिणाम घोषित होते ही रोहतास जिले में भी खुशी की लहर दौड़ गई। रोहतास जिले के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं ने इस प्रतिष्ठित मेडिकल

प्रवेश परीक्षा में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पूरे देश में जिले का नाम रोशन किया है। रोहतास जिले के चेनारी प्रखंड अंतर्गत शाहपुर गांव निवासी होनहार छात्र उत्सव राज ने शानदार सफलता हासिल करते हुए ऑल इंडिया रैंक 17149 प्राप्त किया है। वहीं EWS कैटेगरी में उन्होंने देश भर में 1953वां स्थान हासिल किया। उत्सव के पिता अजीत कुमार सिंह बिहार पुलिस में ASI हैं और माता नीलम देवी गृहिणी हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सेमरा निवासी, जी हां, रोहतास जिला के सेमरा निवासी सत्यम कार्तिकेय सिंह ने नीट परीक्षा में 27843वीं ऑल इंडिया रैंक और EWS कैटेगरी में 3341वीं रैंक प्राप्त की है। और हर्ष वर्मा ने भी नीट में 6024वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल कर रोहतास जिले का गौरव बढ़ाया है। और इसके अलावा भी रोहतास जिले और कैमूर जिले में ढेर सारे छात्रों ने नीट परीक्षा में सफलता प्राप्त किया है। विज्ञान विषय पर निबंध प्रतियोगिता संगोष्ठी कैमूर जिले में आयोजित होगा। जी हां, कैमूर जिले में यूथ एंड इको क्लब और साइंस एंड मैथ्स क्लब में वार्षिक कैलेंडर के जरिए गतिविधियां आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न तिथियों को होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। प्रधानाध्यापक, नोजल शिक्षक, क्लब के सदस्य आदि इस कार्यक्रम के आयोजन की रूपरेखा तैयार करेंगे। छात्रों के रचनात्मक आविष्कार शैली दृष्टिकोण के विकास के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करने के लिए विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे नए आविष्कारों के बारे में जानकारी दी जाएगी। फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए मुंगेर जाने के लिए रोहतास की टीम कल रवाना हो गई। 65वें सुब्रतो मुखर्जी कप अंडर 15 बालक यानी अंडर 15 बालक के लिए रोहतास जिले से चेनारी की फुटबॉल टीम का चयन किया गया है। यह टीम रोहतास जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए मुंगेर में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेगी। यह आयोजन 20 जुलाई तक चलेगा। कैमूर के नए जिला खेल पदाधिकारी के पदस्थापन के उपलक्ष्य में जिला खेल कार्यालय में कल उनका भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में जिले के शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों, खेल प्रेमियों, खिलाड़ियों तथा खेल से जुड़े लोगों ने पुष्पगुच्छ एवं अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत किया। आज से कैमूर में CBSE क्लस्टर वॉलीबॉल चैंपियनशिप शुरू हो रहा है। कैमूर जिला पहली बार CBSE क्लस्टर 3 वॉलीबॉल चैंपियनशिप बालक एवं बालिका वर्ग की मेजबानी करने जा रहा है। यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर की अंतर विद्यालयी प्रतियोगिता आज 18 जुलाई से शुरू होकर 22 जुलाई तक चलेगी। रोहतास जिले में आगामी श्रावणी मेले में सुरक्षा व सुविधा के लिए कल किया गया बैठक। आगामी श्रावणी मेला को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने को लेकर रोहतास जिला के मां ताराचंडी धाम परिसर में कल एक बैठक हुई। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं ताराचंडी धाम समिति के प्रतिनिधियों ने मेले की तैयारियों और विधि व्यवस्था की समीक्षा करते हुए आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा की।

रोहतास जिले में सोन नदी का कटाव रोकने के लिए नासरीगंज प्रखंड में बनेगा 10 किलोमीटर लंबा तटबंध। सिंचाई विभाग के अधिकारियों की टीम ने कल किया निरीक्षण, कहा पहले बोल्डर पिचिंग और फिर बनेगा मिट्टी का तटबंध। ये गांव बरसात के दिनों में कटाव का दंश झेलते हैं, इसलिए ऐसा किया जाएगा। कैमूर जिले में 4,243 और मोहनिया में 4,394 राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। हजारों मामलों की जांच चल रही है। रोहतास जिले में मृत रैयतों की जमाबंदी अब होगी स्वतः अपडेट। सरकार ने

शुरू की नई व्यवस्था। उत्तराधिकार के आधार पर विभाग स्वयं करेगा दाखिल खारिज की प्रक्रिया। रोहतास डीएम ने 25 जुलाई तक 100% सीएमआर आपूर्ति करने की दी पदाधिकारियों को चेतावनी। रोहतास जिले में खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत सीएमआर आपूर्ति की समीक्षा के दौरान कल डीएम ने धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी जताई और चेतावनी देते हुए पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिले में अब तक अधिप्राप्त धान के विरुद्ध 94.13 यानी 94.13% सीएमआर की आपूर्ति राज्य खाद्य निगम की जा चुकी है। जिले के औसत से कम आपूर्ति करने वाले 3 प्रखंड हैं, चेनारी, शिवसागर और करगहर। तो डीएम ने इन सभी प्रखंडों को चेतावनी दी। कैमूर जिले में 28 जुलाई तक पैक्स व्यापार मंडल सीएमआर की आपूर्ति करेंगे। कैमूर जिले में 91% सीएमआर की आपूर्ति हुई है, इसके लिए डीएम ने निर्देश दिए हैं। कैमूर में युवा और आम नागरिक नियमित व्यायाम कर स्वस्थ जीवन शैली अपना सकेंगे। कैमूर के भभुआ के पुराने प्रखंड कार्यालय भवन में मल्टी जिम शुरू। रोहतास और भभुआ जिले में आज से 22 जुलाई के बीच भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। जी हां, 18 से 22 जुलाई के बीच मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि खरीफ फसल को लेकर बिहार कृषि विश्वविद्यालय की ओर से किसानों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की जा रही है। तो किसान इस तरह के निर्देश अपने मोबाइल के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। छात्र छात्राओं के नवाचार वैज्ञानिक सोच को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलेगा। इंस्पायर अवार्ड में रोहतास जिले में 15 अगस्त तक छात्रों का होगा पंजीकरण। प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता में बनेगी 3 सदस्यीय टीम। 20 जुलाई तक नोडल शिक्षक का नाम प्रधानाध्यापकों को देना होगा और इसके बाद छात्र छात्राओं का पंजीकरण कराया जाएगा। इनोवेशन को इंस्पायर अवार्ड के पोर्टल पर करना होगा अपलोड। इनोवेशन आइडिया पर काम करने के लिए छात्रों को मिलेंगे 10,000 रुपये। तो ये थी स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां और अब लीजिए सुनिए मुकेश की आवाज में अनारी फिल्म का एक गीत। शैलेंद्र की रचना है, शंकर जयकिशन का संगीत है, लीजिए सुनिए।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है और आप सुन रहे हैं प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। नमस्ते रोहतास कार्यक्रम में अब आइए समाचार पत्रों की सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। दैनिक जागरण अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखता है कि देश में चली स्वदेशी तकनीक वाली पहली हाइड्रोजन ट्रेन। हरियाणा के जिंद से सोनीपत के बीच चलने वाली ट्रेन को कल पीएम नरेंद्र मोदी ने दिखाई हरी झंडी। 5वां देश बन गया है भारत।

मतदाता सूची में नाम नहीं होने से खत्म नहीं होती नागरिकता। जी हां, हिंदुस्तान अखबार लिखता है कि बिहार एसआईआर मामले में कल सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि एसआईआर से बिहार में 65.64 लाख मतदाताओं के जो नाम हैं वो कट जाएंगे और इस पर अब सुनवाई भी नहीं हो सकती है। बिहार में पुलिस को मिले 84 नए वाहन, दैनिक भास्कर ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। प्रभात खबर ने अपने मुख्य पृष्ठ पर छापा है कि नीट यूजी परीक्षा में बिहार से 45% छात्र सफल हुए, 4 छात्र टॉप 138 में। बिहार के 152,924 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी जिसमें 68,948 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। दैनिक भास्कर लिखता है कि 5.81 लाख शिक्षकों का तबादला किया जाएगा, 29 जुलाई से खुलेगा पोर्टल, 5 अगस्त तक करना होगा आवेदन। दैनिक जागरण लिखता है कि बिहार का अपना एआई मॉडल होगा, सरकारी काम पारदर्शी होंगे, सीएम सम्राट चौधरी। और अब इसी के साथ नमस्ते रोहतास कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

नमस्ते रोहतास, ये प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 8 बजने वाले हैं। आइए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र समाचार प्रभात के लिए।

0: पर विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, दो नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।
1: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
1: हम नागरिक देवो भवः इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य में 3 नए

0: आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में तीन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन तीन परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का पहला चरण है। इसके अलावा हटपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है।
2: मैं यह कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से यह कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो पूरा क्षेत्र है, ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनेशिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है।
3: वर्किंग टू स्ट्रेंथन ईच अदर्स,
4: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
3: In a variety of areas with all of Europe.

0: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
1: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है, और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था, बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया था। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब मैं लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पर बैठने की व्यवस्था करते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाया।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम 4 में पहुंची हैं। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
3: हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: मौसम विभाग ने उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
4: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, न धुआं न प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नव भारत टाइम्स के शब्द हैं, हाइड्रोजन की ताकत, स्वदेशी तकनीक, पटरी पर दौड़ी देश की ऐसी पहली ट्रेन। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर नागरिकता का प्रश्न उठाते हुए लिखा है, समस्या ये है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। हिंदुस्तान ने एसआईआर से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, एसआईआर में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं, लिखता है दैनिक भास्कर। पॉलीमर शीट कंपनियों से निविदाएं मंगाई, 18 अगस्त को टेंडर। जनसत्ता ने आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान दिया है, कमजोर मानसून आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: अभी आप सुन रहे थे समाचार प्रभात, इसे हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से जी हाँ रिले कर रहे थे।

अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सासाराम केंद्र FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए देशभक्ति संगीत कार्यक्रम।

झुका सकते नहीं। अभी आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में लीजर फिल्म का ये गीत सुना, जिसे लिखा था शकील बदायूनी ने और संगीत दिया था नौशाद ने। तो शकील बदायूनी के लिखे हुए इसी देशभक्ति गीत के साथ ही हमारा आज का यह देशभक्ति संगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 8:20 हुए हैं। अब आप सुनेंगे पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी। पसंद आपके कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए, आप सभी श्रोताओं में से जो भी खत हमें कुछ श्रोताओं ने भेजे हैं तो हम तक जो पहुंच चुके हैं उन पत्रों को हम शामिल करते हैं इस कार्यक्रम में। ये पहला पत्र आया है गढ़नोखा लालगंज बिहार से राजकिशोर सिंह चौहान, बड़क सिंह चौहान और आर के सिंह चौहान की तरफ से। इन सभी श्रोताओं ने अपने इस पत्र में सड़क फिल्म के गीत तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, जी हाँ, ये सुनना चाहा है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। और ये हैं सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा से भाई कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा। ढोली सकरा से हैं जयंत कुमार बैरागी।

तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। सड़क फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की युगल आवाज में। समीर के बोल थे, नदीम श्रवण का संगीत था। और अब पसंद आपके कार्यक्रम में सुनवाते हैं आपको फुटानी चौक नरहन एस्टेट के श्रोताओं की फरमाइश को। जी हाँ, इन श्रोताओं ने फिल्म सांझ और सवेरा फिल्म के गीत आ जहूँ ना आए बालम, इसके लिए हमें ये पत्र लिखकर भेजा है। जी हाँ, लिखने वाले हमारे श्रोता हैं ललन मिश्रा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। मिसर मोहल्ला नरहन बाजार से हैं फटफटिया झा, गुंजन परासर, अमित, सुमित, छोटू, बी के सुरकनैया। गोकुल चौक गंगजला सहरसा से हमें खत लिखकर भेजा राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार, कुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी कुमारी, फलना झा और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। नया नगर सुपौल से हैं श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार और गजेंद्र कुमार निराला। तो चलिए आप सभी को सुनवाते हैं सांझ और सवेरा फिल्म का लिया गया गीत मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की युगल आवाज में। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत से संवारा शंकर जयकिशन ने।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

फूल तुम्हें भेजा है खत में। सरस्वती चंद्र फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना मुकेश और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में। इंदिवर के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। इस गीत को सुनना चाहा था थाना मोड़ गढ़नुखा रोहतास से मुन्ना भाई मंसूरी, नजमुन निशा, सद्दाम मंसूरी, नगमा निशा, लाल बाबू।

रन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली, शैवाना और शाहबाजनी। ब्रह्मपुरा मनीगांछी से ये पत्र लिखकर भेजा है अच्छे लाल रॉय, पानू देवी, मुकेश कुमार रॉय, प्रेम कुमार और प्रिंस कुमार ने। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पसंद आपकी। पसंद आपकी कार्यक्रम के अंत में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं दोस्त फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। दोस्त फिल्म का ये जो गीत है दुनिया जब जलती है, इसे सुनना चाहा सादुल शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान ने। छत्तीसगढ़ से आप हैं जी हाँ दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू, जतुका किशनपुर से हैं आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से वकील राही, फिरोज आलम, नाज प्रवीण, अर्श बाबू, प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले ने हमें ख़त लिखा है गौतम नगर जिला नांदेड़ से, कोटवा नारायण बाबा पट्टी बलिया से हमें पत्र लिखकर भेजा ओम प्रकाश रॉय, उषा रॉय, अमित कुमार और हैप्पी रॉय ने, तुबिहा नेवादा गाजीपुर से आप सब हैं प्रतीक रॉय, रोशनी रॉय, प्रांजल रॉय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश रॉय, प्रीति रॉय और नवनीत रॉय का ये पत्र है। तो चलिए आप सभी को सुनवाते हैं दोस्त फिल्म का ये गीत।

और श्रोताओं, चलते चलते आपको कार्यक्रम का पता बता देते हैं। हमारे कार्यक्रम का पता है, कार्यक्रम पसंद आपकी द्वारा, केंद्र निदेशक, आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 821115। तो अब इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम पसंद आपकी से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

0: पसंद आपके कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अपनी फरमाइश के फिल्मी गीत। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी पटना से प्रादेशिक समाचार। तब तक कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 601

0: 21 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: बरसात के मौसम में कई प्रकार के रोगों से पशु का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, जिससे पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
2: इसके लिए वर्षा ऋतु के दौरान कुछ अपनाने योग्य बातों का ध्यान रखें। बारिश से पहले पशुओं की पशुशाला के छत की मरम्मत कर दें, ताकि पानी न टपके। पशुशाला की खिड़कियों को खुली रखें तथा गर्मी और उमस से बचने के लिए पंखों का प्रयोग करें। साफ सफाई का ध्यान रखें और पानी एकत्र न होने दें।
1: नियमित अंतराल पर कीटनाशक का भी छिड़काव करें। जानवरों को ज्यादा शारीरिक थकावट न होने दें और बार बार धूप में न लाएं।
2: कोशिश करें कि पशु को बाल्टी से साफ एवं ताज़ा पानी पिलाएं। दाने का भंडारण नमी रहित जगह पे करें। संक्रामक रोगों के विरुद्ध अपने पशुओं का टीकाकरण करवा लें।
3: डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित बिहार के शिवनारायणपुर समेत देश भर के 75 रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 से जुड़े अधिकारियों और कर्मियों के तबादले पर बिहार सरकार से आपत्ति जताई। प्रवर्तन निदेशालय ने बांका में अवैध बालू खनन से जुड़े धन शोधन के मामले में एक निजी कंपनी के बिहार, दिल्ली और राजस्थान के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की। और मौसम विभाग ने आज औरंगाबाद, कैमूर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, रोहतास और सीतामढ़ी जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित बिहार के शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन समेत देश भर के 75 रेलवे स्टेशन का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकार्पण किया। शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन भागलपुर साहेबगंज रेलखंड पर स्थित है। हरियाणा के जिंद में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। उन्होंने कहा कि शिवनारायणपुर स्टेशन के आधुनिकीकरण से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही क्षेत्रीय विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के प्रति बिहारवासियों की ओर से आभार व्यक्त किया। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 से जुड़े अधिकारियों और कर्मियों के तबादले पर बिहार सरकार से आपत्ति जताई है। गृह मंत्रालय ने मुख्य सचिव को

0: पत्र में कहा कि जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों का स्थानांतरण अभियान को प्रभावित कर सकता है। मंत्रालय ने कहा कि 11 मार्च 2026 से ऐसे अधिकारियों के तबादले पर रोक के निर्देश हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि प्रगणक और पर्यवेक्षक के रूप में नामित शिक्षकों तथा अन्य कर्मियों का दूसरे चरण से पहले स्थानांतरण जनगणना कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। गौरतलब है कि बिहार की जनगणना निदेशक रंजिता ने भी जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्त अधिकारियों और कर्मियों के तबादले पर आपत्ति जताई थी। बिहार विधान परिषद के 8 सदस्यों ने प्रस्तावित उच्च शिक्षा विधेयक पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि इससे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, शैक्षणिक गुणवत्ता, शोध और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सदस्यों ने किसी भी संरचनात्मक बदलाव से पहले सभी हितधारकों से व्यापक विमर्श करने और विश्वविद्यालयों की अकादमिक स्वतंत्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की मांग की है। गौरतलब है कि राज्य सरकार विधानमंडल के आगामी मॉनसून सत्र में नया उच्च शिक्षा विधेयक लाने पर विचार कर रही है। प्रस्ताव के अनुसार सरकारी डिग्री कॉलेजों को विश्वविद्यालयों से अलग कर सीधे उच्च शिक्षा विभाग के अधीन लाया जाएगा, जबकि स्नातकोत्तर महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों का संचालन एक स्वायत्त निकाय के माध्यम से होगा। राज्य सरकार ने दरभंगा, समस्तीपुर और गोपालगंज में 4 बाईपास सड़कों के निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। पथ निर्माण विभाग के अनुसार इन परियोजनाओं पर 288 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। तकनीकी स्वीकृति के बाद जल्द ही निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभाग के अनुसार ये परियोजनाएं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं का हिस्सा है। राज्य सरकार ने दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर मोटर वाहन कर में वृद्धि लागू कर दी है। परिवहन विभाग ने मंत्रिमंडल के फैसले की अधिसूचना जारी कर दी है। नई व्यवस्था के तहत 1 लाख रुपए तक की कीमत वाले दोपहिया वाहनों पर 15 वर्षों के लिए 9% और 1 लाख रुपए से अधिक कीमत वाले दोपहिया वाहनों पर 10% कर लिया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार दोपहिया वाहनों पर कर की दर में 1% की वृद्धि की गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यक्रम को 15 अगस्त तक पूरा करने का निर्देश दिया है। विभागीय सचिव जय सिंह ने समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों को 31 जुलाई तक सर्वेक्षण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। प्रदेश में किसानों को बीज से बाजार तक डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग और गूगल के बीच सहयोग की दिशा में पहल की गई है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नई दिल्ली में गूगल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर डिजिटल तकनीक, फार्मर आईडी और तकनीक आधारित कृषि सेवाओं पर चर्चा की। मंत्री ने कहा कि विभाग गूगल के तकनीकी मॉडल का अध्ययन कर आवश्यकताओं के अनुरूप आगे की कार्य योजना तैयार करेगा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर और रोजगार प्रदाता बनाना सरकार की प्राथमिकता है। हाजीपुर में जीविका की कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक और ई कॉमर्स के माध्यम से महिलाओं की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कार्यशाला में 250 से अधिक जीविका दीदियों को विशेषज्ञों ने ऑनलाइन विपणन, डिजिटल मार्केटिंग और उत्पाद सूचीकरण का प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना में मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 के तहत पटना जॉयराइड का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम अपराह्न 3 बजे स्टेट हैंगर पटना में आयोजित होगा। वहीं मुख्यमंत्री आज पटना में बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में विश्वविद्यालय के सफल विद्यार्थियों को उपाधियां और टॉपर छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बांका जिले में अवैध बालू खनन से जुड़े लगभग 131 करोड़ रुपए के धन शोधन मामले में बिहार, दिल्ली और राजस्थान के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना और बांका में छापेमारी हुई है। ईडी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2022-23 के बीच बड़े पैमाने पर अवैध खनन किए जाने के आरोपों की जांच की जा रही है। कार्रवाई के दौरान कई डिजिटल दस्तावेज जब्त किए गए। जांच एक निजी कंपनी और उससे जुड़े लोगों की भूमिका पर केंद्रित है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आज औरंगाबाद, कैमूर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, रोहतास और सीतामढ़ी जिले में भारी बारिश हो सकती है। राज्य के अन्य जिलों में भी तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और बारिश का पूर्वानुमान है।
1: राज्य के पश्चिमी एवं दक्षिण मध्य भाग के अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के पूर्वी भाग एवं उत्तर मध्य भाग के कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के औरंगाबाद, भभुआ, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, रोहतास, सीतामढ़ी एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में भारी वर्षा होने चलने की संभावना है।
0: बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने संविदा आधारित सहायक प्राध्यापक भर्ती के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया है। 6 विषयों के लिए 40,000 से अधिक आवेदनों में से स्क्रीनिंग के बाद 8,034 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। साक्षात्कार 20 जुलाई से पटना के विभिन्न केंद्रों पर शुरू होंगे। 6 विषयों में कुल 2,532 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। राजद अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को कल शाम तबीयत बिगड़ने पर पटना के IGIMS में भर्ती कराया गया। अस्पताल के अनुसार उनका रक्तचाप अस्थिर हो गया था, जिसके बाद उन्हें एहतियातन कार्डियोलॉजी विभाग में ले जाकर आवश्यक जांच की गई। लगभग 3 घंटे के बाद उनकी स्थिति सामान्य होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मुजफ्फरपुर के मुशरी प्रखंड में नाला निर्माण के दौरान PNG पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से गैस रिसाव की घटना में 7 छात्राएं और 2 शिक्षिकाएं बेहोश हो गईं। सभी को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए SKMCH रेफर किया गया। प्रशासन के अनुसार सभी की स्थिति अब स्थिर है। तकनीकी टीम ने पाइपलाइन की मरम्मत कर गैस रिसाव पर नियंत्रण पा लिया है। गया की MP MLA अदालत ने वर्ष 2013 के चर्चित जदयू नेता सुमिरक यादव हत्याकांड में राजद के पूर्व विधायक रंजीत यादव सहित 3 आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। इस मामले में पूर्व विधायक कुंती देवी को पहले ही दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई जा चुकी है। राज्य की साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई ने साइबर ठगी की रकम को क्रिप्टो करेंसी में बदलकर विदेश भेजने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पटना से गिरफ्तार किया है। बिहार पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार लहराने और आपत्तिजनक पोस्ट के मामलों में 1 मई से 14 जुलाई तक 102 मामले दर्ज कर 130 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इन सभी मामलों में 40 हथियार जब्त किए गए हैं। मधुबनी के रहिका थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने एक सब इंस्पेक्टर और चौकीदार से लूटपाट का प्रयास किया। विरोध करने पर अपराधियों ने सब इंस्पेक्टर रूपक कुमार पर चाकू से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। वरीय पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि CCTV फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी

रखी जा रही है। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर में बाघ ने एक बछड़े का शिकार कर लिया। घटना के बाद वन विभाग की टीम ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। खगड़िया सदर प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी दीपक कुमार भारद्वाज को लखीसराय में शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया। नालंदा जिले के पेना थाना क्षेत्र में बिहार शरीफ बख्तियारपुर मार्ग पर सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार दंपति की मौत हो गई। वहीं सहरसा में हुए सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। अरवल में 20 जुलाई को जिला स्तरीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया जाएगा।

0: अशरीफ बख्तियारपुर मार्ग पर सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार दंपति की मौत हो गई। वहीं सहरसा में हुए सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। अरवल में 20 जुलाई को जिला स्तरीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया जाएगा। समाहरणालय परिसर स्थित इंडोर स्टेडियम में आयोजित रोजगार मेले में 20 से 25 नियोजक भाग लेंगे और लगभग 900 रिक्त पदों पर नियुक्ति के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, शिक्षक तबादले के लिए आवेदन 29 से 3 चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया, पहले चरण में 5 अगस्त तक आवेदन का मौका। दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, मतदाता सूची से नाम हटाने से खत्म नहीं होती है नागरिकता। दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं। प्रभात खबर की सुर्खी है, जरूरत के हिसाब से बिहार बनाएगा अपना स्वदेशी एआई मॉडल सीएम। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, हरियाणा के जिंद से दौड़ी देश की पहली हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन। आज अखबार लिखता है, पढ़ाई में और आगे निकला बिहार, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स का खुलासा, सूबे का स्कोर 507 से बढ़कर हुआ 564.8। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित बिहार के शिवनारायणपुर समेत देश भर के 75 रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 से जुड़े अधिकारियों और कर्मियों के तबादले पर बिहार सरकार से आपत्ति जताई। प्रवर्तन निदेशालय ने बांका में अवैध बालू खनन से जुड़े धन शोधन के मामले में एक निजी कंपनी के बिहार, दिल्ली और राजस्थान के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की। और मौसम विभाग ने आज औरंगाबाद, कैमूर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, रोहतास और सीतामढ़ी जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: यार वोट देना तो है लेकिन मतदान केंद्र कहाँ है?
2: मेरा नाम मतदाता सूची में है या नहीं कैसे पता चलेगा?
1: और मुझे मतदान से जुड़ी जानकारी चाहिए।
2: बस एक नंबर याद रखिए, 1950।
1: 1950?
2: जी हाँ, मतदाता सूची, मतदान केंद्र, मतदान प्रक्रिया, चुनाव संबंधी जानकारी या सहायता, हर सवाल का जवाब एक नंबर पर।
1: मतलब जानकारी भी मार्गदर्शन भी?
2: बिल्कुल, 182 बाकीपुर विधानसभा उपनिर्वाचन 2026 से जुड़ी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करें।
1: अब तो मतदान और भी आसान हो गया।
2: 30 जुलाई 2026 को अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। आपका एक वोट लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, कोई मतदाता ना छूटे।
3: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।
4: गन्ने की खेती अब सिर्फ फसल नहीं, बनेगी आपकी नई पहचान और बेहतर कमाई का आधार।
5: बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग की बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत अब गुड़ उत्पादन इकाई की स्थापना पर मिलेगा पूंजीगत लागत का 50% तक अनुदान।
4: क्षमता के अनुसार 6 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता का लाभ उठाइए।
5: आज ही केन केयर पोर्टल ccs.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन की अंतिम तिथि है 25 जुलाई 2026। गन्ना उद्योग विभाग एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी।
6: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में अब आइए एक नज़र डालते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों पर।

अब से थोड़ी ही देर बाद 9:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत मालिका में कुछ हिंदी फिल्मी गीत। आज का हमारा ये कार्यक्रम आधारित होगा मशहूर अभिनेता राजेश खन्ना पर। 9:30 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र। आप 10 बजे से सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। 10:05 पर सुनिएगा विकास के सोपान, ये साप्ताहिक कार्यक्रम। सुबह 10:30 पर सुनवाएंगे आपको लोकमाधुरी कार्यक्रम में कुछ भोजपुरी एल्बम लोकगीत। रसधार कार्यक्रम में सुनिएगा भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स 10:45 पर।

रंग तरंग आकाशवाणी विविध भारती से ये कार्यक्रम सुनेंगे 11 बजे से लेकर अपराह्न 12 बजे तक। अपराह्न 12 बजे आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे हिंदी समाचार। अपराह्न 12 बजकर 5 मिनट से दोपहर 2 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती की गीतमाला। दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार 2 बजकर 5 मिनट पर, इलाकाई खबरें और 2 बजकर 10 मिनट पर रोजगार सूचना हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। मध्याह्न समाचार हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी दिल्ली से दोपहर 2 बजकर 15 मिनट पर। 2 बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे आकाशवाणी विविध भारती के कार्यक्रम। शाम 5 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार। शाम 5 बजकर 5 मिनट पर सुनिएगा उद्घोषणा और कार्यक्रम विवरण। 5 बजकर 10 मिनट पर हम सुनवाएंगे आपको वंदन कार्यक्रम में भक्ति संगीत। शाम 5 बजकर 30 मिनट का समय होगा युवा श्रोताओं के कार्यक्रम यौनवाणी का। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पर्यावरण के अनुकूल खान पान, इस विषय पर विशेष जानकारी, साथ ही रानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष, उनके बलिदान दिवस पर भी जानकारी। शाम 6 बजे सुनिएगा भोजपुरी लोकगीत। 6 बजकर 5 मिनट पर भोजपुरी समाचार बुलेटिन आकाशवाणी पटना से। 6 बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे किसानवाणी कार्यक्रम। 6 बजकर 40 मिनट पर सांझ गीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे भोजपुरी फिल्म संगीत। शाम 7 बजकर 15 मिनट का समय होगा सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास का। 7 बजकर 25 मिनट से आप सुनेंगे आकाशवाणी पटना से प्रादेशिक समाचार। 7 बजकर 50 मिनट पर हम लेकर आएंगे फ़ोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद। रात 8 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान और 8 बजकर 15 मिनट पर सुनिएगा हेलो मनपसंद कार्यक्रम का शेष भाग। 8 बजकर 45 मिनट पर आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या। रात 9 बजे सुनिएगा भोजपुरी लोकगीत कार्यक्रम लोकधारा में। महफिल कार्यक्रम में आप गज़ल सुन सकेंगे रात 9 बजकर 15 मिनट से रात 9 बजकर 30 मिनट तक। 9 बजकर 30 मिनट पर एक बार फिर हम रिले करेंगे आकाशवाणी विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार को। रात 10 बजे आप सुनेंगे हमारे सासाराम केंद्र से रसरंग कार्यक्रम में हिंदी एल्बम सॉन्ग और 10 बजकर 30 मिनट पर चित्रपट तराने कार्यक्रम में हिंदी फिल्म संगीत। अगले दिन का कार्यक्रम विवरण और मौसम पूर्वानुमान आप सुनेंगे रात 10 बजकर 55 मिनट से रात 11 बजे तक। रात 11 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार और 11 बजकर 5 मिनट

तो ये था कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। गीत मालिका कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए हिंदी फिल्म संगीत। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार, भारतीय सिनेमा के जगमग सितारे, जी हाँ, मशहूर अभिनेता राजेश खन्ना पर फिल्माए गए हिंदी फिल्मी गीत। जी हाँ, आज राजेश खन्ना की पुण्यतिथि है और राजेश खन्ना साहब जो थे वो भारत के ऐसे फिल्मी सितारे थे जो कि भारत के पहले सुपरस्टार हैं और इन्होंने एक से बढ़कर एक ढेर सारी फिल्में की हैं। कई फिल्म फेयर पुरस्कार, अनगिनत पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार इन्होंने जीते हैं। तो इन्हीं में से कुछ फिल्में हम लेकर आए हैं। इनकी फिल्मी सफ़र को तो हम इस 20 मिनट में नहीं पूरा आपके साथ कर पाएंगे, लेकिन कुछ मदहोश करने वाले गीत हम ज़रूर, उनके अभिनय की छाप छोड़ने वाले गीत हम ज़रूर इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनवाते हैं आपको मेरे जीवन साथी फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार ने। मजरूह के बोल हैं, RG बर्मन का संगीत है।

कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अमर प्रेम फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल थे, आरजी बर्मन का संगीत था। श्रोताओं, ये गीत फिल्माया गया था, जी हाँ, भारतीय फिल्मों के मशहूर अभिनेता राजेश खन्ना पर, जिनकी आज पुण्यतिथि है। जी हाँ, आज ही की वो मनहूस तारीख थी जब 18 जुलाई को 2012 में इनका निधन हो गया था। हम आपको बताना चाहेंगे एक बार फिर कि भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार थे राजेश खन्ना। 1969 से 1971 के बीच लगातार 17 सफल फिल्में देने का रिकॉर्ड आज भी उन्हीं के नाम है। अभिनय के अलावा वे निर्माता भी थे, निर्देशक भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, और 2013 में मरणोपरांत उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। ऐसे तो राजेश खन्ना उनका फिल्मी नाम था, अगर उनके असली नाम की बात करें तो जतिन खन्ना उनका नाम था, और उनका जन्म हुआ था पंजाब के अमृतसर में। उन्होंने अपने कैरियर में ढेर सारी फिल्में की, लेकिन जो फिल्में काफ़ी सराही गई हैं उनमें आज भी नाम आता है आनंद का, आराधना का, हाथी मेरे साथी का, अमर प्रेम का, आपकी कसम भी उनकी एक बेहद ही बेहतरीन फिल्म कही जाती है। तो चलिए सुनवाते हैं कार्यक्रम के अंत में आपकी कसम फिल्म से लिया गया ये गीत।

जी हाँ श्रोताओं, ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते हैं। आपकी कसम फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल थे और आरजी बर्मन का संगीत था। ये फिल्म आया गया था जी हाँ महानतम अभिनेता राजेश खन्ना पर, जिनकी आज पुण्यतिथि है और हम इन्हें नमन करते हैं। इसी के साथ हमारा आज का गीत मालिका कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, स्टूडियो की घड़ी में 9:30 हो रहे हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र कार्यक्रम आज के फनकार के लिए।

भूपिंदर सिंह का जन्म 6 फरवरी 1940 को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। उनके पिता एक जाने माने गायक और संगीतकार थे, उनका नाम था नत्था सिंह। उन्होंने भूपिंदर को गाने की और गिटार की तालीम बचपन से ही देनी शुरू कर दी थी। बचपन के इन दिनों में ही भूपिंदर की दिलचस्पी गजल गाने में भी हो गई थी और वो आकाशवाणी दिल्ली से जुड़ गए थे। फिर ये हुआ कि संगीतकार मदन मोहन एक बार दिल्ली आए। जाने माने संगीतकार सतीश भाटिया के घर पर एक पार्टी दी गई और इस पार्टी में मदन मोहन ने भूपिंदर सिंह को सुना। मदन जी ने कहा कि तुम्हें मुंबई आना चाहिए और वहां गायकी में अपनी तकदीर आजमानी चाहिए। इसके कुछ दिन बाद भूपिंदर को चेतन आनंद ने बुलाया फिल्म हकीकत के इस गाने को गाने के लिए। जरा सोचिए कि एक दुबला पतला नौजवान और उस स्टूडियो में थे कितने सारे लेजेंड, मोहम्मद रफी, मन्ना डे, तलत महमूद और इन सब के बीच भूपिंदर सिंह।

0: तुझे।
1: भूपिंदर सिंह वैसे तो स्पेनिश गिटार बजाया करते थे, लेकिन मुंबई में गिटार की और ज्यादा बारीकियां उन्होंने सीखी भारतीय फिल्म उद्योग के बेमिसाल गिटार वादक

भानु गुप्ता से, जो आरडी बर्मन की टीम का हिस्सा थे। तकरीबन दो बरस तक भूपिंदर सिंह भानु गुप्ता से सीखते रहे। फिर एक इत्तेफाक हुआ। भूपिंदर सिंह मुंबई में एक 12 स्ट्रिंग गिटार खरीद रहे थे। उनके साथ गए थे फिल्म उद्योग के एक और गिटारिस्ट सुनील कौशिक। इत्तेफाकन भूपिंदर सिंह की मुलाकात आरडी बर्मन से हुई और उसके बाद आरडी बर्मन से भूपिंदर का जो नाता बना वो आरडी बर्मन के इस दुनिया से जाने यानी 1994 तक कायम रहा। पंचम के लिए भूपिंदर सिंह ने कई गानों में बेमिसाल गिटार बजाया है, उसकी बातें करेंगे बाद में। लेकिन पहले आपको बताएं कि हकीकत आने के बाद फिल्म आखिरी खत आई 1966 में। इस फिल्म में भूपिंदर सिंह ने न केवल एक गाना गाया बल्कि इस गाने को उन्हीं पर फिल्माया भी गया।

सन 1968 में भूपेंद्र सिंह ने पहली बार अपनी गजलों का एक ईपी रिलीज किया। ईपी यानी छोटा वाला रिकॉर्ड। इसमें उन्होंने गालिब और प्रेम जलंधरी को गाया था। इसके बाद भूपेंद्र सिंह का दूसरा एल्बम आया, जिसमें उन्होंने गजलों में स्पेनिश गिटार, बास और ड्रम्स का इस्तेमाल किया। और फिर गुलजार साहब के साथ वो जो शायर था, गजलों के पूरे स्ट्रक्चर को भूपेंद्र सिंह ने पूरी तरह से बदल दिया। बहुत ही आइकॉनिक और बहुत ही प्रयोगवादी एल्बम था वो जो शायर था। पर आज भूपेंद्र की गायकी से ज्यादा बातें होने वाली हैं भूपेंद्र के गिटार की। पंचम के साथ भूपेंद्र के गिटार की तरंगें अब आपको सुनाई देंगी। सबसे पहले 12-स्ट्रिंग गिटार का जादू, फिल्म का नाम हरे रामा हरे कृष्ण।

बातें हो रही हैं उन गानों की जिनमें संगीतकार आरडी बर्मन के निर्देशन में भूपिंदर सिंह ने बजाया गिटार। फिल्म का नाम जवानी दीवानी।

आरडी बर्मन ने बतौर गिटारिस्ट ही भूपिंदर सिंह का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपनी कई फिल्मों में पंचम से गाने भी गवाए। सन 1972 फिल्म परिचय।

आर डी बर्मन के साथ भूपिंदर के गिटार का जादू आपको सुनाई पड़ता है 1975 में आई फिल्म शोले के इस गाने में।

ऐसा नहीं है कि भूपिंदर सिंह ने सिर्फ आरडी बर्मन के लिए ही अपने गिटार के तार छेड़े। भूपिंदर सिंह ने मदन मोहन के लिए कुछ फिल्मों में गिटार बजाया, जैसे फिल्म हस्त।

फिल्म कादंबरी के इस गाने में भूपिंदर सिंह ने गिटार बजाया, संगीत विलायत खान साहब का था। आशा भोसले का ये गाना कविता अमृता प्रीति

इस गाने में भूपिंदर सिंह ने एकॉस्टिक गिटार बजाया, सुनील कौशिक ने इलेक्ट्रिक गिटार, फ्रेंको वाज ने ड्रम्स बजाए और आज के जमाने के जाने माने संगीतकार ए आर रहमान तब इलैया राजा के साथ कीबोर्ड बजाते।

0: गले लगा ले।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने खास तौर पर भूपेंद्र सिंह को याद किया और फोकस किया उन गानों पर जिनमें है भूपेंद्र सिंह का बजाया गिटार, पर उनकी आवाज के बिना इस कार्यक्रम को कैसे खत्म किया जा सकता है। तो एक झलक उनके कुछ मशहूर गानों की।

0: भूपिंदर सिंह तो चले गए, लेकिन रह गए वो गाने जिनमें उनका गिटार है, रह गई उनकी गजलें और रह गए उनके फिल्मी गाने। भूपिंदर सिंह हमें हमेशा शिद्दत से याद आएंगे। विनम्र नमन। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने गायक और गिटारिस्ट भूपिंदर सिंह पर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान का था। प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।
1: आज के फनकार।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी भी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती कार्यक्रम, गीतों भरी कहानी, बस थोड़ी ही देर के बाद।
3: भारत का पहला निजी रूप से विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 अपनी पहली परीक्षण उड़ान के लिए तैयार है। इसे हैदराबाद की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है। ये रॉकेट मिशन आगमन के तहत सुबह 11:30 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र

से लॉन्च किया जाएगा। विक्रम 1 का ये प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये पहली बार होगा जब किसी भारतीय निजी कंपनी ने देश में ही डिजाइन और तैयार किया गया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये 4 चरणों वाला रॉकेट तेज और जरूरत के अनुसार उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों, खासकर युवाओं से इस ऐतिहासिक मिशन को देखने और टीम स्काई रूट की सफलता की कामना करने की अपील की है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से

0: तेज सफलता की कामना करने की अपील की है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चौथे नंबर की चार चेन यू की खिलाफ पहला गेम 21-19 से जीता। वहीं दूसरे गेम में वो 15-10 से आगे थी, तभी चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का फैसला किया। इसके बाद सिंधु को विजेता घोषित किया गया। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। मौसम विभाग ने उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। वहीं बिहार, कर्नाटक, केरला, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों में आज बारिश की संभावना है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज गर्म और उमस भरा मौसम बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाह्न के 10:05 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान।

0: ने दिखी। सैदाबाद मोहल्ला में गली नाली पक्की दिखी। बिजली के पोल पर कवर्ड तार दिखा। प्रवेश मार्ग के पास ही मध्य विद्यालय है जहां बच्चे पढ़ते हैं। श्रोताओं, ये तो रही नगर निगम सासाराम क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 6 के मोहल्ला सैदाबाद की बाहरी स्थिति जो हमें देखने को मिला। लेकिन वास्तव में वहाँ विकास की क्या स्थिति है, नाली गली पेयजल शिक्षा स्वच्छता स्वास्थ्य सुविधा के बारे में मोहल्ला वासियों का क्या कहना है, सरकार द्वारा जनहित में संचालित योजनाओं का लाभ वहाँ रहने वाले पात्र लोगों को क्या मिल रहा है, इन सभी जानकारियों के लिए हमने संपर्क किया सैदाबाद के लोगों से और बातचीत की। विषय है रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड अंतर्गत नगर निगम सासाराम क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 6 के मोहल्ला सैदाबाद में विकास कार्य और योजनाएं। श्रोताओं, आज हम रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड अंतर्गत नगर निगम सासाराम
1: मार्ग देखिए, हम लोग एक नहर पकड़ के जाते हैं, अभी तो फिलहाल में कच्ची है, नहीं तो हम लोग बाराडीह होते हुए घूमते हुए पिच रोड से जाते हैं।
2: बाराडीह थोड़ा लंबा
1: पड़ जाता है।
0: हाँ। मतलब कि थोड़ा सा घूम कर जाएंगे तो पक्की सड़क है, नहीं तो फिर कच्ची सड़क से जाना।
1: हाँ, कच्ची सड़क है, नहर से जाना पड़ता है।
0: अच्छा, मोहल्ला में गांव में पेयजल का साधन सरकार उपलब्ध कराई है, सरकारी जो नल जल योजना होता है आपके यहाँ
1: इसको लगा चुकी है, अभी चल रहा है।
0: सैदाबाद कितने घरों की लगभग ये बस्ती कही जाएगी?
1: 150 की बस्ती है।
0: यहाँ रहने वाले लोगों का मुख्य साधन क्या है?
1: मुख्य साधन है खेती मजदूरी।
0: कृषि के लिए सिंचाई का साधन बढ़िया है?
1: नहीं, वो तो ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं है, उसके लिए कष्ट करना पड़ता है।
0: क्या समस्या होती है?
1: समस्या ये होती है कि नहर से जो चलती है हम लोग की कराहा, वो इतना गंदी है ना कि पानी जाने में बहुत दिक्कत है।
0: जो बहा है सफाई नहीं की गई?
1: सफाई नहीं होता है, हम लोग अपने से सफाई करते हैं।
0: तो अभी के समय में जो खेती गृहस्थी का समय है, पानी खेत में आ चुका है कि नहीं?
1: हम लोग अपने से पहुंचा चुके हैं साफ करके।
0: बिजली में सरकार कुछ छूट दे रही है?
1: हाँ, तो ठीक है, बिजली का कोई बात नहीं है, बिजली ठीक है,
0: बिजली बढ़िया रहती है।
1: हाँ, बिजली बढ़िया रहती है।
0: अच्छा, यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए क्या सुविधा है?
1: वो तो सुविधा ठीक है, यहाँ हमारे गाँव में 8वां तक स्कूल है, वो ठीक है, अभी बहुत बढ़िया चल रहा है, मास्टर लोग अभी उसमें टाइम से आ जाते हैं।
0: अपने स्वास्थ्य सुविधा के बारे में बताया कि यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, कोई अचानक बीमार पड़ जाए रात में तो कोई आसपास उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है?
1: नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, यहाँ ना दोरियाँ है, ना सैदाबाद में है, ना जोई है, ना डीहरा है, ये तीन गांव का हम लोग इधर हैं, लेकिन हम लोग ससराम जाना पड़ता है।
0: अच्छा, कुछ विकास की बातें हुई, अब बताइए कि सरकारी योजनाओं का लाभ आप लोगों को कुछ मिल रहा है कि नहीं?
1: अभी तो हम लोग को कुछ नहीं मिला है।
0: हर गांव में लोगों को जो राशन कार्ड के पात्र होते हैं राशन के लिए, उनके लिए राशन कार्ड उपलब्ध होता है, आप लोगों के पास है?
1: नहीं, हम लोग के पास नहीं है।
0: अच्छा, राशन कार्ड के पात्र नहीं है?
1: नहीं, हम नहीं है।
0: गाँव में कॉलोनी दी जाती है आवास योजना, उस मिला है कुछ लोगों को?
1: हाँ, कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को बन रहा है, पहले के तरफ बना हुआ है।
0: और वृद्धजन पेंशन योजना, कोई घर में सदस्य आपके हैं कि नहीं जो बूढ़े जो 60 साल या ऊपर हैं?
1: हाँ, हाँ, मेरे माता पिता हैं, उनको मिलता है, अभी 2 महीना से 3 महीना से नहीं आ रहा है।
0: धन्यवाद, आइए अगले व्यक्ति से मिलते हैं और इनका परिचय जानते हैं। जी, आप अपना नाम बताएं।
3: अमित कुमार।
0: अमित जी, क्या करते हैं आप?
3: मैं जॉब करता हूँ।
0: कहाँ पर?
3: बाहर नहीं जाके।
0: कहाँ के रहने वाले हैं?
3: मैं सैदाबाद का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 6।
0: वार्ड नंबर 6 नगर निगम हो गया है सैदाबाद। ये बताइए सैदाबाद में विकास की क्या स्थिति है?
3: ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, जो भी विकास हुआ है अच्छा के लिए हुआ है, बस स्वास्थ्य केंद्र नहीं है,
0: स्वास्थ्य
3: हो जाता तो बहुत बढ़िया हो जाता, और एक दो रोडे हैं जो जरूरत है उसको बनाना।
0: कौन सा रोड? क्या
3: ये जो नहर वाला है अपना, लोधी बराव जाके पहुँच जाता है तो बहुत आसान हो जाता है जाने में गाँव वाले को।
0: बन जाएगा तो कहाँ मिलेगा जाकर?
3: लोधी बराव।
0: अच्छा, लोधी बराव में जाकर मिल जाएगा गाँव में, वहाँ से आप
1: बहुत आसानी हो जाएगा। हम लोग का 4 किलोमीटर पड़ेगा सासाराम।
0: तो जाना कैसे पड़ता है आप लोगों को?
3: उधर बाराडीह होते हुए ऐसे मुरादाबाद होते हुए फिर जाते हैं।
0: अच्छा, ये बताइए यहाँ पर पेयजल अभी लोगों को उपलब्ध हो रहा है?
3: पानी वानी सब देते हैं टाइम से ही।
0: अच्छा, सैदाबाद में बच्चों को खेलने के लिए कोई साधन सुविधा है?
3: है, पर बना नहीं है ना, मांग किए हैं सब बनाने के लिए, नहीं बन पाया।
0: पढ़ाई के लिए बच्चों की सुविधा कैसी है यहाँ पर?
3: पढ़ाई के लिए ठीक है, पढ़ाई के मामले में सब बढ़िया है।
0: और आंगनवाड़ी केंद्र है?
3: हाँ है।
0: क्या स्थिति है वहाँ पर?
3: ठीक है, आंगनवाड़ी वो भी टाइम से सब लड़के बच्चे सब जाते हैं पढ़ते हैं।
0: आपने उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में बताया कि यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है?
3: हाँ, नहीं।
0: तो कोई भी बीमार पड़ जाए अचानक रात्रि में तो सीधे सासाराम ही
3: जाना है? सासाराम जाना पड़ता है।
0: कोई दूसरी यहाँ व्यवस्था आसपास में नहीं?
3: नहीं है, इधर जो भी है अपना 6 नंबर वार्ड में है, कोई भी गांव में नहीं है।
0: अच्छा, बिजली कैसी रहती है आपके यहाँ?
3: बिजली पहले तो थोड़ा वो जर्जर थी हालत।

श्रोताओं नमस्कार। प्रस्तुत है विकास कार्य तथा योजनाओं से संबंधित जानकारियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान और इस अंक के साथ मैं लाल बहादुर दुबे। श्रोताओं कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र सासाराम स्थित वार्ड नंबर 6 के मोहल्ला सैदाबाद के बारे में। शिवसागर प्रखंड मुख्यालय से उत्तर लगभग 12 किलोमीटर और सासाराम नगर निगम कार्यालय से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर सासाराम करघर रोड से पश्चिम थोड़ी दूरी पर स्थित है सैदाबाद। बाराडीह पुल से सासाराम जाने वाली बाईपास सड़क से होते हुए शिवपुर चितौली के रास्ते वहां पहुंचने का सुगम मार्ग है। लगभग 150 घरों की बस्ती में रहने वाले लोगों की स्थिति सामान्य

0: मगर अब जाके सुधरा हुआ है। ट्रांसफार्मर भी खराब हो गया था अपना, तो कंप्लेंट ओप्लेन किए तो आया सब।
1: तो अभी बिजली ठीक मिल रही है?
0: ठीक रहती।
1: और बिजली में जो छूट सरकार दे रही है
0: 125 यूनिट,
1: तो वह मिल रहा है?
0: हाँ, वो मिल रहा है सबको।
1: ये बताइए, यहाँ पर रहने वाले लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ कुछ मिल रहा है?
0: नहीं, उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है।
1: कॉलोनी कुछ लोगों को मिली है?
0: कॉलोनी 2-3 लोगों को मिली है।
1: और राशन कार्ड के पात्र हैं कि नहीं यहाँ पर कुछ?
0: हाँ, कुछ लोग हैं, मिलता है उनको राशन वासन।
1: राशन कार्ड वालों को बनता है आयुष्मान कार्ड?
0: हाँ, आयुष्मान कार्ड भी बना है कुछ लोगों को, उसका भी लाभ मिलता है हॉस्पिटल में।
1: आपके घर में कोई 60 साल या उससे प्लस व्यक्ति हैं कि नहीं?
0: हाँ है, पापा मम्मी हैं।
1: उन्हें पेंशन योजना की राशि है, मिलती है?
0: नहीं, अभी नहीं मिलती, फॉर्म प्रोसेस में डाले हैं।
1: अभी मैंने फिलहाल ही हुए हैं। चलिए, मिला जुला कर यहाँ पर कहा जाए साधन सुविधाएं हैं, सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है लोगों को?
0: यहाँ तो एक स्वास्थ्य केंद्र तो होना चाहिए सर, क्योंकि यहाँ हम लोगों को जाना पड़ता है इतना दूर। रात में कोई बीमार हो गया तो बहुत प्रॉब्लम होता है यहाँ पे।
1: जी, धन्यवाद। आइए अगले व्यक्ति से मिलते हैं और इनका परिचय जानते हैं। क्या नाम है आपका?
2: विजेंद्र सिंह।
1: कहाँ के रहने वाले हैं?
2: सैदाबाद।
1: सैदाबाद, ये तो आप नगर निगम क्षेत्र हो गया है ना?
2: हाँ, नगर निगम वार्ड नंबर 6।
1: अच्छा, सैदाबाद में अभी नगर निगम की कुछ सुविधा आप लोगों को मिल रही है कि नहीं?
2: अभी तो सब साफ सफाई सब ठीक ही रह रहा है, लेकिन हमारे गांव का सिंचाई वाला कराया इतना जाम हो गया कि सिंचाई में अभी तक खेत रुपया नहीं।
1: यहाँ पर ज्यादातर लोग तो कृषि कार्य करते होंगे?
2: सबसे ज्यादा कृषि, ऐसे ही रोज धान का कटोरा बोला जाता है।
1: क्या दिक्कत होती है कि अभी तक माने कृषि कार्य में पिछड़े हुए हैं?
2: पानी हम लोग के पास बस कराया इतना जाम है, करा के चलते।
1: बिल्कुल आपके पास ही है,
2: मेन करहे जाम है, नहर रह के करेगा का? करहे जाम है जो गाँव में आ रहा है पानी, नहर से
1: पानी यहाँ खेत तक नहीं आ पाता है,
2: नहीं आ पा रहा है। इसीलिए हम लोग का सिंचाई या किसानी सब पीछे है, प्लस में खाद उद इतना महंगा हो गया है खेती के कि पूछे मत करिए। लाइन में लगने पर एक बड़ा यूरिया मिल रहा है तो एक बड़ा 2400 का डाई मिल रहा है
1: जी। बिल्कुल, समस्या तो आप लोगों के साथ तभी कुछ बनी हुई है। फिर भी सरकार का प्रयास रहता है कि जो कृषि कार्य करने वाले जो किसान भाई हैं उनको सुविधा ज्यादा से ज्यादा मिले।
2: मिलते करता है।
1: अच्छा, ये बताइए आपके पास यहाँ पर सड़क और नाली की क्या स्थिति है?
2: हमारे गांव सड़क सब पक्की है और नाली भी सही है। नाली और सड़क के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस एक सड़क चाहिए हम लोग का, वो रिंग रोड में जुड़ने के लिए, बस वो 2 किलोमीटर की दूरी है बस, और कुछ नहीं चाहिए रोड वोड। हम
1: लोगों का मोहल्ला, इस मोहल्ले में सब जगह पक्की सड़क है?
2: हाँ, सब एकदम, कहीं भी गली में कच्ची रोड नहीं है, कोई गली कोई नहीं, एकदम सर सफाई। गली नाली के लिए तो टंच है हम लोग।
1: देख रहे हैं कि सब कवर्ड तार है हर जगह, तो बिजली भी तो भरपूर आ रही होगी?
2: हाँ, बिजली रहती है, जब अंधड़ तूफान आ जाती है तो अंधड़ तूफान तो चौपट कर देती है, बाकी सब सही रहता है।
1: बिल्कुल। अच्छा, बिजली में जो छूट सरकार दे रही है वह सब लोगों को मिल रहा है?
2: 25 यूनिट मिलवे करता है, उसके बाद में बिल जमा करते हैं, जो तो यूनिट पार होगा तो
1: लगेगा। अच्छा, आंगनबाड़ी केंद्र और सरकारी विद्यालय की क्या स्थिति है?
2: वो सब ठीक है, सरकारी विद्यालय आंगनबाड़ी में भी बच्चा सब पढ़ने जाता है, आंगनबाड़ी में भी पढ़ाई बढ़िया होता है, वहाँ की सब देखभाल सब खान पान सब सही मिलता है, बच्चा को अंडा उंडा जो भोजन वाला है वो सब मिलता है,
1: सुविधा बढ़िया है।
2: स्कूल के मैटर में हम लोग शहर के बीच में सब ठीक है।
1: अच्छा, विद्यालय में बच्चों को बैठने के लिए सब पर्याप्त जगह, सीट आदि सब चीज सही है ना?
2: सब बेंच डेस्क लगल है एकदम, सौर ऊर्जा पर लाइन पंखा सब चलता है।
1: ये बताइए, आप भी पढ़े होंगे बचपन में, आप अपने समय से और आज तुलना करते हो, क्या अच्छी स्थिति है?
2: बहुत आगे है, समय के अनुसार सब
1: विकास हुआ है ये कहेंगे।
2: हाँ।
1: समय से। अच्छा, कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में बताइए, सरकारी योजनाओं का लाभ आपको?
2: यही हमारे गांव एक ग्राउंड फील्ड है, उसी पर हम लोग खेल कूद के लिए फील्ड चाहिए और बाकी सब ठीक है
1: जी।
2: हाँ,
1: फील्ड चाहिए,
2: फील्ड चाहिए, फील्ड चाहिए, वहाँ अब खेलने कूदने की व्यवस्था हम लोग को चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हम लोग के पास, बाकी सब ठीक ठाक है। 4 गांव के बीच में वही एक ग्राउंड है, वहाँ अभी तक तो कोई विकास नहीं हुआ।
1: कहाँ पर?
2: सकरौली जगह का नाम है ग्राम सैदाबाद, उस जगह पर 4-5 गांव का लड़का आता है, लेकिन वहाँ पर अभी व्यवस्था कुछ नहीं है, वही हम लोग को व्यवस्था चाहिए।
1: और घर में कोई सदस्य है 60+ व्यक्ति?
2: बाबू माई है, उन लोगों को मिलता है, अभी तो रोक दिया है, 3 माह से कोई पैसा नहीं आ रहा है। देखिए कब तक पूरा हो जाता है, हम लोग का बस ग्राउंड चाहिए।
1: ग्राउंड चाहिए।
2: हाँ
1: जी, धन्यवाद। श्रोताओं, नगर निगम सासाराम क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 6 के मोहल्ला सैदाबाद के कुछ और लोगों से की गई बातचीत हम थोड़ी देर में आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पूर्व सुनवाते हैं आपको एक गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन और फिल्म है गबन।

0: इस गीत के बाद आइए चलते हैं लोगों के बीच। श्रोताओं, आज हमारी बात हो रही है रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड अंतर्गत नगर निगम सासाराम क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 6 के मोहल्ला सैदाबाद के लोगों से और जान रहे हैं यहाँ पर हुए विकास कार्यों के बारे में। आइए अगले व्यक्ति से मिलते हैं और इनका परिचय जानते हैं।
1: मेरा विपिन बिहारी सिंह यादव नाम है, सैदाबाद का निवासी हूँ।
0: सैदाबाद जो कि अब नगर निगम क्षेत्र हो गया,
1: 6 नंबर वार्ड है हम लोग का।
0: अच्छा, पहले यह कौन से पंचायत में पड़ता?
1: कुमहू पंचायत, लिख करना था खाली केवल कुमहू को पूर्ण रूप। अच्छा। लेकिन पूरा लिख दिया, पूरा पंचायत है, जान ली हम लोग देहात में, इनसे भी डिहरा दूर है गांव, वो भी आ गया नगर निगम में, उन्हें नहीं चाहिए। हम लोग हर चीज टैक्स बढ़ रहा है, यहाँ विकास नहीं है, जो जो भी कल है टूटा है वही बनी भी नहीं रहा है।
0: अच्छा, यहाँ पर अभी गर्मी का समय है, सरकारी नल जल सेवा उपलब्ध है कि नहीं?
1: उपलब्ध है, आप तो देख रहे हैं यही है ना, लेकिन बिगड़ा हुआ है,
0: नहीं चालू है।
1: नहीं चालू है, बिगड़ा हुआ है, सब बिगड़ गया, पाइप ध्वस्त हो गया।
0: कौन सा चलता है अभी फिलहाल में?
1: अभी वो फिलहाल उधर है तो वही चलता है, उसे भरपाई नहीं हो रहा है। अगर दोनों को चलवाइएगा तब जाके भरपाई होगा यहाँ।
0: अच्छा, सरकारी चापाकल है कि नहीं?
1: है।
0: क्या स्थिति है?
1: सब बिगड़ा हुआ है।
0: कितना है यहाँ पर?
1: कल मिस्त्री आए थे,
0: यहाँ पर कितने हैं?
1: 8-10 को कल है,
0: 8-10 है, उसमें से अधिकांश बिगड़े हुए हैं
1: सब, टोटल
0: 8-10,
1: एक भी चालू नहीं है, सब तो देखने के मिलेगा आपको, देख लीजिए सामने, देखिए तोपा हुआ है। एक देखिए, काली जी का देव स्थान पर कल भी नहीं है, हम लोग क्या जिक्र करेंगे, वो कम से कम देव स्थान पर तो कल होना चाहिए ना।
0: बिल्कुल नहीं, चापा कल ऐसे ऐसे जगह पर होना चाहिए जहाँ पर लोग आराम से पानी पी सके,
1: लेकिन ऐसा व्यवस्था नहीं कि हम
0: यहाँ पर। कल आप कह रहे थे कि मिस्त्री आया था, कुछ
1: देखा कि ढेर डैमेज है ना, वो स्थिर चला गया, बोला कि ढेर डैमेज है, इसमें ढेर खर्चा लगेगा, वो चलते बनाए के हलिया से।
0: अच्छा, और बताइए विकास के बारे में, बताइए कि यहाँ पर जो नाली गली ये सब
1: सब अधूरा में पड़ा हुआ है। नाली दो एक तो बनवाए हैं, एक तो अभी मिट्टीकरण किए हैं, उसको ढलाई वगैरह नहीं बना है,
0: पूरा नहीं बन पाया है।
1: ना ना, अभी खाली खोदवा है मिट्टी।
0: तो अभी तो यहाँ देख रहे हैं जो आसपास में तो बना,
1: बहुत पहले का है।
0: मैं ठीक है, तो नाली है ना गांव में जो मोहल्ला में
1: है, नाली है,
0: नाली में कोई समस्या नहीं है?
1: ना ना, नाली में समस्या नहीं है,
0: नाली में गली भी ठीक है लगभग।
1: हाँ,
0: बिजली की भी स्थिति ठीक है ना आपके यहाँ?

0: ठीक है, अभी तुरंत फिलहाल में ट्रांसफार्मर खत्म हो गया था।
1: अच्छा लगा है नया?
0: अभी अब पूरा नहीं, रिपेयरिंग करके दे दिया हम लोग का। फिर
1: अधिकांश जगह वही चल रहा है,
0: अप डाउन मारता है, कम किसका जोर जाए कोई ठीक नहीं इसमें।
1: जी, जी, जी। अच्छा उसमें कुछ छूट मिल रहे हैं ना, 125 यूनिट?
0: हाँ, अब सबको छूट है।
1: अच्छा सरकारी योजनाओं के बारे में बताइए, कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ आपको आपके परिवार के सदस्यों को मिल रहा है?
0: नहीं,
1: राशन कार्ड है कि नहीं आपका?
0: नहीं है।
1: क्यों?
0: पहले था, खत्म हो गया।
1: अच्छा आप कृषि कार्य करते हैं?
0: हाँ।
1: खेत है ना?
0: हाँ।
1: तो कृषि सम्मान निधि योजना की राशि मिलती है जो 2000 करके 6000?
0: नहीं नहीं,
1: वो भी नहीं भरे?
0: नहीं।
1: तो ऐसा क्यों करते हैं?
0: हम नहीं मिलता, क्या कहें?
1: मतलब आपके नाम से अगर खेत है?
0: हमारे नाम से खेत है, नहीं मिल रहा। कई बार फार्म अप्लाई किए।
1: आपका आधार नंबर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और खाता प्लॉट जो खेत का आपके नाम से, ये सारी चीजें जब सही होंगी तो निश्चित ही मिलना चाहिए।
0: नहीं मिल रहा है।
1: नहीं मिल रहा है। पता कराइए किस कारण से रुका हुआ, क्योंकि एक पोर्टल होता है, उस पोर्टल पर जब देखेंगे तो पर शो करता है कि किस कारण से आपका वो रोक दिया गया है, ये देखना चाहिए। किसी साइबर कैफे पर जाइएगा, उसका किसी सम्मान निधि, उसका किसान एक पोर्टल होता है, एक नंबर मिला होगा जब आप रजिस्ट्रेशन कराए होंगे, उस रजिस्ट्रेशन को डालने के बाद खुद बताएगा किस कारण से आपका रुका हुआ है, पता कर लेना।
0: ठीक है। तो
1: अच्छा ये बताइए कि आपके घर में कोई 60 साल या उससे प्लस व्यक्ति है?
0: हाँ है, है। हमारा दो बड़े पापा हैं, तो एक तो मेरा फादर है।
1: तो उनको मिल रहा है जो सरकारी पेंशन योजना की राशि?
0: नहीं मिल रहा है।
1: क्यों नहीं भरे हैं?
0: भरे थे, नहीं रिटर्न होकर चला आया, नहीं मिल रहा है उन लोग का।
1: और सब स्थिति ठीक है? योजनाओं का लाभ कुछ लोगों को नहीं भी मिल रहा है?
0: हाँ
1: जी। धन्यवाद। आइए अगले व्यक्ति से मिलते हैं और उनका परिचय जानते हैं। क्या नाम है आपका?
2: राम उदय।
1: कितनी उम्र है आपकी?
2: लगभग 70-75।
1: आप तो बहुत पहले भी सैदाबाद को देखे होंगे, आज देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? पहले से बदलाव हुआ है?
2: नहीं कहता है ना, पानी में जाते रहेंगे नहर पर,
1: तो माने आज बदलाव हुआ है? बदल रहा है, विकास हुआ है। ये बताइए पढ़ाई लिखाई में कैसा है आपका मोहल्ला?
2: पढ़ाई लिखाई में तो खत्म बा।
1: सरकारी विद्यालय है ना?
2: प्राइवेट में लड़का भेजल जाता है।
1: तो आज तो सरकार सब सुविधा दी है विद्यालय में पढ़ने के लिए, टीचर आ गए हैं, बैठने के लिए साधन है,
2: सब साधन हो जाए, हम जेबे न करें।
1: तो आखिर ये तो कमी हमारी न कही जाएगी,
2: सरकार के कमी नहीं के ना, हमारे कमी
1: ना, नहीं भेज रहे हैं बच्चों।
2: हाँ।
1: आप देखे होंगे, आप भी पढ़े होंगे, देखे होंगे उस समय विद्यालय की
2: तो हमने के मजबूरी खराब रहे।
1: आज जो सुविधा सरकार दे दी बढ़िया,
2: हम जाते नहीं
1: रहे, तो ये तो हमारी कमी कही जाएगी।
2: तो हमारे कमी से नहीं खत्म, लेकर जाते लेकर दिन भर गोटी खेलता रहता है, गार्जियन के कोनो फेरे नहीं खेले।
1: जी जी, गार्जियन नहीं ध्यान दे पा रहे हैं तो भाई क्या करें। अच्छा ये बताइए कि कुछ सरकारी योजना का लाभ आपको मिल रहा है कि नहीं?
2: मिले।
1: आप 70+ व्यक्ति हैं, 70 से ज्यादा उम्र हो गई है, पेंशन योजना की राशि मिलती है आपको?
2: ना।
1: फार्म नहीं भरे हैं?
2: अरे 3-4 बार भरने,
1: कभी मिला ही नहीं?
2: ना, कबो ना मिला। सरकार के लाभ एक नया हम नहीं खिले ले,
1: नहीं ले रहे हैं
2: ना।
1: अच्छा खेती वाली जमीन होगी ना
2: आपकी? भर ले रही,
1: कृषि सम्मान निधि योजना
2: भर ले रही, आज ले भी ना कोई।
1: वो नहीं मिला, वो भी
2: नहीं ना। सरकारी लाभ हमारा के नहीं के मिलल, पूछ रहे की कौन बतावे, कुछ ना मिले हमारा के।
1: राशन कार्ड?
2: राशन कार्ड बा, हम ना जाई लावे। राशन कार्ड बा औरत के तो हम लोग वहाँ ना जाई।
1: अच्छा आयुष्मान कार्ड बनवा लिए हैं?
2: हाँ, स्मार्ट कार्ड
1: बनवा लेना चाहिए, क्योंकि कभी आवश्यकता पड़ जाए जीवन में तो एक सुविधा रहती है।
2: हाँ, वो बनवाबली बनी। अरे अब हमने के तो लटती बाजार बढ़ गए।
1: आपका तो ऐसे भी बन जाएगा, 70 जिनका हो चुका है ना, तो राशन कार्ड हो या ना हो, 70 या उससे ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनका ऐसे भी आयुष्मान कार्ड बन जाएगा।
2: ना तो स्मार्ट कार्ड बनवा ले बने। हाँ, और कौन सरकार के पहुँचने की हमारा लाभ
1: नहीं, योजना का लाभ ले पा रहे हैं। जी जी, धन्यवाद। आइए अगले व्यक्ति से मिलते हैं, उनका परिचय जानते हैं। क्या नाम है आपका?
3: कृष्णा कुमार सिंह
1: जी। कृष्णा जी कहाँ के रहने वाले हैं?
3: सैदाबाद।
1: सैदाबाद अभी नगर निगम हो गया है?
3: जी जी जी।
1: वार्ड नंबर
3: 6।
1: अच्छा सैदाबाद में अभी विकास की क्या स्थिति है?
3: सर अभी तो ये सामने देख ही रहे हैं जो हो है।
1: विकास के मामले में तो हम देख रहे हैं कि गली नाली बिजली ये सब सारी चीजें तो ठीक ही।
3: जी सर जी। हाँ हाँ।
1: अच्छा पीने वाला पानी क्या यहाँ पर लोगों को उपलब्ध हो रहा है?
3: सर पीने वाला पानी कभी कभी आता है मनमानी, कभी कभी नहीं आता है, कहीं नल जल टूटा हुआ है, कभी यहाँ कभी वहाँ, उसी को पड़ा है तो पड़ा है, कहीं बह रहा है, कहीं पहुँच रहा है पानी, कहीं नहीं पहुँच रहा है।
1: और यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के साधन सुविधा कैसी है?
3: सर वही एक मिडिल स्कूल है बस, आंगनबाड़ी है।
1: अच्छा यहाँ पर लोगों को बिजली बढ़िया मिल रही है?
3: सर बिजली हाँ ठीक मिल रहा है।
1: बिजली में जो छूट सरकार दे रही है उसका लाभ?
3: सर वही आता है तो अपना जो बिल काटता है अपना जीरो जिसका है उसका देता है, जिसके जो फाइन है वो अपना पड़ा हुआ है तो यहाँ जाना है वहाँ जाना है ये सब बात हो रहा है।
1: मैंने 125 यूनिट की जो छूट मिले ना?
3: जी जी जी।
1: सरकारी योजनाओं के बारे में बताइए, कुछ लाभ यहाँ लोगों को मिल रहा है?
3: कुछ नहीं मिल रहा सर।
1: राशन कार्ड का लाभ?
3: राशन कार्ड का वो जिसका है पहले का था उसका भी नाम कट गया, जिसका नहीं है उसका अब बनने वाला है, आज बने कल बने ऐसे चल रहा है, चल रहा है।
1: आपके घर में कोई है राशन कार्ड?
3: ना, मेरे घर में पहले था, नाम कट गया।
1: बताइए कृषि सम्मान निधि योजना की राशि
3: क्या? 2000 रुपया
1: 2000 का?
3: हाँ हाँ
1: आते हैं।
3: हाँ
1: मिल रहा है।
3: हाँ मिल रहा है।
1: और

0: यहाँ पर कुछ लोगों को मिला हुआ है आवास योजना का लाभ।
1: हाँ, कोई कोई को मिला है।
2: हाँ,
0: आप खेती के बारे में बताएं, यहाँ पर कृषि कार्य के लिए पानी की सुविधा रहती है?
1: हाँ सर, पानी आता है, नहर का पानी जो, अभी जो बहुत कम पानी चल रहा है, किसी किसी का रुपया किसी का सुखले पड़ा हुआ है, इधर ही पड़ा हुआ है, कढ़ा है, कढ़ा साफ नहीं हुआ,
0: सफाई नहीं की गई है।
1: सर, गाड़ी भी आया था, कुछ साफ किया अपना मनमानी और उसके बाद कुछ छोड़ करके चला गया।
0: ये दिक्कत है।
1: हाँ सर, दिक्कत है पानी की, पानी का बहुत दिक्कत है।
0: यहाँ तो ज्यादातर लोग कृषि कार्य ही करते।
1: हाँ सर, खाली कृषि कार्य है यहाँ अधिकतर।
0: और कोई यहाँ पर जो जरूरी आपको लग रहा हो कि होना चाहिए?
1: जरूरी फील्ड है, बच्चों का लाइब्रेरी है, वो सब जरूरी है, जगह है, लेकिन बनने का कोई उपाय नहीं है। पोले पोल हर जगह लाइट लगा हुआ है, यहाँ कोई लाइट का व्यवस्था नहीं है। नगर निगम है,
0: नगर निगम का क्या सुविधा मिल रहा है?
1: कुछ सुविधा नहीं है सर,
0: केवल झाड़ू।
1: नहीं नहीं, केवल झाड़ू भी है तो अभी मनमानी है, किसी घर मर के चला गया, गली पड़ा हुआ है।
0: नाली की सफाई?
1: नाली की सफाई मनमानी, कभी हुआ कभी यहाँ से वहाँ तक किया, वहाँ तक पड़ा हुआ है, कचरा फेंक दिया है, गाड़ी आया अपना मनमानी उठाया, नहीं उठाया चला गया, उसका फोटो खींचा गया ना, हाजिर लग गया सर, बस काम खत्म, बस ड्यूटी पूरा करना है, बस सर कुछ नहीं, इससे हम संतुष्ट नहीं है
0: जी। धन्यवाद। श्रोताओं, आप सुन रहे थे नगर निगम सासाराम क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 6 के मोहल्ला सैदाबाद के लोगों से की गई हमारी बातचीत। विषय था रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड अंतर्गत नगर निगम सासाराम क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 6 के मोहल्ला सैदाबाद में विकास कार्य और योजनाएं। श्रोताओं, यदि आप भी अपने गांव मोहल्ला में हुए विकास कार्यों के बारे में बातचीत करना चाहते हों या आज के कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम आपने लिखा, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम, पिन 821115। पत्र के अलावा आप हमें ईमेल के द्वारा भी अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है akashvanisassaram akashvanisasaram@gmail.com। श्रोताओं, समय अब आपसे और अधिक बातें करने की इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान अब यहीं संपन्न होता है। अगले सप्ताह एक नई जानकारी लेकर हम पुनः आपके बीच होंगे, आज ही के दिन ठीक इसी समय। तब तक के लिए हम आज्ञा चाहेंगे, नमस्कार। कार्यक्रम संकलन एवं सूत्रधार लाल बहादुर दुबे और प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: विकास के सोपान, ये साप्ताहिक कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 हुए हैं। लोक माधुरी कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे कुछ भोजपुरी एल्बम लोकगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले लीजिए सुनिए भरत शर्मा व्यास की आवाज़ में आधी आधी रतिया के एल्बम से लिया गया ये भोजपुरी एल्बम लोकगीत, जिसे लिखा है पांडे नगीना ने और संगीत दिया है भरत शर्मा व्यास ने।

चीहों की उठे गोरिया। भरत शर्मा व्यास की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये भोजपुरी एल्बम लोकगीत। और अब लीजिए सुनिए शारदा सिन्हा के स्वर में परदेसिया बलमुआ से लिया गया ये भोजपुरी एल्बम लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे शारदा सिन्हा की आवाज़ में परदेसिया बलमुआ एल्बम से लिया गया ये भोजपुरी एल्बम लोकगीत। इसकी धुन बनाई थी शारदा सिन्हा ने और ये एक पारंपरिक एल्बम लोकगीत था। अब इसी के साथ हमारा आज का यह लोक माधुरी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:45 हो चुके हैं। अब आप सुनेंगे राजस्थान कार्यक्रम में कुछ भोजपुरी एल्बम सॉन्ग। सबसे पहले लीजिए सुनिए।

ये छठ गीत जिसे गाया है सोनी चौधरी झा ने। गीत और संगीत है शारदा सिन्हा का। एल्बम है केलवा के पात पर।

सोनी चौधरी झांके स्वर में अभी आप सुन रहे थे केलवा के पात पर एल्बम से लिया गया ये छठ गीत। और अब एक लोकगीत आपको सुनवाते हैं गुंजन सिंह के स्वर में बदरा रे एल्बम से। रविंद्र ओझा गीतकार हैं, संगीतकार हैं शिशिर पांडे।

गुंजन सिंह की आवाज़ में अभी आपने सुना बदरा रे एल्बम से लिया गया ये एल्बम सॉन्ग। और अब रसधार कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए विक्की राजा वीरा के स्वर में पूर्वा बयार इस एल्बम से एक भोजपुरी एल्बम सॉन्ग जिसे लिखा है मनीष माही ने और संगीत से संवारा है छोटू रावत ने।

0: विक्की राजा के गाए हुए इसी फिल्मी हिंदी सॉन्ग के साथ ही रसधार कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाह्न के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी विविध भारती का प्रसारण, जिसे हम अपने सासाराम केंद्र से रिले करने जा रहे हैं। तो सुनते रहिए आकाशवाणी सासाराम, जुड़े रहिए हमसे।
1: से बोल रहे हैं। आज है जाने माने पार्श्व गायक भूपेंद्र सिंह की याद का दिन, और आज के चित्रपट संगीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं चुनिंदा गाने भूपी जी की आवाज में।

हसन कमाल के बोल थे, फिल्म का नाम था एतबार, आशा भोसले और भूपिंदर की आवाजें थीं। अब आहिस्ता आहिस्ता और सितारा फिल्मों के गाने।

0: गोपिंदर सिंह की आवाज थी, फिल्म का नाम था सत्या। 21 जुलाई, गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई, पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

0: मैटिनी शो कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज मैटिनी शो में हमारे साथ एक बहुत जरूरी मेहमान हैं, शुभजीत मुखर्जी। बहुत बहुत स्वागत आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: आपकी जो टी शर्ट है उस पर लिखा है जल है तो कल है। अब चूंकि हम रेडियो में बैठे हैं तो मुझे एक दृश्य खींचना होगा ना कि लोगों को पता चले। और आप पानी की दुनिया में काम कर रहे हैं, पर्यावरण की दुनिया में काम कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि ये जो बारिश के दिन हैं इनमें सबसे जरूरी गतिविधि क्या है?
1: देखिए, बारिश भगवान का आशीर्वाद होता है।
0: क्या प्यारी बात बोली आपने।
1: चाहे आप कुछ भी दुनिया का एक्टिविटी हो, कोई भी, रोटी कपड़ा मकान से भी पहले पानी आता है। आप बिना रोटी के थोड़े समय तक रह सकते हैं, बिना कपड़े के तो आराम से रह सकते हैं, बिना मकान के रह सकते हैं, बिना पानी के 4 घंटा नहीं रह सकते। तो इसलिए कोई घर में आता है, दुश्मन भी हो, पानी हम जरूर पूछते हैं,
0: बिल्कुल
1: खाने के बारे में नहीं बात करते हैं। तो सबसे पहले पानी है। जो भी गतिविधियां हैं दुनिया में, जो भी हम काम कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि पानी को एक विशेषता दिया जाए, पानी के बारे में चर्चा हो और हर इंसान को पता हो कि पानी प्रथम है, पहला टॉपिक शुड बी वाटर। तो इसलिए इस पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जो लाइफ लॉन्ग काम कर रहा था, मैं ये रियलाइज़ किया हूँ कि हर चीज़ पानी से जुड़ा हुआ है, और क्योंकि पानी नहीं था इसलिए मेरा काम ठीक से नहीं हो रहा था। और जहाँ जहाँ पानी है वहाँ हर काम अच्छे से होता है, हर इंडस्ट्री, हर फैक्ट्री, हर सर्विसेज पानी के बिना नहीं होगा। टेक्नोलॉजी की बात कीजिए, आप खेती की बात कीजिए, किसी भी इंडस्ट्री की बात कीजिए, उसको कहते हैं वाटर फुटप्रिंट। बिना पानी का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता।

0: इसलिए पानी को लेके मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें बहुत अच्छा लग रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। एंड बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने जल जीवन मिशन शुरू किया है। उनका जो सोच है जल संचय जन भागीदारी, इससे लोगों को ये चीज़ समझ में आया है कि नहीं, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, लोग इससे जुड़ रहे हैं और अपने अपने तरीके से, अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से पानी के ऊपर काम कर रहे हैं। ताकि आज तक लोगों को लगता था कि गलतियां किसी और की है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि हमारी खुद की जिम्मेदारी है जो हमें निभाना ही पड़ेगा।
1: वाह, बहुत ही जरूरी बात आपने बोली है, जो जनता की भागीदारी की बात बोली। मुझे बताइए कि ये जो फील्ड है, ये जो मुहिम है, ये आपने कब शुरू की, इसका कारण क्या था और इसकी उपलब्धियां क्या हैं?
0: ये कब शुरू की थी बोलूंगा तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा। मेरा मेन पैशन था कि पेड़ लगाऊंगा,
1: अच्छा,
0: एंड 2010 से मैं बहुत पेड़ लगाया, एंड गिनते गिनते एक बार पहुंच गए कि 80,000 पेड़ लग गए
1: क्या
0: पाँच
1: बात है
0: सालों में।
1: जी।
0: लेकिन 5 सालों में, 2010 से शुरू किया था, 2015 तक 80,000 पेड़। कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है कि कोई
1: जी
0: बोले कि वाह, क्यों यहाँ तो लोग करोड़ों पेड़ लगा रहे हैं, बट उस 80,000 में से 40,000 पेड़ ऐसे ही मर गए। मैं जब
1: ओ
0: गिनना शुरू किया पता चला पेड़ में, क्योंकि पानी नहीं मिला उसको, या तो कभी सूखा पड़ जाता है या ज़्यादा पानी आ जाता है, पेड़ मर जा रहे हैं। अब एक पेड़ में ज़्यादा पानी गिरेगा तो भी मर जाएगा, कम पानी गिरेगा तो भी मर जाएगा। तो मैंने ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं पेड़ लगाना चाहता हूँ तो हमें पानी का पहले बंदोबस्त करना ही पड़ेगा।
1: जी।
0: चाहे एक किसान हो, जो भी हो, जो भी पेड़ रिलेटेड काम करता हो, चाहे वो एक चावल ग्रो कर रहा हो या शुगर ग्रो कर रहा हो या फल ग्रो कर रहा हो, कुछ भी, पानी बहुत ज़रूरी है। चाहे हम जैसे लोग, पर्यावरण प्रेमी लोग जो पेड़ पौधे लगा रहे हैं, आज जैसे जो बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन है एक पेड़ माँ के नाम, तो तब मेरे सोच में आया कि हमें पेड़ लगाने से काम नहीं होगा, हमें पानी लगाना पड़ेगा।
1: वाह,
0: तो ट्री प्लांटेशन मत कीजिए, मैं लोगों को बोलता हूँ, आप वाटर प्लांटेशन कीजिए। आप ये सोचिए कि पानी कैसे होगा, क्योंकि बारिश के समय हर जगह हरा भरा हो जाता है अपने आप, क्योंकि पानी रहता है। वाटर इज ब्लेसिंग्स, एंड हमारा ही एक पृथ्वी ऐसा जगह है जहाँ पानी है, इसलिए
1: जी
0: हम हैं यहाँ पे। आज अगर चांद पे पानी होता तो मैं गारंटी देता हूँ कि आज पर अभी समय हम लोग चांद पे बैठ के बात कर रहे होते, पृथ्वी में नहीं बैठे होते। तो पानी यहीं है और हमें यहीं पे पानी का संरक्षण, सबसे ज़्यादा परम संरक्षण पानी का ही संरक्षण है इस समय।
1: तो ये तो तय हुआ कि आपने कैसे शुरू किया,
0: जी,
1: कब शुरू किया और उपलब्धियां क्या हैं इसकी?
0: उपलब्धियाँ तो हो गई है, मेरी उपलब्धि नहीं है, लोगों की उपलब्धि है। शुरुआत 2015 से हुआ, जब मैंने एक सोच निकाला कि पानी व्यर्थ बहुत जाता है,
1: जी।
0: चाहे शहर हो या गांव हो, हम सब नहाते हैं। एंड मौका मिला बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का, मौका मिला बहुत साइंटिस्ट से बात करने का, थैंक यू IITs, एंड काफ़ी रिसर्चर्स थे। तो ये पता चला कि घरों में जो पानी होता है, किसी को बोलूं पीने का पानी को आप पेड़ में डालिए तो लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि पीने का ही पानी नहीं है तो पेड़ को कैसे देंगे, क्योंकि यही बात अक्सर होती थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: तब माइंड में आया कि नहाने का पानी तो व्यर्थ जा रहा है, और घर में जितने भी पानी का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, 40% पानी नहाने में चला जाता है एंड 30% पानी फ्लशिंग में चला जाता है, टॉयलेट्स में। टॉयलेट का पानी रीयूज करने के लिए बहुत मेहनत है, बहुत खर्चा है, बट नहाने का पानी एक ऐसा पानी है जिसको हम आराम से फिल्टर करके रीयूज कर सकते हैं, चाहे आपको फ्लशिंग में यूज़ करना हो, या पेड़ पौधे में देना हो, या टॉयलेट धोना हो, या बहुत सारे, इसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं नॉन ड्रिंकिंग पर्पस। तो इस चीज़ को लेकर मैंने एक जल तारा इन्वेंट किया, डिज़ाइन किया,
1: जी
0: एंड थैंक यू, उसमें एक पेटेंट भी मिला मुझे। एंड पता चला कि पेटेंट करना बेटर है, नहीं तो कोई दूसरा उसको कॉपी करेगा और उसका पैसा लगा देगा। तो मैंने ऐसा एक डिज़ाइन बनाया है कि आप कोई कॉपी नहीं कर सकता, और ये फ्री फॉर ऑल है
1: अच्छा,
0: कि हर इंसान अपना नहाने का पानी उसमें डाइवर्ट कीजिए, उसमें फिल्टर कीजिए और तुरंत इस्तेमाल कीजिए, उसको नॉन स्टॉप आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप नहा रहे हैं तो मतलब आपके पास एक्स्ट्रा पानी है। हर इंसान को एवरेज कम से कम 30 लीटर पानी चाहिए, और कोई अगर शावर से नहा रहा हो तो डबल हो जाता है, 80 लीटर से 100 लीटर पानी इस्तेमाल हो जाता है। तो इसीलिए मैं लोगों को बताना लगा कि आप ये कार्य करना शुरू कीजिए। मैजिक ड्रम इसको इनिशियली कहते थे, फिर धीरे धीरे इसका नाम पड़ गया जल तारा, क्योंकि हम ये घर का पानी इसमें डाइवर्ट करने लगे एंड नॉन स्टॉप ये पानी इस्तेमाल करने लगे। लोगों को बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। किरण बेदी जी हैं जो बहुत ही वेल नोन फिगर हैं, तो उनको ये आइडिया अच्छा लगा था, उन्होंने देखा था, एंड कई सालों बाद जब

0: हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हमें जल संचय करना है, जन भागीदारी जरूरी है। जल जीवन मिशन जब शुरू हुआ तो उन्होंने, किरण बेदी मैडम ने इस कॉन्सेप्ट को जल शक्ति मंत्रालय को ट्वीट करके बताया कि ये
1: जी
0: देखिए ये मुखर्जी हैं, ये बहुत बढ़िया एक आविष्कार किए हुए हैं, आप लोग ये लोगों तक पहुंचाइए। वो एक दिन है, और जब प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में बताया, मुझे जल शक्ति मंत्रालय बुलाया गया, उन्होंने ये सिस्टम देखा, उन्होंने इस बारे में बहुत सारे पोस्टर्स और उन्होंने चारों तरफ लोगों को बताना शुरू किया कि ऐसा करो, क्योंकि सोच यही है कि एक, अगर हम चाहते हैं कि आज अगर देखा जाए तो 150 करोड़ आबादी में, मान के चलता हूँ हमारे देश का, हर इंसान को जोड़ना हो तो 3 पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है। एक है कोई भी कार्य इजी होना चाहिए, आसान होना चाहिए लोगों के लिए। दूसरा, कार्य सस्ता होना चाहिए, मैं बोलूँगा लाखों रुपए खर्चा होगा लोगों को पसंद नहीं आएगा। एंड तीसरा, क्विक होना चाहिए। मैं ऐसा कुछ काम बोलूँगा कि 2 महीना चले काम ही चल रहा है, बढ़िया बिल्डिंग बन रहा है, फैक्ट्री बन रहा है, कुछ ऐसा इक्विपमेंट बन रहा है, तो लोग इसमें लोग जुड़ेंगे नहीं। एंड उसी समय स्वच्छ भारत अभियान, तो लोग उससे भी एक प्रेरणा मिला कि जब करोड़ों लोग जुड़ सकते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी एक ऐसा काम करूंगा जिसमें हर इंसान अपने हिस्से का पानी बचाना शुरू कर दे। तो इसीलिए ये गैजेट टेक्निक बनाया गया, जल तारा, जिसमें लोग जुड़ने लगे, अपने तरीके से खुद ही इसको इंस्टॉल करने लगे। एंड देखा जाए तो इसमें कोई भी खर्चा नहीं है किसी का।
1: अच्छा
0: यही है कि जैसे मैं थोड़ा आलसी इंसान हूँ, मैं खुद तो काम करूँगा नहीं, तो मैं सोचता हूँ कि कोई खड्डा बना दे तो कोई लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, पत्थर चुन के लाऊंगा नहीं, भाई कोई पत्थर चुन के ला दो, तो मटेरियल लेके आओ, एंड उसको इम्प्रोवाइज करते करते आज ऐसा एक डिवाइस बना दिए हैं कि आप खुद ही बना सकते हैं, नहीं तो आप किसी और से करवा लीजिए। एक अच्छा स्टैंडर्ड करना है तो 5,000 में काम हो जाता है, लेकिन जहाँ लाखों किसान आज हमसे जुड़े हुए हैं वो खुद ही कर रहे हैं, वो बस हमसे एडवाइस लेते हैं, मैं उनको सिखाता हूँ। हमने कॉल सेंटर शुरू किया है, RWH इंडिया हेल्पलाइन, जिसमें लोग ईमेल करते हैं, उनको फोटो वीडियो के साथ इतना सारा भेज देता हूँ कि आज मुझे बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है कि 5 करोड़ से ज़्यादा लोग इन वीडियोज़ और फोटोज़ को देख चुके हैं, सोशल मीडिया में भी बहुत जगह डाले हैं, उन लोग भी इससे देखते रहते हैं, सवाल करते रहते हैं, डेली 300 से 400 लोग हमें ईमेल कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं एंड कमेंट्स कर रहे हैं, जिसको हम लोग नॉन स्टॉप गाइड कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत यूजफुल हो गया है हम सब के लिए, एंड सब लोग जुड़े हैं, यही हमारे लिए एक खुशकिस्मती की बात है।
1: जी, आपने हेल्पलाइन की बात की तो मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी हेल्पलाइन का नंबर या कॉन्टैक्ट का जरिया बताएं, ताकि जिन लोगों की जलतारा में दिलचस्पी है वो इस बारे में पूछताछ कर सकें और नजदीकी लोगों से जुड़ सकें। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन से आपकी इस मुहिम के साथ जुड़कर काम करना चाहे तो उसका क्या तरीका है? इन दोनों सवालों के जवाब दीजिए।
0: जी, पहला तो ये है, RWH इंडिया हेल्पलाइन जो एकदम ही फ्री सेवा है, जिसके लिए हम लोग कोई पैसा नहीं लेते। हम लोग 8 जन हैं जो जियोलॉजिस्ट हैं एंड जो सिविल इंजीनियर्स हैं, जियोलॉजिस्ट एंड सिविल इंजीनियर्स, वो भी अपने तरफ से देश का सेवा कर रहे हैं। एंड कोई भी हमें ईमेल करता है, हम लोग पहले समझते हैं कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, आपके भौग जमीन का क्या सिचुएशन है, आपका टेरेन कैसा है, आपके यहाँ पानी कितना बरसता है, आपका ज़मीन का साइज़ कितना है, छत कितना है और पानी का उपयोग कितना है, यही सब चीज़ें हम लोग उनको बोलते हैं ईमेल कीजिए हमें। waterheroofindia@gmail.com एक मेल बनाया है जिसमें लोग ईमेल करते हैं, उनको हम लोग रिस्पॉन्ड देते हैं हमारे इंजीनियर्स बैठ के, और उनको पूरा डिज़ाइन डायग्राम के साथ सिखा देते हैं कि आप लोग ये स्टेप कीजिए और आपका काम हो जाएगा, जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं होगा। एडिशनली अगर आपके पास फंड्स हैं, चाहे 1,000 रुपये हो, 2,000 हो, 3,000 हो, क्योंकि हमारा कोई भी काम 2-3 हज़ार रुपये से ज़्यादा के खर्चे का नहीं है, क्योंकि पहले ज़माने में जब भी हम जल संचय की बात करते हैं या वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं, हज़ारों के लाखों में बिल जाता था। अब जब आप कोई बात बोल रहा है कि ये तो 2 लाख खर्चा होगा, मैं बोलता हूँ 2 लाख छोड़ दो, 2,000 में हो जाएगा। कोई बोलता है 3 लाख खर्चा होगा, मैं बोलता हूँ भाई 3,000 में हो जाएगा। तो लोगों को फिर ये बात समझ में आने लगी, एंड जब लोगों को कॉन्सेप्ट में क्लियर करना शुरू किया कि जल संचय का क्या कॉन्सेप्ट होता है, वाटर कंजर्वेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, लोगों को क्लैरिटी, जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया, एंड लोग खुद ही करना शुरू कर दिए। पहला तो ये है। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट जो हमारे पूरे देश में एक कैंपेन चल रहा है, कई ऐसे न्यूज़ आए हमारे पास, न्यूज़ ये आए कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा देती है कि आप लोग जल संचय कीजिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कीजिए, लेकिन वो पैसा यूज़ नहीं हो पाता है, वो वापस चला जाता है।

0: बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा खर्चा करने के लिए रेडी है अंडर सीएसआर, लेकिन वो फंड यूटिलाइज नहीं हो पाता है, वो वापस चला जाता है। बहुत एनजीओज हैं हमारे देश में जो इस सब्जेक्ट को लेकर काम करना चाहते हैं, वो वापस चला जाता है, उन लोग कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि स्किल नहीं है लोगों में, क्या करना है ये नहीं पता। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सब जानते हैं कि हमारे पास पानी की कमी है, या दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है पानी बहुत ज्यादा है, हम लोग डूब जा रहे हैं, यही दो प्रॉब्लम है, बीच का कुछ नहीं है। और सबसे अजीब बात क्या है, वही सेम गांव में पानी की कमी होती है और सेम गांव बारिश में डूब जाता है। तो सेम जगह में आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देखिए, जून महीने में यहाँ इस शहर में पानी खत्म हो चुका है, लोग टैंकर के पानी से जीवित हैं, इतने लोग अस्पताल पहुंच गए हैं, पानी नहीं है, अभी गांव छोड़ के जाना पड़ेगा, शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। और ठीक 15 दिन बाद आप 15 जुलाई में आ जाइए और आप पूछिए कि क्या हालत है, बोले कि ये सेम गांव सेम आदमी पानी में डूब चुका है, उसको एक नौका ले आके बचा रहे हैं, अभी सारा घर भी डूब गया है। मतलब पानी की कमी नहीं है, पानी का मैनेजमेंट की गड़बड़ी है।
1: बिल्कुल।
0: तो इसी को माइंड में रखते हुए हम लोगों ने जो RWH इंडिया हेल्पलाइन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्किल डेवलपमेंट जो इंडिया का जो कैंपेन चल रहा है, इससे प्रेरणा लेके हमारी कोशिश यह है कि हर इंसान को इसके ऊपर स्किल ट्रेनिंग दिया जाए। 7,400 लोगों को हमने ऑलरेडी ट्रेन किया है, हर गांव में हर शहर में, कोई भी सीखना चाहता हो कि जल संचय कैसे करें और जल संचय का सर्विस कैसे प्रोवाइड किया जाए, ताकि एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, क्लास 8th भी पढ़ा हो, क्लास 5th भी पढ़ा हो, उसको हम लोग सिखा रहे हैं कि आप जल संचय कैसे कर सकते हैं अपने गांव में अपने शहर में। आप लोगों को जाइए, बात कीजिए और आप खुद करके आइए, लोगों को एक तो आप सेवा तो दे ही रहे हैं, आपको कमाने का भी अवसर मिलता है। तो स्किल डेवलपमेंट का जैसे सोच है कि हम लोग ऐसे स्किल्स डेवलप करें जो हमारे देश में ज़रूरत है। अब जहाँ हमारे देश में जो बहुत सबसे बड़ी ज़रूरत है, जो हमें लगता है, वो पानी की बचत, पानी को लेकर संचय करना, पानी का कैसे मैनेजमेंट करना, इसमें अगर स्किल डेवलपमेंट और क्लासेस हो सकें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो थैंक यू गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, उन्होंने भी मुझे एक जगह दिया है PWD के हेल्प से। हेल्थ डिपार्टमेंट ने मलाड वेस्ट मुंबई में 7 एकड़ का ज़मीन उन्होंने अलॉट किया है, एक हॉस्पिटल प्रमाइसेज हैं, देश भर से कम 300-400 लोग हर महीने आते हैं मुझसे मिलने, जल संचय के अलग अलग विधि समझने के लिए, एंड उसी में लोग ट्रेनिंग लेके जाते हैं और अपने अपने गांव में अपने अपने शहर में जल संचय करने का सर्विस प्रोवाइड शुरू करते हैं, जिससे बहुत बड़ा कार्य हो रहा है।
1: 7,500 लोग तकरीबन आपसे
0: 7,400 लोग
1: जी, यानी 100 कम है उसमें। क्या इसमें वो लोग भी हैं जो ऐसे इलाकों से हैं जहां बहुत कम बारिश होती है, जैसे राजस्थान का इलाका है या कच्छ का इलाका है?
0: आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वही हैं ज्यादातर।
1: अच्छा,
0: मध्य प्रदेश, यूपी, थोड़ा बहुत बिहार के एरिया जहां फ्लड होता है, वो भी लोग आते हैं।
1: अच्छा, वो भी,
0: क्योंकि सेम ये मैं सोच लीजिए पैरासीटामोल दे रहा हूं लोगों को। हर चीज मैं बोलता हूँ पैरासीटामोल ले लो। पानी की कमी है तो भी आपको जल संचय करना है, पानी ज्यादा है तो भी जल संचय करना है, फ्लड आया है तो भी जल संचय करना है। तो इसलिए दो बीमारी है लेकिन इलाज सेम है।
1: इलाज सेम है। हाँ। और वो इलाज, मतलब उसकी मुहिम आप तैयार करें।
0: सेंट्रल महाराष्ट्र एंड हमारे ईस्टर्न महाराष्ट्र से, राजस्थान, गुजरात एंड बड़े बड़े म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से लोग आते हैं, दिल्ली जल बोर्ड के लोग आते हैं, जिनका पानी विषय के लेके जो डिपार्टमेंट्स हैं। क्योंकि एक मैंने रियलाइज़ किया है कि क्योंकि मैं 22 अलग अलग स्टेट्स में काम कर रहा हूँ इस समय, तो हर स्टेट का क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या जुगाड़ हो सकता है, क्या वर्कआउट हुआ है, क्या नहीं हुआ है, तो सबका थोड़ा थोड़ा मैंने देखा है, काम किया है। तो लोग, कई लोग मिलने आते हैं समझने के लिए कहाँ क्या प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम में किस आइडियाज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किसमें क्या फ़ायदा ज़्यादा होगा, किसमें फ़ायदा कम होगा, और कम पैसे में जो काम हो सकता है उसके ऊपर हमारा ऑलवेज फोकस रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं DIY, डू इट योरसेल्फ।
1: यही तो जन भागीदारी है।
0: बस, जन भागीदारी का मतलब ही है DIY। ये आज मैंने आपसे बात करते करते ये मेरे माइंड में आया है, जन भागीदारी मतलब DIY। हमारा एक DIY किट है जल संचय के ऊपर, जो मैं सबको देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ये हर चीज, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ ना, आप मुझे waterheroofindia@gmail.com पे मेल कीजिए तो उनको DIY किट मिल जाता है। उससे उन लोगों का 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, और उसमें फिर मेरा मोबाइल नंबर दिया रहता है, हमारे इंजीनियर्स का, लोग फ़ोन करके बात कर सकते हैं, एंड एक इंजीनियर के पास 1,000 लोग होते हैं जिनको उन लोग सपोर्ट करते हैं, एंड वैसे वैसे हमारे इंजीनियर्स बढ़ते जा रहे हैं। और एक आपको खूबसूरत बात बोलूंगा, इस समय मेरे पास 8 इंजीनियर्स हैं अलग अलग भाषा में।
1: अच्छा।
0: क्योंकि ऐसा बहुत हुआ है कि सबको हिंदी नहीं आती है, सबको अंग्रेजी तो नहीं आती है, बहुत लोग ऐसे गुजराती बोलते हैं, कन्नड़ा,

0: तेलुगु, मलयालम के लोग हम ढूंढ रहे हैं अभी, नहीं सेवन सिस्टर्स से हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के लोग और जुड़े हमसे। एंड वर्क फ्रॉम होम भी हम लोगों ने शुरू कर दिया, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए। तो ऐसे लोकल लोग हैं, बंगाली तो मैं खुद बोल लेता हूँ, उसमें मैं ठीक ठाक समझ जाता हूँ, मेरी वाइफ इसमें जुड़ गई है, वो मराठी में लोगों को समझाती है, तो एक अच्छा चल रहा है। एंड लोगों का एक संतुष्टि है, लोग खुश हो रहे हैं, लोग अपने अपने तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, डिस्कशन होता है, एंड बहुत एक खूबसूरत तरीके से पूरा देश आगे बढ़ रहा है।
1: वाह, किस तरह के बड़े बदलाव इस पूरी मुहिम के जरिए सामने आए हैं?
0: देखिए, एक कहते हैं ना, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, उसको मैं हिंदी में कैसे बता सकता हूँ, इसका हिंदी वर्ड, एक एक कहावत है ऐसा कुछ, कि अगर आप समय पे चीज़ का इलाज कर लें तो बड़ा समस्या बन के नहीं आता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही
0: तो
1: है।
0: कोशिश ये रहती है कि जैसे ही हमें लगे कि पानी की कमी है, तो एक छोटा सा उपाय, जल तारा, एक बड़े समस्या को अंदर आने नहीं देता है, उसके पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं
1: समय रहते ये उपाय कर लेना
0: समय
1: चाहिए।
0: रहते ही।
1: जी
0: बहुत सही बताया आपने। तो कोशिश ये रहती है, जैसे एक एक देखते हैं, पूरा मोहल्ला डूब गया पानी में, अक्सर आता, पूरा गांव डूब गया, क्यों डूबता है, ये हमने रिसर्च करना शुरू किया है।
1: पानी की निकासी ठीक नहीं है।
0: हाँ, क्योंकि हम लोग पूरे पानी को एक जगह जमा होने देते हैं। अब सोच लीजिए, हमारे सामने ही बहुत बड़ा टेबल रखा हुआ है, ये सोच लीजिए हमारा पूरा, कहते हैं मुंबई शहर के मान लेते हैं,
1: जी
0: हर शहर में आप देख के लाइए, एक ऊपर वाला जमीन होता है, एक निचली जमीन होती है। अब बारिश तो हर जगह सेम हो रहा है, ऊपर वाले जमीन पे बारिश हुआ है, वो सीधा बह के नीचे वाला, जो सबसे जो लो लाइन एरिया है, वहां पहुंच जाता है, तो वहां पे वर्षा जल निकासी नहीं हो पाता है। तो जल संचय एक वो तरीका है कि हर आदमी अपना पानी अपने घर में, एक स्कूल का पानी स्कूल में, एक ऑफिस का पानी ऑफिस में, एक प्लेग्राउंड का पानी प्लेग्राउंड में, एक मंदिर का पानी मंदिर में, मतलब हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स, ये उससे मैंने प्रेरणा लिया है।
1: मतलब हर जगह अगर पानी का इस तरह से संचय होगा तो जल भराव नहीं होगा और
0: बस
1: बाढ़ की समस्या नहीं होगी।
0: बस, और वो जमीन में जाएगा जो हमें काम आएगा,
1: जी
0: क्योंकि
1: जी
0: बहता हुआ पानी नदी में चला जाता है, समुन्द्र में चला जाता है। एंड बहुत बड़ी बात सोच ये है सर, मैं आप जो जो सुन रहे हैं आप समझिए, पहले हमें लगता था कि हम बहुत बड़े तालाब में पानी इकट्ठा करेंगे, हम लोग तालाब का पानी पीते थे, वो सूखने लग गया, क्यों, क्योंकि धूप बहुत तेज होता है। फिर हमने कुआं खोदा, लोग इतने हो गए कि कुआं सूखने लग गया, 50 फीट 100 फीट तक हम लोग कुआं खोदे हैं। उसके बाद हमने बोरवेल खोदा, बोरवेल हम लोग 200 300 400, कहीं कहीं तो मेरे पास फोन आता है 1800 2000 फीट नीचे तक बोरवेल से पाइप निकाल रहे हैं, बोर जो कहते हैं, अब वो भी सूखने लग गया, 70% से ज़्यादा बोरवेल सूख चुका है। लेकिन हमें लगता था कि जाने दो बोरवेल को, जाने दो कुआं को, हम लोग तालाब बनाएंगे, हम लोग बांध बनाएंगे, हम लोग नदियों को रोकेंगे। वो अपने जगह ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से इवेपोरेशन रेट बढ़ गया है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, भापीकरण,
1: वाष्पीकरण।
0: वाष्पीकरण, वाष्पीकरण के जब ये कॉन्सेप्ट देखा गया था, मुंबई मॉडल अक्सर बात किया जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट में, देखिए मुंबई मॉडल कितना कमाल है, इन्होंने बड़े बड़े तालाब बनाए हैं, तालाब में पानी कलेक्ट करते हैं और हम लोग पूरा साल भर उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ लोग भूल गए थे कि वाष्पीकरण एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज के समय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 27% वाष्पीकरण हो रहा है इस समय। तो ये वाष्पीकरण 2035 का एक प्रोग्राम इंडिया गवर्नमेंट लेके चल रही है, कि उस समय जो सिचुएशन होगा, हमें 10 साल पहले लगना पड़ेगा।
1: एक तिहाई पानी भाप बन के उड़ जा रहा है।
0: जी, इस समय मुंबई में जो पानी की संकट है, पुणे में पानी की संकट है, चेन्नई में पानी की जो संकट है, बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन रेट, वाष्पीकरण के
1: गर्मी बढ़
0: कारण
1: गई है।
0: गर्मी बढ़ गई। हमें लगता था, पहले लगता था 12% पानी उड़ेगा,
1: जी,
0: अभी
1: डबल से
0: 23,
1: ऊपर हो गया।
0: बिल्कुल यही हमारा प्रॉब्लम है। तो इसलिए अब तालाब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, हमें पानी जमीन के अंदर पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जल संचय का तालाब भी एक तरीका है, लेकिन जल संचय, तालाब का पानी उड़ जा रहा है, पानी जो जमीन के अंदर जाएगा वो कभी एवेपोरेट नहीं होता, आप 100 साल बाद भी निकाल सकते हैं।
1: इसमें बॉटम लाइन ये है कि पानी का ये संचय हम सबको करना होगा। जो
0: बिल्कुल
1: पानी की कमी का शोर मचाते हैं, जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जो पानी को वेस्ट करते हैं, सोसाइटीज, अस्पतालें, उसके अलावा तमाम बंगलोज, ऑफिसेज, प्रार्थना स्थल, हर एक जगह पर लोगों की जिम्मेदारी है कि वो पानी बचाएं, वरना आने वाले कल में दिक्कत होने वाली।
0: ये हर इंसान को अपने हिस्से का पानी, इसको मैं थोड़ा, आप जो बोल रहे हैं इसमें बस एक शब्द जोड़ दिया हूँ,
1: जरूर,
0: अपने हिस्से का पानी बचाइए, बस दूसरे
1: यस,
0: का मत सोचिए, अपना कर लीजिए तो अपने आप हो जाएगा सब
1: तो
0: काम।
1: सब अपने अपने हिस्से

0: का पानी बचाएं, तो ये सारी मुहिम जुड़ के एक बड़ा बदलाव ले आएगी।
1: बिल्कुल, इसलिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं जल संचय जन भागीदारी बहुत
0: जी जी
1: जरूरी है।
0: बिल्कुल
1: हम
0: बिल्कुल
1: लोग क्या लगता है हर दूसरा आदमी करेगा, म्यूनसिपलिटी काम करेगी, कलेक्टर साहब काम करेंगे, मजिस्ट्रेट साहब का काम है, हमारा काम नहीं है, डीएम मैडम का काम है, ऐसा नहीं होता है। हम सब का, हमारा पानी हमारा घर, हमारा पानी हमारा स्कूल, हमारा पानी होता है जो भगवान ने हमें दिया है, इस जगह के लिए दिया है,
0: हमें बचाना है। तो चलते
1: हमारा पानी।
0: चलते अपने कॉल सेंटर का नंबर और वो ईमेल आईडी दोबारा बता दीजिए, और ये कि कैसे लोग खुद को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल भी इससे जुड़ सकता है, क्योंकि ये बहुत पेचीदा काम नहीं है।
1: बिल्कुल, 2 घंटे 3 घंटा मेहनत करना पड़ता है। किसी को भी इस बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहिए हो तो waterheroofindia@gmail.com पे मेल कीजिए, आपको इसमें ऑटोमेटेड रिस्पांस मिलेगा, नंबर्स मिलेंगे, उसको पढ़ लीजिए, फिर हमें फ़ोन कीजिए, हम आपको और भी इसमें डिटेल दे देंगे। एंड प्लस मैं दोबारा बोलूँगा, हमारा जो स्किल डेवलपमेंट कैंपेन चल रहा है पूरे देश में, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में भी इसको आप देख सकते हैं, आप खुद सीखिए, अपने गांव में अपने शहर में ये सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कीजिए, ताकि जिस हिसाब से 7,400 लोग इससे जुड़े हैं, और भी लोग इससे जुड़ जाएं और अपना घर भी इसमें चला पाएं। थैंक यू।
0: सुभजीत जी, ये जो मैटिनी शो के तहत आपसे बातें हुई हैं, अभी मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें बाकी हैं, पर इस हफ्ते के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। लेकिन इजाजत लेने से पहले हम चाहते हैं कि अपनी पसंद का एक गाना, बल्कि कहें कि अपनी पसंद के एक गाने की आप फरमाइश करें, हम उसको पूरा करेंगे।
1: एक गाना मुझे हमेशा बहुत प्यारा लगता है जो नेचर से रिलेटेड है,
0: जी
1: एंड मेरी मम्मी भी वो गाती थी, अभी उनका फेवरेट था, अभी तो वो नहीं है, बट मुझे भी बहुत पसंद है। इनफैक्ट
0: जी
1: मैं थोड़ा सा गा दूँ आपके
0: जरूर जरूर
1: सामने।
0: जरूर, स्वागत।
1: हरी हरी व सुंदरा पे नीला नीला ये गगन,
0: वाह वाह,
1: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तो बस ये गाना सुना दीजिए, बहुत दिन हो गए सुने हुए।
0: क्या बात है। बूंद जो बन गई मोती फिल्म का गाना, मुकेश की आवाज, भरत व्यास के बोल और सतीश भाटिया का संगीत,
1: अरे बाप रे
0: सुनते हैं ये
1: बाप।
0: गाना।

0: बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी और आगे की बातें करेंगे।
1: थैंक यू जी।
0: चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। तो अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते हम फिर मिल रहे हैं मैटिनी शो में और बातें करेंगे जल है तो कल है की। इक्कीस जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
6: हो तो

0: रहती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। यादों की महफिल कार्यक्रम होगा कुछ ही पलों के बाद।
1: एयरोस्पेस ने बनाया है विक्रम एक का यह प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये पहली बार होगा जब किसी भारतीय निजी कंपनी ने देश में डिजाइन और तैयार किया गया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम एक मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ये चार चरणों वाला रॉकेट तेज और जरूरत के अनुसार उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तीन दिन के दौरे पर

आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में तीन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष

0: सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। नई दिल्ली में आर फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
1: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इस नेतृत्व को देखा है और ये तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस सहित कई अन्य अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। पीवी सिंधु ने टोक्यो में खेले जा रहे जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: लोगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। अगले कार्यक्रम के लिए कुछ पलों का इंतजार। हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
3: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
4: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
2: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध

अमर प्रेम फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना। दिन की इस भागदौड़ में दिन की 12:11 विविध भारती यादों की महफिल मस्ताना।

आराधना फिल्म का गाना था और अब द ट्रेन फिल्म का गीत आनंद बख्शी राहुल देव बर्मन। मोहम्मद रफी की आवाज।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुनिए।

नमक राम फिल्म का गाना आपने सुना। फिल्म का नाम है धड़कन, किशोर कुमार की आवाज।

अजनबी फिल्म का गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आपने सुना। आनंद बख्शी की बोल थी, आर डी बर्मन की तर्ज थी, राजेश खन्ना की याद, यादों की महफिल।

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं, सुरीले सफर कार्यक्रम में हम एक टेक्स्ट पोस्ट करते हैं और उसके जरिए हम सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी से जुड़ते हैं और हमारी और आपकी होती हैं बातें और तय होता है कार्यक्रम का एक सफर। आज की इबारत या आज का टेक्स्ट ये है, कभी कभी किया है ऐसे कि बहुत सोचा ये कहना है वो कहेंगे, पर जब कहने का मौका आया तो कुछ नहीं कहते बना, या ये लगा कि छोड़ो अब क्या कहना है। कभी

पत्र लिखने की हिम्मत की, कुछ तो दिल ने कहा होगा। अपने दिल की बात सुनो। दिल कहता है कह दूं तो बोलो बोलो, नजाकत से कहूं तो चुप रहिए, नजाकत से कहूं तो चुप न रहिए, बोलिए दिल की बातें। तो भाई ये था आज का टेक्स्ट, या ये कहूं कि ये है आज का टेक्स्ट। और बहुत सारे श्रोताओं के बहुत सारे रिस्पॉन्सेज हमें मिले हैं, और कई श्रोताओं ने अंदाजा लगाया है कि आज के गाने कौन से हो सकते हैं, आज के शब्द कौन से हो सकते हैं। और कुछ तो लोग कहेंगे, ये एक श्रोता का कमेंट है, एक श्रोता लिखते हैं कि थोड़ी देर पहले राजेश खन्ना को आपने याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता लिखती हैं, कभी कभी ऐसा ही होता है, कुछ कहना चाहो पर बातें मन में रहकर मुंह से नहीं निकल पाती, शायद सुनकर किसी को दुख ना पहुंच जाए, कभी किसी के सम्मान को चोट ना लग जाए। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि इंसान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन अपने मन की उस लाचारी को नहीं भूल सकता जब सब कुछ सामने था पर फिर भी मुट्ठी से फिसल गया, वो एक पल की हिचक उम्र भर का सन्नाटा बन गई। आज जब भी पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि सबसे भारी बोझ उन शब्दों का होता है जिन्हें हम कभी बोल नहीं पाते। बहुत ही बड़ी बात कह गए हैं हमारे श्रोता। एक और श्रोता का ये कमेंट है, बहुत कुछ सोचा था कहने को पर लफ्जों ने जब मोड़ लिया, दिल की बात दिल में ही रह गई या हमने कहना छोड़ दिया। कभी लिखे थे जो खत पन्नों पर, वो स्याही आज भी कुछ कहती है, नजाकत से सुनो दिल की धड़कनें, जो अनकही बात तब भी बहती है। खामोशियों के इस मेले में अब खुद से ही कुछ सवाल कीजिए, जो दिल कहे वो सच बयां कर दीजिए, डरिए मत बस आज कुछ बोलिए। ये हमारे तमाम श्रोताओं के कमेंट्स हैं, और आज के इस कार्यक्रम का सिलसिला शुरू करना है तो चलिए, ये रहा आज का पहला गाना। और अमूमन हमारे इस कार्यक्रम में हम गानों से जुड़े सवाल करते हैं, लेकिन आज क्यों ना बातें करें। हमें बताइए कि कब जिंदगी में ऐसा मौका आया जब कुछ कहना था और कहते नहीं बना, किस किस की जिंदगी में ऐसा मौका आया था। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाइए, सुरीला सफर वाली पोस्ट पर लिख दीजिए ये बात। इस गाने के बाद आप सभी की बातें शामिल करते हैं, कैसे आप अपनी बात नहीं कह पाए या कैसे आपने संकोच छोड़ा और अपनी बात कह दी, दोनों ही बातें लिखी है।

वही पड़ोसन फिल्म का ये गाना एकदम जैसे ही खत्म हुआ ये लगा कि अरे ये गाना तो खत्म हो गया। और अब देखिए कि बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो लगातार विविध भारती के फेसबुक पेज पर अपनी बात लिख रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं सुरीला सफर कार्यक्रम में। वो इस कार्यक्रम के साझीदार बनना चाहते हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं। तो सायरा बानो सुनील दत्त, ये एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही शानदार आगाज हुआ है। एक श्रोता का कहना है कि मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि वक्त पर बोल नहीं पाती, पर बाद में पछतावा होता है कि ऐसा बोल देती या कह देती। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि लाइफ में कई बार ना कहना कितना मुश्किल होता है, तो मैंने भी नहीं कहा। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि हमारी सगाई के कुछ महीनों बाद पारिवारिक फंक्शन में मेरी होने वाली धर्मपत्नी से अलग से मिलना हुआ था अजमेर शहर में। पहले मैंने सोचा कि मैं ये कहूँगा वो कहूँगा, पर कुछ ना कहकर बस मैंने यही कहा, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है, कल भी रहेगा। और वो ये बात सुनकर मुस्कुराई थी। एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि आज की इबारत बहुत ही दिलचस्प है। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा, कह दिया हाले दिल तो एक सुकून पा लिया, खामोशी का वो भारी बोझ दिल से हटा लिया। क्या बात है, क्या हाले दिल कह पाए, अपनी बात कह पाए, या बस दिल की दिल में ही रह गई। किस गीतकार का है ये गाना, यही है आपको बताना। और साथ में ये भी कि आपने कब किसको प्रेम पत्र लिखा था। ये जो लव लेटर लिखने की बात है, जरा आज इस राज को खोल ही दीजिए।

संगम फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना और बहुत सारे श्रोताओं के रिस्पॉन्सेज आए हैं हमारे सवाल के जवाब में। एक श्रोता लिखते हैं कि सगाई के बाद अपने होने वाले पति को प्रेम पत्र लिखा था, क्योंकि वो जमाना ऐसा था जवाब भी आया करता था और ये खत हमने पिछले 28 साल से संभाल कर रखे हैं। एक और श्रोता कहते हैं, जिंदगी में हर रोज न जाने कितनी बातें हम किसी से कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। और आगे वो लिखते हैं कि जैसे भोलेनाथ ने विष को गले में रख लिया था, वैसे ही कई बातें हम विष समझकर पी लेते हैं। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि हमने किसी को लव लेटर लिखा, लेकिन कुछ मित्रों को जरूर लव लेटर लिख के देते थे जो हम नहीं लिख सकते थे, उनके जज्बात हम अपनी कलम से लिखते थे। एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि पुराने पन्ने पलटवा रहे हैं, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आज आप सोच कर आए हैं कि हर किसी के छिपे हुए राज निकलवाएंगे। एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि कहना तो चाहते थे, कहा भी, पर लोगों ने सुनी और फिर हमें ऐसा छोड़ा कि जैसे हम कुछ नहीं थे। ये एक श्रोता अपना दुख शेयर कर रहे हैं। एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि लव लेटर लिखा नहीं था, किसी का मिला था, वो भी सांकेतिक भाषा में, क्योंकि वो जमाना ही ऐसा था। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो अपनी बात कह रहे हैं। ट्यूशन पढ़ते समय उसकी हया भरी नजरें संग मुस्कान को जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई, ये 50 साल पुराना वाकया है। ये एक श्रोता है उन्होंने कहा। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है, शादी के बाद जब मायके जाती तब ये सोचती मम्मी पापा से ये कहूंगी वो कहूंगी, पर जब मिलती थी तब न जाने उनकी बातें सुनने में ऐसी रम जाती थी कि बहुत सी बातें बाद में याद आती थी कि ये कहना था वो कहना था, पर कई बातें कुछ कभी बोल नहीं पाई, पापा नहीं हैं पर कह नहीं पाई बातें। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि कॉलेज लाइफ में जिससे जो कहना था कह नहीं पाए और वो दूर चली गई। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रेम पत्र की बात चली है तो बता देता हूं कि बिफोर मैरिज मैंने भी बहुत सारे प्रेम पत्र लिखे, बहुत सारे प्रेम पत्र लिखे, एक ही को, ये जरा क्लियर कीजिएगा। अभी संभाले हुए हैं, कोई रविवार की मस्तानी शाम को फिर से पढ़ लेते हैं। ये एक श्रोता की बात है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं, लिखते हैं कि जो दुनिया से चले गए उनसे बहुत कुछ कहना था। और इसके अलावा और एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि कहना बहुत कुछ था पर

कह नहीं पाए, फिर देर हो गई, कुछ शर्म और कुछ डर रहा। ये तमाम श्रोताओं की बातें, और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और गाना सुनते हैं। ये आपको बताना है फिल्म का नाम। प्रेम पत्र की बात हुई तो कई लोगों ने जवाब दिए, अब जरा ये बताइएगा कि नॉर्मल चिट्ठी पिछली बार कब और किसको लिखी थी आपने?

एक श्रोता बड़े अफसोस से कह रहे हैं, क्या बताएं यूनुस जी, किस्मत कुछ ऐसी रही कि श्रीमती जी के अलावा किसी को प्रेम पत्र नहीं लिख पाए। अब श्रीमती जी जब भी मायके जाती थीं तो लिख दिया करते थे, फिर मोबाइल आने पर यह सिलसिला भी खत्म हो गया। इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि अब चिट्ठी पत्री का जमाना चला गया है और संदेश बॉक्स के साथ सांकेतिक इमोजी से ही लोग काम चला लेते हैं, और जो समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो उनकी भला से। ये बहुत महत्वपूर्ण बात एक श्रोता ने लिखी है। एक और श्रोता है लिखते हैं कि चिट्ठी एक बार भी नहीं लिखी, लेकिन पोस्ट ऑफिस से पार्सल बहुत सारे पोस्ट किए हैं रिसेंटली। एक श्रोता है जो लिख रहे हैं कि नॉर्मल चिट्ठी लिखे

पिछली बार कब लिखी थी ये तो याद नहीं है, पर पिताजी का लिखा हुआ 1978 का अंतर्देशी मिला। आज पिताजी नहीं है पर ये पत्र मैंने संभाल कर लिखा। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि उन्होंने आखिरी पत्र जो है वो विविध भारती को लिखा था। बहुत बढ़िया बात। एक और श्रोता ने आखिरी पत्र जो है वो विविध भारती में लिखा था और उनकी इल्तिजा ये है कि मनचाही गीत कार्यक्रम में शामिल किया जाए। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि आजकल ज़माना बदल गया, आज के माँ बाप तो बच्चों की सुन लेते हैं, हमारे ज़माने के माँ बाप कुछ कहते सुनते नहीं थे, उससे पहले उनके हाथ बोलने लगते थे और हम कुछ बोल नहीं पाते थे। कुछ दिल ने कहा ये गाना बहुत सारे श्रोताओं के दिल तक उतरा है। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि अपने साथी को पहला खत लिखा जो पोस्ट नहीं किया, किसी के द्वारा भिजवाया। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं के कमेंट से एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा एक दोस्त उड़िया था, उसे एक हिंदी भाषी लड़की से प्यार हो गया था, वो मुझसे हिंदी में प्रेम पत्र लिखवाता था, वही पहला प्रेम पत्र था। भाई देखिए, वाया वाया प्रेम पत्र यानी किसी और के लिए लिखे गए प्रेम पत्र की बात है, ये भी बहुत ही दिलचस्प बात है। कुछ और कमेंट्स अगले गाने के बाद शामिल किए जाएंगे। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात आई थी वो इमोजी की और डिजिटल संवादों की थी, तो यहां बताइएगा कि क्या चिट्ठी पत्री की जगह जो व्हाट्सएप और डिजिटल संवाद ने ले ली है या जो इमोजी के जरिए संचार है, इमोजी के जरिए अपनी बात कहना है, इसके बारे में आपका क्या राय है, आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, क्या इमोजी सचमुच में आपके जज्बात को सामने वाले तक पहुंचा देते हैं या ये शॉर्टकट तरीका आपको पसंद नहीं। दूसरा, व्हाट्सएप संवादों से ज्यादा आनंद चिट्ठी में आता था या नहीं।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
5: हो तो

0: है
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
1: भाई हमने अपने श्रोताओं से ये पूछा था कि इमोजी के बारे में उनकी क्या राय है, तो बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि पत्र लिखते और पढ़ते वक्त जो भाव मन में आता है वो किसी इमोजी या व्हाट्सएप चैटिंग से नहीं आता, केवल खाना पूर्ति होती है। इसके अलावा एक और श्रोताएं लिखती हैं कि डाकिए का इंतजार करना और खत का लिफाफा खोलना, इसमें जो उत्सुकता थी वो किसी डिजिटल नोटिफिकेशन में नहीं हो सकती। इसके अलावा एक और श्रोता का कहना है कि व्हाट्सएप में वो फीलिंग नहीं आती है जो हम लेटर में लिखा करते थे। इसके अलावा एक और श्रोता का कहना है कि चिट्ठी में जो लिखा जाता है उसमें संवेदनाएं होती हैं, विश्वास होता है, उम्मीद होती है, प्यार होता है। किसी की चिट्ठी जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि उससे हम बातें कर रहे हैं, और चिट्ठी पढ़ने के बाद हमारे दिल और दिमाग में एक उथल पुथल आती है जो हमें बेचैन कर देती है, लेकिन व्हाट्सएप और इमोजी में ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं जिसमें हमने कुछ अभी पढ़ा था। इसके अलावा एक और श्रोताएं लिख रहे हैं कि इमोजीज का आजकल बहुत अच्छा उपयोग हो गया है, कई बार कुछ भी लिखने के लिए इमोजीज से मन की बात अच्छे से जाहिर हो जाती है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो ब्लैंकली लिख दें तो उसका वो अर्थ ना निकले जो इमोजी के बाद होता है। तो एक श्रोताएं जिन्होंने इमोजी का सपोर्ट किया है। इसके अलावा एक और श्रोताएं जो लिखती हैं कि हमें इमोजी नहीं पसंद है फिर भी भेजते हैं जल्दी के लिए, वैसे लिखकर संदेश भेजना ज्यादा पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी तो उनकी सहेली हमारे कॉलेज के पते पर खत भेजती थी और हमारे खत को पढ़कर उन्हें सुनाती थी। ये बात 57-58 साल पहले की है। एक और श्रोता है जो लिखती है कि आपने ये जो पूछा है इमोजी का, तो इमोजी मुझे अच्छी नहीं लगती, ये फीलिंग बता पाते हैं, आजकल के बच्चों को बता पाते हैं, पर मुझे तो इमोजी से कोई फीलिंग नहीं आती। ये एक श्रोता की बात है। तो भाई बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह से अपने रिस्पॉन्सेज दिए हैं और इमोजी के बारे में अपनी बात कही है। देखिए ये जो कार्यक्रम है सुरीला सफर, इसके बहाने कितने सारे श्रोताओं के ख्यालात हमें पता चले, और लगातार जो कमेंट्स आ रहे हैं ना फेसबुक पर, लगातार ऊपर स्क्रॉल होते रहते हैं। और इसी पल एक श्रोता ने ये लिखा है कि कम ही हमें इमोजी की भाषा समझ में आती है, ना समझी से खुशी की जगह गुस्से वाली इमोजी भेजने से बहुत सारे मित्र हमसे नाराज भी हो गए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि कागज पर लिखी चिट्ठी तकिए के नीचे रखकर सो सकते हैं, पर मोबाइल तकिए के नीचे रखकर कैसे सोएं। चिट्ठी में हम अपने जज्बात उड़ेल देते थे, चिट्ठी में उसका चेहरा देखते थे, जो बात पत्रों में है वो मोबाइल के मैसेजेस में कहाँ है। कितनी प्यारी बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं। अगर आपने अभी तक अपनी बात नहीं कही है, डिजिटल चिट्ठियां और फिजिकल चिट्ठियां यानी हाथ से लिखी हुई चिट्ठियां या व्हाट्सएप के जरिए भेजे गए संदेश, इन दोनों में से आप किसे प्रेफर करते हैं, और दूसरी बात क्या इमोजी सचमुच में अपनी बात कहने का अच्छा जरिया है, ये दोनों बातें बताइएगा। अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं।

भाई ये गाना खत्म हो गया और इतने सारे मैसेजेस इस बीच धड़ाधड़ आए हैं, मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादातर मैसेजेस आपको पढ़ के सुनाऊं। चिट्ठियां दिल की बात शब्दों में पिरोने के लिए वक्त और सब्र मांगती हैं, जो एक गहरी आत्मीयता पैदा करता है। हाथ से लिखी चिट्ठी हमेशा के लिए एक निशानी बन जाती है, जिसे सालों साल सहेज कर रखा जा सकता है। ये हमारे एक श्रोता की बात है। उसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि पहले चिट्ठी लिखना पढ़ना, पर लिखवाने वाले के आंसू और पढ़ते समय भी उनकी रुलाई देखकर अपनी भी रुलाई आती थी। मैं नानी के साथ रहती थी, माँ दूर रहती थी और जब भी नानी अपनी बेटी को पत्र लिखवा रही होती थी तो आधी बात रोते रोते ही लिखी जाती थी और

रोते रोते लिखते चली जाती थी। इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं, प्रेम पत्र लिखने के बाद जब उसे पहुंचने का नंबर आता था तो रिश्वत भी खिलानी पड़ती थी, बच्चों को आइसक्रीम टॉफी बिस्किट। ओहो हो, ये कहने का मतलब है आपका, मैं समझा। इसके अलावा एक श्रोता है जो ये कह रहे हैं कि आज की छोटी सी इबारत में बहुत कुछ कह दिया है। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि इमोजी डिजिटल भाव त्वरित प्रकट कर देते हैं, आजकल के लोगों के पास इतना समय कहाँ है सुनने बताने का, पर पत्र में तो पूरी बात लिखने और बताने का आनंद ही अलग था। और इसके अलावा एक श्रोता है जो लिख रहे हैं कि मैसेज के बीच बीच में इमोजीज यूज करने से वो ज्यादा उपयोगी हो जाता है। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि इमोजी और ऑटो टेक्स्ट दोनों खतरनाक हैं और कई बार अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती में वो हमेशा चिट्ठी लिखते हैं और उनकी शिकायत ये है कि आज तक उनकी चिट्ठी शामिल नहीं हुई है। एक श्रोता ने बहुत ही नॉस्टैल्जिक कर दिया, पहले चिट्ठियां एक तार वाले स्टैंड में घूप कर रखी जाती थी, नीचे लकड़ी का एक गोल सा टुकड़ा रहता था, सारी चिट्ठियां सुरक्षित रहती थी। आज भी हमारे पास 70 साल पुरानी चिट्ठियां संग्रहित हैं, 70 साल, क्या बात है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि इमोजी तो हमें शुरू से समझ नहीं आया और कई बार गलत सलत इमोजी भिज जाते हैं। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पत्र केवल शब्दों का समूह नहीं, दिल की धड़कन आत्मा की प्रतिध्वनि है। जब हम कागज पर कलम चलाते हैं तो हमारी उंगलियों के साथ साथ हमारी भावनाएं भी बहती हैं, पत्र में ठहराव होता है, गहराई होती है जो पढ़ने वाले के दिल को सीधे छूती है। और दूसरी और इमोजी आज के दौर का शॉर्टकट है, भाई शॉर्टकट का जमाना है, ये हमारे तमाम श्रोता एक्सेप्ट कर रहे हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि पहले पत्र लिखने के लिए फूल का फोटो बनाना पड़ता था, चिट्ठियों में परफ्यूम तक डाले जाते थे, ये इमोजी में कहाँ हो सकता है। चिट्ठी छूकर जो निकटता महसूस होती है वो डिजिटल संदेशों से नहीं होती। एक और श्रोता, जज्बात सिर्फ खत से महसूस होते हैं, जब खत पढ़ना शुरू करते थे तो यूं लगता था सामने वाला हमारे सामने खड़े होकर कुछ कह रहा है। कितनी प्यारी बातें, चलिए ये तमाम बातें और उसके बाद ये गाना, आप फिल्म का नाम बताइए।

अदालत फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना, और एक श्रोता ने इसकी एक पंक्ति को कोट किया है, कुछ कहने पे तूफान उठा लेती है दुनिया, अब इस पे कयामत है कि हम कुछ नहीं कहते। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि आज आपने यादों का पिटारा खोल रखा है जिसमें चिट्ठियों भरा प्यार है, कुछ प्रेम की बातें हैं, कुछ पुराने जज्बात हैं जो हमें सदा जवां रखते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा कि मैंने तो कभी पत्र नहीं लिखा, लेकिन मेरे बड़े पापा हैं वो वायलिन वादक हैं और उन्होंने लता मंगेशकर जी को एक पत्र लिखा था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि रंग बिरंगी इमोजी बहुत सुंदर दिखती हैं और वो आपके संदेशों को अट्रैक्टिव बनाती हैं। तो भाई एक पहलू ये भी है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि एक वक्त था जब लोगों के पास समय बहुत था और भावनाएं अपरंपार थीं, चिट्ठियां पोल भी खोलती हैं, अगर किसी की चिट्ठी किसी दूसरे के हाथ पड़ जाए या कोई पुरानी चिट्ठी किसी के हाथ लग जाए तो आपसी संबंध तक खराब हो सकते हैं। ये एक श्रोता ने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि भागदौड़ आपाधापी में किसी के पास समय नहीं है कि वो बैठकर चिट्ठियां पढ़े, इसीलिए सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और इमोजी का सहारा लिया जा रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि आया एक जमाना था जब डाकिया घर पर आता था तो खुशी की लहर दौड़ जाती थी। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज के समय में अजीब लगेगा लेकिन मैं अभी भी दीपावली, न्यू ईयर, ईद और क्रिसमस के ग्रीटिंग कार्ड्स एनवेलप पोस्ट से स्टैंप लगाकर भेजता हूं और लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। कितनी प्यारी बात है, ये पुरानी परंपरा को आपने आज तक कायम रखा हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया बात है। और तमाम श्रोता जब सुनेंगे तो जाहिर है कि उन्हें भी इससे प्रेरणा मिलेगी। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि एक जमाना था जब आई लव यू कहने से पहले लोग खत लिखते थे, उस खत में जल्दीबाजी नहीं होती थी, इंतजार, अपनापन और ढेर सारे एहसास होते थे। ये हमारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं, तमाम कमेंट्स को शामिल करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुख्य मुख्य कमेंट्स को मैं शामिल करता चला जा रहा हूं और आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाता जा रहा हूं। अब जरा सोचिए कि दिल की बात कहने की जो झिझक है उसे साहिर लुधियानवी ने इस गाने में किस तरह से पिरोया है। फिल्म का नाम आप बताइएगा और साथ में ये कि क्या कभी आपको भी ऐसा लगा कि आज मुझे कुछ कहना है और फिर लगा छोड़ो अब क्या कहना है, यानी आप संकोच संकोच में रह गए।

कितना प्यारा गाना है और कितना सही एक श्रोता ने लिखा है कि किशोरदा का ये गाना जितनी बार सुनो वही किशोरदा के साथ सुधा मल्होत्रा का नाम भी लिखना चाहिए। किशोरदा और सुधा मल्होत्रा का ये गाना जितनी बार सुनो दिल नहीं भरता है। और एक श्रोता ये लिखते हैं कि मुझे कुछ कहना था पर सोचते सोचते कई बरस लग गए और वो किसी और की हो गई। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने कहा है कि इस गाने के संगीतकार हेमंत कुमार हैं। और एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि क्या ये फिल्म कहीं देखने मिल सकती है, अब ये तो खोज कर बताना पड़ेगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पढ़ाई के दौरान जब अपने किसी खास दोस्त से कुछ बात कहने का दिल में उमड़ घुमड़ होता था, भाई इन्हीं के शब्द हैं कि आज दिल की बात जरूर कहेंगे लेकिन एन वक्त पर मन कहता चलो कभी दूसरी बार, मेरे साथ ऐसा ही होता रहा है। ये एक श्रोता की बात। और इसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स धड़ाधड़, ये जो मोबाइल की कंप्यूटर की स्क्रीन है ये स्क्रॉल होती चली जा रही है। श्रोता लिख रहे हैं कि हमने कई लोगों के खत भी पढ़कर सुनाए और कुछ लोगों को खत भी लिखे और उन्हें समझाया भी और बातें सुनकर रोए भी वगैरह वगैरह। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मैं बचपन से विविध भारती सुनती हूँ, मेरी माँ और मेरी दोनों बहनें विविध भारती की फैन हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि आपने पूछ ही लिया है तो आज बता देते हैं, 40 साल पहले की बात है, मेरी दुकान पोस्ट ऑफिस के सामने थी, आज भी है, ससुराल से श्रीमती जी का पत्र आता था, पोस्टमैन मुझे इशारा कर बुलाकर दे देते थे क्योंकि पिताजी जब सामने बैठे होते थे तो शर्माती थी। ठीक है भाई, ये एक बात का खुलासा हुआ। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जिनकी बात, एक श्रोता ये लिखते हैं कि विविध भारती ने अब ये मौका दिया है कि हम चिट्ठियों के जरिए अपनी फरमाइशें भेजें तो हम भेज रहे हैं। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि इमोजी के जरिए हम तो अपनी फीलिंग नहीं बता पाते पर हाँ बच्चे जरूर जानते हैं कौन सी इमोजी किस तरह की है और बताते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई इमोजी भेजनी हो और कोई गड़बड़ इमोजी आपने भेज दी हो क्योंकि आपको उसका मतलब ही नहीं पता हो और उसके बाद किसी ने आपको आपकी गलती का एहसास दिलाया और उसके बाद आप बहुत हंसे हो? ये किस फिल्म का गाना है ये आपको बताना है। और तब तक ये जो डिजिटल संदेश है ना, इनमें कई बार ये होता है कि किसी को भेजा जाने वाला संदेश किसी और को भेज दिया जाए। इस तरह का गड़बड़झाला भी आपने किया है तो बताइए।

0: पूछो ना यार क्या हुआ।
1: जमाने को दिखाना है फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना और बहुत सारे श्रोताओं के इतने सारे कमेंट्स आए हैं। एक श्रोता ये लिखते हैं कि एक बार चश्मा लगाया नहीं था तो पता नहीं चला, कुछ का कुछ इमोजी बीच गया, बाद में समझ में आया। भाई ये चश्मा लगाना कितना ज़रूरी है ये इस कमेंट के जरिए पता चल गया। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि कभी कुछ का कुछ बिक जाता है तो गिल्टी फील होता है। और इसके अलावा एक और श्रोता उन्होंने भी बिल्कुल यही बात लिखी है। और तो बहुत सारे श्रोताओं ने ये कहा है कि भाई आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ और बहुत सारी बातें कहने का मौका आप सभी ने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। फिर मिलेंगे, सुनते रहिए विविध भारती, क्योंकि विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। और दिन की इस भागदौड़ में आपको जहां कहीं भी रहना है विविध भारती के संग रहना है।

0: विविध भारती।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना में मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 के तहत पटना जॉय राइड का शुभारंभ करेंगे। यह कार्यक्रम अपराह्न 3 बजे स्टेट हैंगर में आयोजित होगा। वहीं मुख्यमंत्री पटना में बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। समारोह में विश्वविद्यालय के सफल विद्यार्थियों को उपाधियां और टॉपर छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। योजना एवं विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने सभी विधायकों और विधान पार्षदों को पत्र लिखकर विकास कार्यों में तेजी लाने की अपील की है। श्री कुशवाहा ने विधानमंडल सदस्यों से क्षेत्रीय विकास योजनाओं के तहत अपने अपने जिले की योजनाओं को लेकर अनुशंसा प्रस्ताव भेजने को कहा है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं और सभी जिलों को राशि उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि सदस्यों से अनुशंसा शीघ्र प्राप्त होने पर योजनाओं का क्रियान्वयन भी जल्द हो सकेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज पटना पहुंचे। श्री नवीन पार्टी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। भाजपा अध्यक्ष मंडल अध्यक्षों और पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। गौरतलब है कि उपचुनाव को लेकर प्रचार का शोर बढ़ गया है। भाजपा द्वारा जारी स्टार प्रचारकों की सूची में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नवीन का नाम सबसे ऊपर है। राज्य सरकार ने दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर मोटर वाहन कर में वृद्धि लागू कर दी है। परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। नई व्यवस्था के तहत 1,00,000 रुपए तक की कीमत वाले दो पहिया वाहनों पर 15 वर्षों के लिए 9% और 1,00,000 रुपए से अधिक कीमत वाले दोपहिया वाहनों पर 10% कर लिया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार दोपहिया वाहनों पर कर की दर में 1% की वृद्धि की गई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों को गलत बताया है जिनमें कहा जा रहा है

0: है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक निवेश प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। इन दावों में कहा गया है कि 22,000 रुपए के शुरुआती निवेश पर नागरिकों को हर महीने 25 लाख रुपए की कमाई की गारंटी दी जा रही है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये वीडियो फर्जी है और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तैयार किया गया है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आज औरंगाबाद, कैमूर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, रोहतास और सीतामढ़ी जिले में भारी बारिश हो सकती है। राज्य के अन्य जिलों में भी तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और बारिश का पूर्वानुमान है। पश्चिम चंपारण जिला समाहरणालय में आज ऊर्जा विभाग की बैठक में जिले में 3 नए ग्रिड की स्थापना किए जाने को मंजूरी मिली है। बैठक में स्थानीय सांसद संजय जायसवाल और राज्य के पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री नंदकिशोर राम समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। दरभंगा जिले के फेकला थाना क्षेत्र अंतर्गत तेलिया पोखर के पास सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। भागलपुर जिले में मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन पर गनगनिया रेलवे स्टेशन के पास एक हाईवा और पिकअप वैन की टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। भोजपुर जिले के बिहिया नगर परिषद क्षेत्र में चारदीवारी गिरने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के समय दोनों बच्चे दीवार के पास खेल रहे थे। बेगूसराय जिले के विभिन्न स्कूलों में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान अब तक 1 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। मुंगेर जिले में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर टीबी की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार इस दौरान संभावित लक्षणों वाले 30 लोगों की पहचान की गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।
1: वजीर आला सम्राट चौधरी आज पटना में वजीर आला बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सर्विस मंसूबा 2026 के तहत पटना जॉय राइड का इफ्तिताह करेंगे। प्रोग्राम से पहर 3 बजे स्टेट हैंगर पटना में मुनाकिद होगा। वहीं वजीर आला आज पटना में बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के 3रे कन्वोकेशन प्रोग्राम में शामिल होंगे। प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी के कामयाब तलबा को सनद और टॉपर तलबा व तालबात को गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा। वजीर तरक्यात व मनसूबा भगवान सिंह कुशवाहा ने सभी एयरकान असम्बली और एयरकान कानून साज कौंसिल को मकतूब लिखकर तरक्याती कामों में तेजी लाने की अपील की है। जनाब कुशवाहा ने एयरकान कानून साजिया से इलाकाई तरक्याती मनसूबों के तहत अपने अपने जिला के मनसूबों के मद्देनजर सफारिशी तजवीज भेजने को कहा है। वजीर ने कहा कि वजीर आला समर चौधरी की कयादत में रियासत में तरक्याती काम तेजी से किए जा रहे हैं और सभी अजला को रकम अलॉट कराई गई है। उन्होंने कहा कि इराकीन से सफारिश जल्द मौसूल होने पर मनसूबों का निफाज भी जल्द हो सकेगा। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर नितिन नवीन आज पटना पहुंचे। जनाब नवीन पार्टी के बूथ सतह के कारकुनान के साथ मीटिंग करके बांकीपुर असेंबली जिमनी इंतखाब के पेशे नजर पॉलिसियों पर गौर खोज करेंगे। भाजपा सदर डिवीजनल सुदूर और पार्टी के सीनियर ओहदेदारान के साथ भी मीटिंग करेंगे। गौरतलब है कि जिमनी इंतखाब के पेशे नजर तशहीर बढ़ गई है। भाजपा के जरिए जारी स्टार कंपेनरों की फहरिस्त में कौमी सदर जनाब नवीन का नाम सरे फहरिस्त है। रियासती हुकूमत ने 2 पहिया और 3 पहिया गाड़ियों पर मोटर गाड़ी टैक्स में इजाफा नाफिज कर दिया है। महकमे ट्रांसपोर्ट ने काबीना के फैसले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नए निजाम के तहत 1 लाख रुपए तक कीमत वाली 2 पहियों वाली गाड़ियों पर 15 सालों के लिए 9% और 1 लाख से ज्यादा रुपए की कीमत वाली 2 पहिया गाड़ियों पर 10% टैक्स दिया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक 2 पहिया गाड़ियों पर टैक्स की शरह में 1% का इजाफा किया गया है। मरकजी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों को गलत बताया है जिनमें कहा जा रहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक सरमायाकारी प्लेटफॉर्म को फरोग दे रहे हैं। इन दावों में कहा गया है कि 22,000 रुपए के शुरुआती सरमायाकारी पर शहरियों को हर माह 25 लाख रुपए की कमाई की गारंटी दी जा रही है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB की जाँच यूनिट ने कहा कि ये वीडियो फर्जी है और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तैयार किया गया है।

0: is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब रोजगार सूचना सुनिए। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी के 6,715 पदों पर भर्ती के लिए योग्य रिक्षक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 20 और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर होगी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 21 जुलाई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट देखें, पता नोट करें www.ibps.in। रेलवे भर्ती बोर्ड टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के 6,565 पदों पर भर्ती के लिए योग्य रक्षक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार के पास बीई, बीटेक, इंजीनियरिंग डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 18, टेक्नीशियन ग्रेड के लिए अधिकतम आयु 30 और टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट प्राप्त है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर होगी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 29 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट देखें, पता है www.indianraillawas.gov.in। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पुलिस अवर निरीक्षक सामान्य बंद संवर्ग, इनके 150 पदों पर भर्ती के लिए योग्य इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया।

0: उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 20 और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट प्राप्त है। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर होगी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2026 है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.bpssc.bihar.gov.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: और ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोता सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। हम आपको बता दें कि हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में दोपहर समाचार प्रसारित होंगे। दोपहर समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटर रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इसे हैदराबाद की एक निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने बनाया है। एक रिपोर्ट।
4: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
5: भारत और पूरी टीम, बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम

0: वन की टीम को उनसे मिलने का निमंत्रण भी दिया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
1: कंग्रेचुलेशन इन स्पेस फॉर फैसिलिटेटिंग
2: इन स्पेस और इसरो को इस शानदार सार्वजनिक निजी भागीदारी और सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई। इस सहयोग को अनुकूलित करने के लिए इसरो को बधाई। आज के सफल प्रक्षेपण ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।
1: इन द हाईली कॉम्पिटिटिव एरिना ऑफ स्पेस इकोनॉमी
0: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों, स्वदेशी नवाचार और उद्यमशीलता की भावना की मजबूती को दर्शाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क को और मजबूती मिलेगी। ये रेलगाड़ी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के साथ साथ रामनगर के निकट स्थित मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी लाभदायक होगी। रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में दो दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी।
3: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में दो दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है। कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
4: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
4: ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का एक शानदार नमूना था। इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अनेक लेटेस्ट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया गया। इसने साबित किया है कि हमारी सेनाएं बदलाव को समझ भी रही हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग भी कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत के उद्योगों पर विश्वास का प्रमाण है।
0: श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने का भी संकल्प लिया है।
4: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं, जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी।

0: और एक नई ताकत भी मिलेगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ एनजीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री वैष्णव देश के प्रमुख बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से युवा शोधार्थियों के लिए एक देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। ये पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर छात्रों को मौलिक शोध के लिए प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक वित्त, सुशासन, वित्तीय संघवाद, सामाजिक क्षेत्र के व्यय और सतत विकास जैसे विषयों पर शोध एवं सार्थक विमर्श को बढ़ावा देना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतिभागियों को माईगव पोर्टल के माध्यम से एक मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अक्षित वैद्यान।
2: पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। हालांकि किलियन एम्बाप्पे ने 8 गोल और 3 असिस्ट के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का रेड

अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आज कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, ओडिशा तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कल तक अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ईरान ने आज कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। हमलों के बाद कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी। ईरान से दागी गई मिसाइलों के कुवैती हवाई क्षेत्र में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक

0: पाकिस्तान से दागी गई मिसाइलों के कुवैती हवाई क्षेत्र में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: पर आप विविध भारती के संग हैं, सदाबहार नगमे।

हमराही फिल्म का ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। आज है जानी मानी गायिका मुबारक बेगम की याद का दिन।

मुबारक बेगम कृष्णा बोस सुमन कल्याणपुर की आवाजों में जुआरी फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत कल्याण जी आनंद जी का था।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाए सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
1: देवदास फिल्म का गीत मुबारक बेगम की आवाज, गीत साहिर लुधियानवी का, संगीत सचिन देव बर्मन का।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी
0: मन चाहेगी।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के दूसरे व्यक्तियों के अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
3: मन चाहे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज जो पहला गाना है वो आप सभी की फरमाइश पर वरुण जौलका से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे, छबड़ा जिला 12 राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो, राजस्थान जोधपुर से अशोक प्रेमलता और सुमित बाणिया, और ये चिट्ठी है पंचगवहाण उबारखेड़ से साहिबराव वेड़कर, अमोल मिस्त्री और आनंद निहां। इसके अलावा उल्हासनगर से पुरुषोत्तम और ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर, और पतरोड़ा गंगानगर राजस्थान से मंगल जनागल राही, रोशनी जनागल, अंकुर और डॉक्टर सुनील जनागल। आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम की पहली पेशकश है मुकेश की आवाज में पूर्णिमा फिल्म का गाना गुलजार के बोल, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म ज्वेल थीफ से है। लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र के बोल हैं, सचिन देव बर्मन का संगीत और आप सभी की फरमाइश है। श्री गंगानगर से निकीराम बांसीवाल, जॉनी बांसीवाल और धनराज बांसीवाल, हावड़ा नाजिरगंज नेपाली पारा से हमारे कुछ श्रोता हैं, दीपक, स्वीटी, उषा, ज्योति, किरण, दिर्शा और रितेश लिंबू और इनका पूरा परिवार ये हावड़ा से। इसके अलावा घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, वंदना नगर इंदौर से ललिता नारायण खर्चे, संजना परी खर्चे, गणेश खर्चे, दीपिका, स्वाति और प्रयाग चौधरी और ये फरमाइश है रेखा, पूजा, नंदिनी, बबीता, शोभा रघुवंशी, स्वाति, इन सब की इंदौर से, राजस्थान जोधपुर से इन श्रोताओं का नाम पहले हो चुका है। तो सुनिए ज्वेल थीफ फिल्म का ये गाना।

विविध भारती से आप सुन रही हैं मनचाही गीत कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में श्रोता हमें लिखते हैं तमाम देशभर से चिट्ठियां, और इन चिट्ठियों के जरिए हम ये जान पाते हैं कि कहां कहां श्रोता हमें सुन रहे हैं और कौन कौन से गानों की फरमाइश करना चाहते हैं। ये पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता और रिमझिम गुप्ता की चिट्ठी, राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती जासमीन और प्रयागराज, पाहरा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंदूर, चंद्रकांत, प्रीति और छाया, छत्तीसगढ़ बेमित्रा से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, रुद्र कुमार सारथी, वीरेंद्र कांत सारथी और ब्रजकांत सारथी, और इसके अलावा ये फरमाइश जालना से डॉक्टर नामदेव भूतेकर, अशोक भूतेकर, गणेश और कार्तिक भूतेकर। बहुत ही सुंदर लेखनी में श्रोताओं की ये चिट्ठियां। आप सभी की फरमाइश पर ये गाना, शर्मीली फिल्म का गीत नीरज के बोल।

ईद मंचा ईद कार्यक्रम की अगली पेशकश जो है वो उसकी फरमाइश आप सभी ने भेजी है। बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, राजाराम नगर देवास से राजेश अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन, सलोजी महाजन और चीकू, ये चिट्ठी आई है खोखरिया बनाड रोड सूर्य नगरी जोधपुर से जबर सिंह फूल वाले रुद्राक्ष मानू दिनेश सोढ़ा देवेंद्र सिंह की और राजेश जैन, अरुणा जैन, दीपक जैन, गौतम, बिट्टू, मट्टू, सारिका, बनिता, मनोज जैन और समता जैन ने हमें लुधियाना के मोहल्लापुर दंबा मंडी से चिट्ठी लिखी है। वारंगा फाटा से वैष्णवी मोरे, अश्विन मोरे, कुंडलीक और पांडुरंग मोरे की चिट्ठी है और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा की चिट्ठी। सितमगढ़ फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी और कीजिएगा सितमगढ़ फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल आरडी बर्मन की तर्ज।

और अब कार्यक्रम का अगला गाना जो धरती फिल्म से है, फरमाइश करने वाले श्रोता हैं सुकोडा रोडा गोला से गजानन कुंभार, पद्मावती, विशाल, ज्योति और इनका पूरा परिवार। इसके अलावा बड़वाहा से अयांश रावल, पुष्पेंद्र और इंदिरा रावल, चांदूर बिस्वा से राम भाऊ, लक्ष्मण भाऊ, भारत, शत्रुघ्न नारायण, पंच गवहाण तेलहारा से साहेब राव, अमोल खालिक और इनके साथी, शेगांव से मोहम्मद अनीस मुहाल, मोहम्मद दानिश और मोहम्मद रिजवान, आप सभी की फरमाइश पर ये गाना। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें। हस्त जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन की तर्ज है।

0: इसी के साथ अब आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम खत्म होता है।
1: मनचाहे गीत
2: चाहेगी।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

0: हेलो हेलो नानी।
1: हाँ गुड़िया।
0: अरे हाँ हाँ मैं गुड़िया ही बोल रही हूँ, मुझे पता था आपका फोन आएगा।
1: हाँ अच्छा अच्छा जल्दी बता वो आया कि नहीं।
0: अरे रुकिए मैं खिड़की के पास ही जा रही हूँ, खिड़की तो खोलने दीजिए। हाँ अब बोलिए नानी, आपकी टाइम की सेंस बड़ी परफेक्ट है।
1: नानी किसकी हूँ।
0: आपका फोन आया, मैंने खिड़की खोली और मैं नीचे देख रही हूँ कि भूरे भी अपने ठिकाने पहुँच गया है।
1: अरे गुड़िया तो खिड़की पर आ भी गई फिर भी सामने वाले फ्लाईओवर का शोर नहीं सुनाई दे रहा।
0: ओ फोन नानी आप भूल गई लगता है, लॉकडाउन चल रहा है भाई, पूरा सन्नाटा पसरा है, शोर कैसे आएगा।
1: अरे बेटा मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि भूरे का डिनर हुआ कि नहीं।
0: आप भी ना नानी, डिनर तो हम करेंगे थोड़ी देर में। उफ ये मैं क्या बोले जा रही हूँ, वैसे आप ठीक ही कह रही हैं, भूरे भी तो डिनर ही करेगा ना रात में, अब भले दूध भात खाए या रोटी।
1: आज क्या मिल रहा है उसे, क्या लाया बेरा, दूध भात की ब्रेड।
0: आप उसे बेरा क्यों कह रही हैं, अरे वो तो उजला फरिश्ता है, रोज शाम अपने साथ भूरे के लिए पानी और खाना लाता है।
1: देखो गुड़िया खाना जो बनाए वो खानसामा और जो खाना परोसे वो बेरा ही हुआ ना। अच्छा ये बता तू उसे उजला फरिश्ता क्यों कह रही है।
0: अरे नानी वो इसलिए कि या तो वो व्हाइट टी शर्ट पहन के आता है या उसकी टी शर्ट में थोड़ा बहुत व्हाइट कलर होता जरूर है, और काम काम तो वो एंजल जैसा ही करता है, तो हुआ ना उजला फरिश्ता।
1: बड़ी खोज खबर रखती है रे तू उसकी है।
0: हाँ और पता है दादी क्या कहती है, वो कपड़े उजले पहनता है उसका मन भी उजला है, तभी तो हर रोज भूरे के लिए खाना लेकर आता है। पता है नानी बारिश हो तो भी आता है, और दादी ने ही उसे ये नाम दिया है उजला फरिश्ता, इनोसेंट एनिमल्स की हेल्प करने वाला एक एंजल।
1: अच्छा अच्छा अच्छा मेरी बातों की दादी, अब ये बता आया कि नहीं तेरा उजला फरिश्ता।
0: अभी तक तो नहीं आया नानी, पता है नीचे भूरे भी इंतजार में बैठा है।
2: अरे गुड़िया बेटा गुड़िया आ जाओ बेटा, तुम लोग सब लोग खाना खाने के लिए तैयार हो गया, खाना टाइम हो गया।
0: ओके ओके मम्मा। अच्छा नानी नीचे भूरा खाने की वेट कर रहा है और यहाँ हमारे डिनर की भी कॉल आ गई, तो आपको बाकी रिपोर्टिंग में खाना खाने के बाद दूंगी। ओके बाय
1: बाय बेटा।
2: सब लोग
0: वाओ रायता माय फेवरेट। मम्मी और ये इतने बड़े डोंगे में आपने क्या ढक के रखा है। मैं देख लूं खोल के।
2: हाँ हाँ देखो देखो।
0: उफ, ये क्या, ये तो चावल दिख रहे हैं
2: जी,
0: और कैरेट कैप्सिकम भी, ओ नो बीट रूट, और वो भी इतने चिपके चिपके से। मम्मी ये बिरयानी है या खिचड़ी, वो भी बीट रूट वाली, या कौन खाएगा।
2: गुड़िया लॉकडाउन में खाना मिल रहा है शुक्र मनाओ।
3: वाह ये चावल तो मेरे हिसाब से बने हैं, चबाने की जरूरत नहीं है।
4: लाइए भाई हम भी तो चकले थोड़ा सा।
0: मम्मी आप कुछ अच्छा नहीं बना सकती थी।
2: जिसने बनाया है ना उन्हीं से पूछो तुम।
0: ओ नो दैट मींस आज कुकिंग फिर पापा ने की है।
2: यस yes.
3: जिससे जो आता है वही तो करेगा, तेरे बाप से झाड़ू पोछा नहीं लगता, न ये कपड़े धो पाता है न बर्तन, अब तेरी माँ भला कितना खटेगी। बेचारा खाना बना देता है, वरना मर्दों को सिर्फ हुक्म देने की आदत होती है। हाँ
4: अम्मा एक तुम ही हो मेरी पार्टी।

0: में बस ये गुड़िया तो विरोधी पार्टी में चली गई लगती है, इससे तो सिर्फ गलतियां निकालना आता है।
1: क्या पापा?
2: अरे आप बस करिए ना गुड़िया बेटा, लाओ मैं तुम्हारे लिए पराठा बना लेती हूँ। आज बेटा
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, विरोधियों और असंतुष्टों को अपनी तरफ करने का अच्छा पैतरा है।
1: जी हाँ वो तो है।
0: खाओ खाओ पराठे खाओ, वजन बढ़ाओ, हमें क्या है, बाद में मत कहने की पापा सूर्य नमस्कार नहीं हो रहा है।
1: तो पापा शुरू बस करिए है, नहीं तो एक दिन खा लेने से कुछ नहीं होता।
0: अच्छा सच में?
1: हाँ
0: तो एक हमारे लिए भी बना दो।
2: अम्मा अम्मा देख लीजिए, अब आप देख रही है ना,
1: हाँ।
2: अपने लाडले से अपना खुद का बनाया खाया नहीं जा रहा है खाना, और आप उन्हीं की साइड ले।
3: अरे बहू हम सब एक ही साइड में है, तू फिकर मत कर। अरे गुड़िया, ए गुड़िया तू ये बता तेरी नानी क्या कह रही थी रे?
4: अरे दादी पता है उनको भूरे की इतनी फिकर होती है, इतनी फिकर होती है ना कि रोज शाम को जब तक उसके खाने की पूरी रिपोर्ट नहीं ले लेती उन्हें चैन ही नहीं पड़ता।
3: अच्छा तो तू उन्हें पूरी खबर देते हैं?
4: और नहीं तो क्या, भूरे की स्टोरी है ही इतनी वंडरफुल।
3: अच्छा कैसे? लेकिन
4: आपको पता तो है सारी कहानी नानी।
3: अरे पर मैं भूल जाती हूँ ना रे, तू अपने नानी को जैसे प्यार से सुनाती है ना वैसे ही जरा प्यार से मुझे भी सुनाना, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है रे।
4: अच्छा तो सुनिए, वो हमारी लाइफ में मेरे कमरे की खिड़की से आया।
3: खिड़की से आया? कमरे की खिड़की से? अरे हम 12वीं मंजिल पर रहते हैं, खिड़की से कैसे बुलाया?
4: ओहो दादी आपको कहानी सुननी है ना?
3: हाँ हाँ सुना सुना सुना।
4: हाँ तो खिड़की के नीचे ठीक नीचे वो जो फ्लाईओवर है ना,
3: हाँ
4: वहाँ वो रोज शाम को आता है। दिन भर पता नहीं कहाँ रहता है, रात को कहाँ सोता है ये भी नहीं पता।
3: अरे तो तुमने पता लगाने की कोशिश नहीं की?
4: ओहो दादी लॉकडाउन में नीचे उतरना अलाउड नहीं है तो फाइंड आउट कैसे करूंगी, हम तो बस खिड़की से ही देखकर खुश हो लेते हैं।
3: अरे इसमें खुश होने की क्या बात है?
2: अम्मा अम्मा आपको कहानी सुनना है ना, तो बस सुनिए जो कह रही है गुड़िया।
3: हाँ हम तो सुन ही रहे हैं बहू, सुन रहे हैं।
4: हाँ तो शाम को जब डॉगी फ्लाई ओवर पर पहुँच जाता है ना, तो थोड़ी देर में एक पर्सन आता है, वही आपका उजला फरिश्ता।
3: हाँ
4: और भूरे को कुछ खाने को देता है
3: रोज,
4: और नहीं तो क्या।
3: अच्छा
4: हम तो डेली देखते हैं और इसी की रिपोर्टिंग तो नानी को करते हैं।
0: अम्मा इस कुत्ते को पहली दफा गुड़िया और इसकी माँ नहीं देखा था, अब देखा क्या था, मदद की शुरुआत भी इसी ने की थी अम्मा।
4: हाँ रहता हमसे दूर है लेकिन है तो हमारे फैमिली मेंबर जैसा ही।
3: हाँ हाँ कुछ तो बताया था तुम लोगों ने, अब याद नहीं।
0: गुड़िया याद करो यार, वो रात कैसी थी है?
2: हाँ।
0: हम घंटों खिड़की से देखते रहे, लैंप पोस्ट के आसपास वो कभी इधर उधर चलता, कभी बैठ जाता, कभी खड़ा हो जाता, खड़ा रहता तो न जाने कितनी देर तक एक ही जगह पर खड़ा रहता। लॉकडाउन शुरू हुए अभी, क्यों अभी 3-4 दिन हुए थे।
2: हाँ, बस इसी समय की तो बात है।
0: दहशत फैली हुई थी, ट्रैफिक बहुत कम था, फिर भी कोई स्कूटर वाला निकलता तो कुत्ता उसकी ओर लपकने लगता। अरे साफ लग रहा था कि वो किसी का सहारा ढूंढ रहा है।
2: हाँ ये बात तो है, लेकिन कितने डरावने दिन थे, दुकान बंद, दफ्तर बंद, लोगों का आना जाना बंद, और मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा था कि भाई मेरा किचन कैसे चलेगा। और हाँ देखिए आप भी तो जानते ही हैं, हम लोग कभी राशन तो जमा करके हमने रखा ही नहीं था, तो चिंता लगी।
4: ओ मम्मा भूरे की बात बताइए ना।
2: हाँ हाँ हाँ हाँ अब खिड़की से देखते देखते अम्मा कई घंटे बीत गए। एक तो ऐसी ये सुनसान जगह, पैदल कोई आता जाता नहीं, और दोनों तरफ इतने बड़े दानवादार टावर, और बीच में इतना चौड़ा 4 लेन वाला फ्लाईओवर, इतने बड़े महानगर के इस फ्लाईओवर के दोनों तरफ के टावरों में अम्मा 1000-2000 फ्लैट तो होंगे, पर इनके ठीक नाक के नीचे सूखी नदी जैसा फ्लाईओवर जहां न आदम न आदम चाट। और पहले तो दिन भर बरसाती नदी की तरह ट्रैफिक से भरा रहता था, पर लॉकडाउन में तो जैसे भूतों का डेरा बन गया है। हमें तो लग रहा था कि ये बेचारा पिद्दू सा तो है, इतनी अकेली जगह पे भटक कर पहुंच गया, और अब उसे यही नहीं पता चल रहा था क्यों जी कि कहाँ जाए, कैसे करे और कैसे बस्ती में पहुंचे।
3: ए बहू तू भी क्या क्या बोले जा रही है।
2: हाँ अम्मा बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप जरा सोचिए जरा सा, ये 30-30 मंजिला पर्वत खड़े हैं धरती की छाती पर इनके अंदर की दुनिया कोई और ही है, इन्हें जमीन नहीं दिखाई देती, बस नाम से।

0: काम रखते हैं इसमें रहने वाले अम्मा।
1: बहू हम भी तो ऐसे ही टावर में रहते हैं ना।
0: हाँ तो अम्मा हम भी तो उनके ही जैसे हैं ना, हम भी तो सिमटे रहते हैं।
1: हाँ।
0: पर उस दिन, हाँ अम्मा उस दिन न जाने कैसे हमारी भी नजर नीचे झुक गई, वरना दोनों तरफ के टावर में लोग ही लोग हैं लेकिन उन्हें नहीं दिखाई पड़ा, बस हमें दिख गया ये बेचारा।
2: अरे हो सकता है और भी लोगों ने देखा हो पर हिम्मत ना पड़ी हो कुछ करने की। अब तुम्हें याद है ना, हम भी हाँ। तो घंटों देखते रह गए थे उसको।
0: हाँ वो तो है लेकिन हमें भी तो नहीं समझ में आ रहा था ना कि क्या करें, कैसे करें, कैसे इस पिल्ले को पुचकारे बचाए और कैसे लेके आए। और याद है ना यहाँ से कैसे हमने ब्रेड का टुकड़ा फेंका था।
2: हाँ।
0: लेकिन वहाँ कैसे पहुँचता है, इतनी दूर था।
2: तब अम्मा हमारी इस गुड़िया ने ही आइडिया दिया।
1: क्या, घर लाने का?
2: अरे नहीं अम्मा, घर लाए होते तो मालूम नहीं चलता क्या। अरे जाकर उसे कुछ देने का, और इसने मुझे अकेले जाने भी नहीं दिया, क्यों याद है ना तुम्हें?
0: हाँ, हाँ,
2: हाँ, गुड़िया उस रात क्या हुआ था याद है?
3: पापा पापा पापा।
2: अरे क्या है बेटा, क्या हो गया?
3: पापा जल्दी इधर आइए, जल्दी आइए तो।
2: अरे क्या है बताओ
3: पापा,
2: तो
3: पापा देखिए ना वो नीचे बेचारा कितना टायर्ड और हंगरी लग रहा है। आई थिंक ही इज लॉस्ट।
2: हाँ भूखा और परेशान है लगता, कहीं से भटक के आ गया।
3: यहाँ से देखते रहने से कुछ नहीं होगा, वी मस्ट डू समथिंग।
2: अरे हम क्या कर सकते हैं भाई?
3: पापा क्या हम उस बेचारे पपी को कुछ खाने को दे आए प्लीज पापा,
2: इस समय लॉकडाउन में?
3: प्लीज पापा।
2: बेटा कर्फ्यू लगा हुआ है, रात का टाइम है, नहीं नहीं नहीं नहीं जा नहीं सकते।
3: अरे पापा ठीक कह रहे हैं, कुछ नहीं होगा मामा, कुछ नहीं होगा। अब देखिए तो पता नहीं कितने दिन से भूखा है, बेचारा मर जाएगा।
2: देखते हैं भूखा तो है, सोचने दो।
0: हाँ।
2: अच्छा एक काम करते हैं, अब मैं चला जाता हूँ। हाँ, कुछ दे आऊंगा ठीक है। तुम एक काम करो, कुछ ब्रेड व्रेड पड़े हो तो दे दो कुछ।
0: हाँ हाँ मैं बिल्कुल देती हूँ। मैं ऐसा करते हैं कि पानी भी दे दी ले जाइए और ये बिस्किट भी ले जाइए है ना।
2: हाँ।
0: और लेकिन रुके रुके रुके, ऐसा करती हूँ मैं रोटी बना के लाती हूँ फटाफट। लीजिए ये सामान हमने सब थैले में रख दिया ठीक है। ये देखिए पानी है ना और रोटी, दोनों चीजें हैं। और ये सामान रख दिया है, उसको पानी वानी पिला दीजिएगा। और मास्क कहाँ है आपका?
2: अरे हाँ लगा लिया है।
0: सैनिटाइजर रखिए भाई।
2: अरे रखा है भाई।
3: अरे रुकिए रुकिए, अरे मुझे भी तो जाना है, मुझे उसे पास से देखना
0: है।
3: भाई
0: तुम वहाँ क्या करोगे?
2: अरे कह रही है तो जाने दो ना यार,
0: कमाल है आप तो।
2: तुम डरोगी तो नहीं ना?
3: नहीं नहीं पापा बिल्कुल नहीं।
2: हाँ चल चल चल,
0: डरोगी नहीं ये क्या है
3: मम्मा प्लीज।
2: चलो चलो चलो ले लिफ्ट बुलाओ और तुम दरवाजा बंद कर लेना अंदर।
3: हाँ हाँ पापा आइए।
4: कृपया दरवाजा बंद कीजिए।
2: अच्छा ठीक है, दरवाजा ठीक से बंद करना।
0: ठीक है ठीक है, ध्यान रखना अपना।
4: तो बोल कृपया दरवाजा बंद कीजिए।
0: अम्मा ये लीजिए, आप ऐसा करिए दवा ले लीजिए सोने के पहले वाली, और ये हल्दी वाला दूध भी पी लीजिए।
1: बहू क्या बात है, बड़ी हड़बड़ी में दिख रही है, बाहर ये आवाजें कैसी आ रही थी बहू?
0: अरे वो बाप बेटी नीचे गए ना अम्मा। अरे अम्मा आप दूध पी के सो जाइए
1: इतनी रात को। लेकिन क्या हुआ, सब ठीक तो है ना बहू?
0: अरे अम्मा आप फिक्र मत कीजिए, दूध पीजिए और सो जाइए, वो लोग आ जाएंगे।
1: पता नहीं यहाँ क्या क्या चलता रहता है।
0: मैं सोचती हूँ खिड़की के पास जाकर देखती हूँ, पता नहीं पहुँचे कि नहीं वो लोग। हाँ तो पेड़ बीच में आ रहा है, लगता है अभी पहुँचे नहीं। क्या करूँ, बड़ी चिंता। मैं सोचती फोन कर लेती हूँ। हेलो, अरे तो फोन ही नहीं उठा। हेलो हेलो गुड़िया।
3: हेलो हाँ मम्मा,
0: तुम लोग अभी तक पहुँचे ही नहीं।
3: अरे मम्मा उड़कर थोड़ी ना पहुँच जाएंगे, पैदल चल रहे हैं भाई। चा? और पता है मेन गेट पर सिक्योरिटी वाले बाहर ही नहीं जाने दे रहे थे।
0: क्यों भला?
3: कितना समझाना पड़ा उन्हें, और आज बाहर हवा भी चल रही है।
0: हवा?
3: और सड़क पर बहुत सारे डॉग्स हैं मम्मी, सब इधर से उधर दौड़ रहे हैं। अच्छा आप फोन रखिए, आप खिड़की पर ही है ना?
0: हाँ हाँ मैं यही हूँ।
3: हाँ तो हम पहुँचेंगे तो आपको दिखे जाएंगे, आप बस वेट करिए।
0: अच्छा
1: बहू बहू आ गए वो लोग क्या?
0: अरे अम्मा आप यहाँ आ गई, अम्मा आप फिक्र क्यों कर रही हैं, वो लोग आ जाएंगे।

0: आप आराम कीजिए।
1: अरे आराम कहाँ से होगा बहू, इस कोरोना का ऐसा डर बैठ गया है कि सपने भी बुरे बुरे आते हैं। इतना डर तो आजादी मिलने के दिनों में भी नहीं लगा था।
0: आजादी? अम्मा आजादी मिलने पर डर क्यों भला लगा? और मतलब आप तो उधर से आई भी नहीं थी फिर।
1: आजादी मिलने का नहीं, हाँ। जो मारकाट मची थी उस वक्त उसका डर, हम कहीं से उजड़ कर नहीं आए थे। पर आतंक ऐसा था कि अब हम क्या कहें।
0: अम्मा आपकी उम्र क्या थी उस समय?
1: अरे वही 5-6 साल की रही होंगी। हम बच्चों को घर में बंद कर दिया गया था, सबको डर था कि लड़कियों को उठा ले जाते हैं। पर आज का वक्त ये तो बहुत ही डरावना है, किसी को हम छू नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते, सैर करने तक हम नहीं जा सकते।
0: अरे अम्मा वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको क्या, आप तो पहले भी कहीं सैर वैर करने नहीं जाती थी भाई।
1: पर डर का साया तो 2400 घंटे है ना, और ऊपर से ये मुआ टीवी मरीजों की गिनती, मरने वालों की गिनती ऐसे बताता रहता है जैसे मौत का खेल चल रहा हो। इतने बीमार पड़ गए, इतने मारे गए।
0: अरे अम्मा अम्मा अम्मा अम्मा आप घबराइए मत, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा शांत रहिए। हाँ। मैं खिड़की से देखती हूँ कि वो लोग पहुँचे कि नहीं पहुँचे, है ना?
1: हाँ हाँ देख देख,
0: ठीक है,
1: आ जाए तो जरा मुझे बता देना।
0: उठाती हूँ। गुड़िया गुड़िया पहुंच गए तुम लोग? हाँ हाँ मैं खिड़की की तरफ ही आ रही हूँ। हाँ लो मैं आगे खिड़की पर, अब रुको। हेलो, अरे फोन मत बंद करना। हाँ हाँ हाँ मैं देख रही हूँ। अरे पर आवाज तो बेटा फोन पे ही सुनाई देगी ना। अरे अम्मा आप, हाँ लो दादी भी तेरी यहीं आ गई। अम्मा देख रही हैं, ये लोग नीचे ही खड़े हैं, पहुंच गए उस बेजुबान प्राणी के पास।
1: हाँ बहू एक मिनट, मुझे भी तो आगे आने देना, खिड़की के पास आने दे जरा।
0: हाँ अम्मा ये हम कुर्सी यहाँ रख देते हैं, आप यहीं बैठिए, आइए आइए बैठिए। हाँ मैं फोन को भी स्पीकर पर ऑन कर देती हूँ ताकि अम्मा आप लोग को भी ना इन लोगों की आवाज सुनाई दे, सब बातें पता चल जाए। गुड़िया गुड़िया सुन, पहले उसे पानी पिलाओ।
2: हाँ हाँ मम्मा। मम्मा आप देख रहे हो?
0: हाँ,
2: हम कुछ कटोरा लाए थे ना, मैंने उसमें पानी डाल दिया। मम्मी देखो ना कैसे पूंछ हिला रहा है और डर भी रहा है। आ गया आ गया, पानी के कटोरे के पास आ गया वो।
1: अरे लग रहा है रोटी भी खिला रहे हैं।
0: हाँ, हाँ, पर अम्मा रोटी सूंघ के तो पीछे हट गया।
1: अरे डर रहा होगा ना शायद।
2: मम्मा इसे ना बहुत प्यास लगी है, आप देख रहे हो कितने तेज तेज पानी पी रहा है ये।
0: हाँ, पता नहीं कब से प्यासा था। और गुड़िया मेरा तो मन कर रहा है कि उसे पुचकारूं, प्यार करूं, छोना सा तो है।
3: पुचकारने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है मैडम।
0: हाँ,
3: तुम लोग आसमान में टंगे हो।
2: आसमान नहीं स्वर्ग में बैठे हैं।
1: हाँ, बड़ा स्वर्ग स्वर्ग में बैठे हैं। अरे कैदी हैं, कैदी माचिस की डिबिया में। हाँ।
3: आ, खुद को खुशकिस्मत समझो अम्मा, लाखों करोड़ों में मिलती है ये माचिस की डिबिया।
0: भाई कमाल है, इतनी दूर खड़े हैं फिर भी चैन नहीं है, बस बहस करा लो इनसे जब चाहो तब।
3: बहस नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बयान कर रहा हूँ।
0: अच्छा पहले आप उस जो बेजुबान प्राणी के लिए गए ना उसकी सेवा करिए, और जरा फिर ये बताइए इतनी देर कहाँ भटक रहे थे आप दोनों? 15 मिनट का रास्ता, पूरे 2 घंटे लगाए आप लोगों ने।
3: जमीन आसमान का फर्क यही होता है मैडम, समझे आप? मतलब हम समझा दें आपको जमीन आसमान का मतलब, यहां जहां हम खड़े हैं वहां पहुंचने के 2 बड़े मोड़ हैं
0: जी।
3: जब हम चलने लगे तो पहले सुनसान रास्ता आया, डरावना, अंधेरा, तेज हवा चल रही थी, कागजों, प्लास्टिक और तमाम चीजों का कचरा उड़ने लगा, गलियों से कुत्ते निकलकर भौंकने लगे, छीना झपटी करने लगे, अजीब सा अंधड़ चलने लगा, कूड़े कचरे की बारिश होने लगी, रास्ता था कि खत्म ही नहीं हो रहा था।
0: क्या कह रहे हैं आप, हमें तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ, न हवा न बारिश।
3: कह तो रहा हूं जमीन पर हालात कुछ और ही होते हैं।
0: अरे क्या ऐसा है बोले जा रहे हैं, आप गुड़िया को फोन दीजिए।
1: अरे बहू क्यों गुस्सा कर रही हो?
0: अरे अम्मा आप रुकिए, गुड़िया गुड़िया ये पापा तुम्हारे क्या कहे जा रहे हैं?
2: हाँ मम्मा सच में बहुत डरावना एक्सपीरियंस था।
0: हाँ?
2: सुनिए तो, फिर पहला मोड़ आया तो वहाँ बहुत लोग थे। लोग क्या थे, प्रोसेशन जैसा ही था, एक जुलूस, लोग बच्चे बूढ़े मर्द औरतें सिर पर गठरियां उठाकर

0: चले जा रहे थे, पैदल, साइकिलों पे, साइकिल रिक्शा पे, किसी भी तरह बस चले जा रहे थे। रदर दे वर रनिंग, यू नो, रनिंग अवे फ्रॉम सिटीज ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट मामा, टू देयर नेटिव प्लेसेस। मामा दे वर एस्केपिंग, माइग्रेटिंग।
1: अरे ये सब तो टीवी पर आता है, प्रवासी मजदूर अपने घर को लौट रहे हैं और क्या।
0: हाँ, टीवी जैसा ही पर एकदम रियल, लाइव, जिंदा। एक बच्चा सिर पर बैग उठाकर चला जा रहा था।
1: अच्छा,
0: मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, उसने रिप्लाई ही नहीं दिया, भाग गया। पता है मम्मी, एक अंकल थे बूढ़े से, नंगे पैर मम्मा।
1: अच्छा,
0: और उनके पैरों में चोट लगी थी। पता है मम्मा कितना ब्लड आ रहा था, और पापा को इतना वरिड मैंने कभी नहीं देखा मम्मी।
1: अच्छा,
0: जितने वो उस सीन को देखकर हुए। एंड यू नो
1: क्या,
0: यू नो पापा ने क्या किया?
1: क्या?
0: पापा ने अपने स्लीपर्स उन अंकल को दे दिए मम्मा।
1: अच्छा,
0: आप देख सकते हो पापा उसके बाद नंगे पैर चल रहे हैं।
1: हैं? हाँ हाँ, सच में नंगे पैर ही हैं। अरे अम्मा, अम्मा देखिए तो जरा सा, इन्होंने तो
2: हुआ?
1: अरे अम्मा ये देखिए तो, इन्होंने स्लीपर अपनी दे दी किसी को।
2: अरे
1: हाँ, इनके पैर दुख रहे होंगे गुड़िया।
2: कोई बात नहीं, कोई बात।
1: अरे गुड़िया पापा को फोन दो। हेलो हेलो,
3: हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ?
1: अरे आप नंगे पैर हैं, सड़क चुभ रही होगी आपको।
3: नहीं नहीं, आज तो जमीन को फील कर पा रहा हूँ। जानती हो, जिंदगी को इस तरह कभी नहीं देखा। जिंदा बचा रहने की इच्छा का परम रूप, चरम रूप, जिजीविषा शायद इसी को कहते होंगे। ये लोग इस अंधेरे वक्त में दिखे, इन्हें एहसास हो गया कि इन्हें कोई नहीं बचाएगा, न साहूकार, न सेठ, न सरकार, न अमीर, न गरीब। खुद ही खुद को बचाना होगा, अपने ही पैरों पर भरोसा करना होगा। ये लोग न जाने कब से चल रहे हैं, और इन लोगों को न जाने कब तक चलते रहना है।
1: ये कौन लोग हैं?
3: यही तो विडंबना है। ये लोग हमारे ही शहरों में थे, हमारे शहर इनके ही बनाए हुए थे, ये शहर इनके चलाए ही चल रहे थे, पर ये आज तक कहीं दिखाई नहीं दिए। हमारे लिए इनका अस्तित्व ही नहीं था। ये हमारी ही तरह हाड़ मांस के जिंदा इंसान है।
1: आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो लगता है आपने कोई सपना देख लिया है, और वो भी जागते हुए।
3: ये हमारे जैसे लोगों के लिए सपना ही है, कल्पना से भी परे, पर हकीकत। जमीन पर उतरकर ही इसे जाना जा सकता है। अरे जानती हो, हमारा डर तो दाल रोटी के साथ सब्जी न मिलने का डर है।
1: हाँ।
3: काम वाली नहीं आएगी तो उसके बगैर काम कैसे चलेगा, इसका डर है। पर पता है
1: क्या?
3: इनका डर भूखों मर जाने का डर है। इन्हें यही डर है कि जिंदा बचेंगे कि नहीं। इन लोगों ने इसे भोगा है, मैंने नहीं भोगा, सिर्फ करीब से देखा है, और तहल गया हूं, अंदर तक तहल गया हूं।
0: सच पापा, बड़ी वियर्ड रात थी वो। ओ माय गॉड, आज भी याद करके गूज़बम्स हो जाते हैं।
2: क्या गूज हो जाते हैं? क्या बक रही है?
3: अरे अम्मा, रोंगटे खड़े होने को अंग्रेजी में गूज बम्प कहते हैं। अरे अम्मा, तुम इसे कभी कभी अपनी भाषा भी समझाया करो यार।
2: हाँ हाँ
0: पापा, लेकिन उस रात पप्पी को जो पानी पिलाने का एक्सपीरियंस था ना, वो मेरी लाइफ का डीप बेस्ट एक्सपीरियंस था।
2: हाँ, तभी तो तुमने ढिंढोरा पीट दिया, हाय हाय अनाथ कुत्ता है, मर जाएगा।
0: अरे नहीं दादी, मैंने तो बस सोशल मीडिया पर शेयर किया था। मुझे डर लग रहा था कि हम इतनी दूर रोज रोज थोड़ी ना जाएंगे उसे खाना खिलाने।
2: हाँ, तो इसीलिए तो आ गया ना तुम्हारी मदद करने के लिए वो उजला फरिश्ता।
0: सच्ची? और तब से देखो वो पपी, अरे जिसे आप भूरे कहती हैं।
2: हाँ,
0: दिन भर पता नहीं कहाँ रहता है, लेकिन रोज शाम को फ्लाईओवर पर आ जाता है, ठीक हमारी खिड़की के नीचे।
2: हाँ।
0: और आपको पता है एक लेन जो खाली रहती है ना, वहीं पर, और वो पर्सन वहीं आकर जॉगिंग करता है। पहले भूरे को खाना खिलाता है, फिर अपना मोबाइल चेक करता है, फिर 10 चक्कर यहाँ से वहाँ लगाता है। और पता है ये भूरे लाल उसके आगे पीछे नाचते

0: कूदते रहते हैं। पता है दादी, बारिश हो जाए ना तो भी इन दोनों की रूटीन नहीं टूटती।
1: अरे अम्मा, जब से ये भूरे को इन्होंने क्या देख लिया, उसकी सेवा क्या करने लगी, बस सोते जागते बस भूरे की कहानी, भूरे की कहानी। दादी को सुनाएंगी, फिर नानी को सुनाएंगी। भाई
2: अरे तुमको याद नहीं, उस दिन पेरेंट्स मीटिंग के बाद जब तुम वापस आई तो तुम्हारे साथ सहेलियां भी आई थी तुम्हारी।
1: बिल्कुल,
2: उनको दिखाने बैठ गए, उनको बताने लगी, उनको ले गई अपने साथ कि चलो हमारे साथ हमारे भूरे को देखो।
1: और वो तो उसके संग संग उजले फरिश्ते को भी देखो। ठीक है, बेजुबान प्राणी की सेवा तो हम सबको करनी ही चाहिए।
2: हाँ बिल्कुल सही बात है, प्राणी की सेवा करना परम धर्म है। और ये जो इस समय कोरोना का समय चल रहा है, इसमें ये सारी चीजें अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये बेजुबान जानवर आखिर हमारे ही तो भरोसे हैं, तो ये करना बहुत जरूरी
1: है। बस बस बस शुरू हो गया ये, इनको मौका मिला गुड़िया और तुमने मौका दिया और पापा शुरू हो गए। अच्छा सब लोग बस करो और गुड़िया चलो आओ, सब पराठे खा लो, आ जाओ आ जाओ।
0: क्या मम्मी पापा आप भी ना, अरे भूरे तो हमारा हीरो है, आप लोग भी ना। हाँ। ओ नो, देखो ना बातों में तो मैं भूल ही गई, आज भी आ गया होगा अब तक और नानी भी मेरा वेट कर रही होंगी। अरे मुझे उन्हें रिपोर्ट देनी है ना भाई, मैं तो जा रही हूँ खिड़की पर। हेलो हेलो नानी।
3: गुड़िया,
0: अरे आप जाग रही हैं?
3: हाँ बेटा, तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ।
0: इज इट? क्या बात है,
3: जल्दी जल्दी बता, क्या वो आया? क्या क्या कर रहा?
0: हाँ हाँ नानी, अब सुनिए तो इत्मीनान से, मैं आपको पूरी रिपोर्टिंग दूंगी, पूरी गुड़िया रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम खिड़की, आप बस सुनते जाइए। हाँ तो नानी, मैं देख रही हूँ कि उजला फरिश्ता आ चुका है, उसने अपने बैग से कुछ निकाला। अब वो रोटी है या ब्रेड ये तो पता नहीं चल रहा है यहाँ से, लेकिन भूरे लाल भी जल्दी जल्दी खा रहे हैं इतना दिख रहा है। अब खाना खत्म, भूरे लाल का और भूरे की मस्ती शुरू। उजला फरिश्ता अब तेजी से सैर कर रहा है, कभी इधर कभी उधर, और ये भूरे लाल कभी उसके आगे कभी उसके पीछे उछल कूद कर रहे हैं। नानी आप बस सुनती चलिए। और ये मैं क्या देख रही हूँ, ओहो भूरे ने उछल कर फरिश्ते की पैंट पकड़ ली और पैंट छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए उजला फरिश्ता। ओह मैं कह सकती हूँ नानी कि भूरे बड़ा खुश है, और नानी भूरा खुश है तो मैं खुश हूँ, और मैं खुश हूँ तो नानी आप खुश हैं, है कि नहीं?
3: बिल्कुल खुश।
0: तो नानी आज की रिपोर्टिंग के बाद अब तो आपको नींद आएगी ना?
3: हाँ बेटा जरूर आएगी।
0: तो ठीक है, आज आप सो जाइए आराम से इत्मीनान से, मैं कल शाम को आपको फिर कॉल करके रिपोर्ट करूंगी। ओके गुड नाइट नानी, बाय बाय।
2: गुड नाइट गुड़िया, बंद करो बेटा फोन अपना, इधर आओ, देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं। तुम्हें खिचड़ी टाइप बिरयानी अच्छी नहीं लगी थी ना?
0: हाँ।
2: तो जानती हूँ मैंने क्या किया?
0: क्या बताया पापा?
2: दूध लाया।
0: हाँ?
2: दूध तो मिल रहा है लॉकडाउन में,
4: लेकिन मुझे दूध अच्छा नहीं लगता।
2: मालूम है मुझे, इसीलिए मैंने उसका छेना बनाया।
0: क्या बात है!
2: और छेने के बाद उसके संदेश बनाए।
0: इज इट
2: बंगाली संदेश?
0: ओ वाओ पापा, मेरे मुंह में पानी आ रहा है।
2: तो मीठे मीठे संदेश खाओ, और हाँ अपनी मम्मी को भी खिला देना, हमेशा कहती ना कि यही खाते रहते हैं हमेशा।
0: वाओ यू आर ऑसम, यू आर ग्रेट।

अभी आप सुन रहे और थे अनूप सेठी का लिखा नाटक जमीन आसमान। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का पात्र सहित परिचय इस प्रकार था। माँ रेणु चतुर्वेदी, गुड़िया आकांक्षा सिंह, दादी ममता सिंह, नानी अनुश्री पाठक और पापा अमरकांत दुबे। संगीत संयोजन और तकनीकी सहयोग दिलीप कुलकर्णी। निर्देशक अमरकांत दुबे।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला, सईद को पकड़ा लिया और

0: उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
1: और आ गया।
0: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर सुन

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज आप सुनने वाले हैं जानी मानी राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सीमा जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विविध भारती पे एक बार फिर से मैं आई हूँ और आप लोगों से रूबरू हूँ।
2: जी, आपने थिएटर किया, दूरदर्शन की दुनिया भर के सीरियल्स बनाए, डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्में बनाई, आपने फिल्में भी बनाई। फिल्में बनाने का विचार कैसे आया?
3: देखिए, क्या है, कला एक नदी है
2: जी,
3: तो नदी जब अपने स्रोत से शुरू होती है तो बहुत छोटी होती है, फिर आते आते धीरे धीरे धीरे और उसका जो गंतव्य है, डेस्टिनेशन है, वो समुद्र होता है। तो फिल्म जो है ना, समुद्र है
2: जी,
3: तो वहां आना ही था। मुश्किल होता है क्योंकि फिल्म में बहुत पैसे की जरूरत होती है, फिल्म का जो कैनवास है हर तरह से बड़ा होता है, लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे चांस मिल गया फिल्म बनाने का। और उससे ज्यादा सौभाग्यशाली ये रही कि मेरी तरह का सिनेमा जो ऑफ बीट है, एक नई तरह का, जैसे मैंने आपको बताया हार्ट मेरी पहली फिल्म थी, उसमें मैंने शारदा वाला कैरेक्टर तो लिया ही है, जो वो एक गांव की लड़की है जो बिक रही है, और उसके साथ मैंने एक कैरेक्टर लिया है जो पास्ट की लड़की, बुद्ध पीरियड की लड़की है, उससे पहले की लड़की है, जो तब की है जब भी बिकती थी महिलाएं, स्त्री, तो वो उसकी आत्मा इससे मिलती है। पास्ट और प्रेजेंट को मैंने दोनों
2: को मिलाया है,
3: और वो कहती है मैं तब तक मुक्त नहीं होंगी जब तक तू मुक्त नहीं होगी, तू अपनी मुक्ति देख, तो वो उसको वो प्रेरणा देती रहती है। तो इस तरह का सिनेमा बनाने का सौभाग्य मिला मुझे और काफी इंटरनेशनल इसको अप्रिसिएशन भी मिला फिल्म को,
2: काफी चर्चा हुई इन फिल्मों की। और इसलिए मैं आपसे ये भी जानना चाहती थी कि मिस्टर कबाड़ी और द वीकली बाजार जैसी ऑफ बीट फिल्मों का आपने निर्देशन किया, तो क्या अनुभव रही फिल्में बनाने के?
3: हार्ट द वीकली बाजार का तो अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि सारे कलाकार बहुत मन से काम कर रहे थे। दिव्या दत्ता थी, अर्चना पूरन सिंह थी, यशपाल शर्मा, मुकेश तिवारी, ये सब लोग थे, और म्यूजिक भी बहुत अच्छा था, अशोक चक्रधर ने गीत लिखे थे, अली गनी जो है पद्मश्री हैं अभी, उन्होंने संगीत दिया था, तो वो तो बहुत ही अच्छा रहा। मिस्टर कबाड़ी जो थी वो कॉमेडी फिल्म थी
2: जी।
3: लेकिन एक गरीब आदमी जब अमीर हो जाता है तो उसकी क्या त्रासदी होती है। गरीब जब तक रहता है तो कोई दुख नहीं है, अमीर होते ही सारे दुख शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को उन अमीरों में शामिल देखना चाहता है, और जो अमीर है वो अपनी क्लास कॉन्शियस है, इलीट क्लास वालों में रहना चाहता है, वो क्लब में जाना चाहता है, और वो लोग उसको मुंह नहीं लगाते, पैसा है। लेकिन उसमें भी ये कहने की कोशिश की है कि मतलब आप जिस क्लास से हैं, पैसा आ जाए तो उसको सुविधा के लिए होता है पैसा, और उससे कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत नहीं, आप जहां हैं वहां बहुत खुश हैं।
2: सबसे बड़ा संदेश,
3: सबसे बड़ा जी।
2: तो ये एक बड़ा अच्छा आपने कंट्रास्ट इस तरह का उस फिल्म में लिया था। तो मुख्यधारा की मसाला फिल्मों से अलग ही फिल्में थी, दशकों तक कहां तक पहुंची होंगी फिल्में, आप क्या सोचती एक निर्देशक होने के नाते?
3: अब तो ओटीटी आ गया है और ओटीटी पे है तो काफी लोगों ने देखा उसको, लेकिन चूंकि हमारे पास बहुत बड़े वाले स्टार नहीं थे, इसलिए जब सिनेमा में आई तो उतना नहीं हो पाया, छोटे बजट की फिल्म

0: व्यास की लेखिकाएं भी स्त्री विमर्श पर लगातार चर्चाएं करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उससे एक अलग दिशा की ओर जा रही हैं। जब हम बात करते हैं स्त्री विमर्श पर, तो वही आपने कहा कि वो पुरुष विरोधी होकर जब लिखा जाता है तो स्त्री विमर्श फिर स्त्री विमर्श नहीं रह जाता।
1: देखिए, आप है ना, संसार में चलाने के लिए ईश्वर ने पुरुष और स्त्री दोनों को बनाया। आप ये कहें कि पुरुष खराब है इसलिए हम शादी नहीं करेंगे, हम अकेले ही रहेंगे, तो हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें दोनों की जरूरत है। जैसे वो बड़ा क्लीशे सा शब्द है ना कि भाई गाड़ी के दोनों पहिए हैं,
0: बिल्कुल,
1: आप उनके बिना नहीं चल सकते। और अब पुरुषों को भी थोड़ा सा अपने आप को बदलने की बहुत जरूरत है कि अब स्त्री को नए परिपेक्ष में देखें, वो एक नए ढंग से देखें उसके सम्मान को, उसके काम के सम्मान को। मुझे जो स्वतंत्रता है ना, वो शब्द स्वच्छंदता नहीं बनना चाहिए
0: जी।
1: स्त्री का या पुरुष की स्वतंत्रता जो है वो अभी थोड़ा सा, मैं इस पे बोलना चाहूंगी कि स्त्री अभी जो स्वतंत्रता के नाम पे उच्छृंखलता जो हो रही है ना, वो स्त्री को और गुलाम कर रही है।
0: जी जी, बिल्कुल सही कहा। और स्वच्छंदता शब्द तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों पर ये सही नहीं बैठता
1: जी,
0: है,
1: दोनों के लिए गलत है। तो स्वतंत्रता के नाम पे आप कहें कि मैं ये खा लूं और मैं वो पी लूं, नशा कर लूं, उसमें स्वतंत्रता है, तो हम तो और गुलाम हो रहे हैं ना। ये स्वतंत्रता नहीं है। स्त्री की स्वतंत्रता आर्थिक होनी चाहिए, वैचारिक होनी चाहिए
0: जी,
1: है ना। ये दो स्वतंत्रता, वो अपना प्रोफेशन खुद चुने, वो आर्थिक रूप से सक्षम हो, और अपना कोई भी चीज चुनने के लिए वो फ्री हो, ये होना
0: वहां
1: चाहिए।
0: उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए
1: जी।
0: अपने निर्णयों को लेना सीखे कि जिंदगी को किस ओर ले जाना है सही तरीके से। तो आपने इतनी फिल्में देखी हैं, आप फिल्मों की मुरीद हैं, सिनेमा लिखती हैं, सिनेमा को डायरेक्ट करती हैं। आज जो वर्तमान सिनेमा की हम बात करें, महिलाओं को जिस रूप में दर्शाया जा रहा है, आप उसे कहां तक सहमत हैं? जो स्थिति फिल्मों में स्त्री की दिखाई जा रही है, स्त्री खुद क्या इसकी जिम्मेदार है या वहां कहीं ना कहीं मजबूरी या प्रोफेशन आ रही है?
1: देखिए, समाज में मुझे क्या लगता है कि जब से शराब स्टेटस सिंबल बन गई है, तब से हास होने लगा है
0: जी।
1: अब हर फिल्म में आप दिखा रहे हैं कि स्त्री मध्यपान कर रही है या ये कर रही है वो कर रही है, तो ये कौन सी चीज बोलना चाह रहे हैं आपके, मतलब ये सामान्य होनी चाहिए ये चीज? इसके तो मैं खिलाफ हूं। आप मुझे शायद पुराने समय का, पुराने विचारों का आप वो कर दें, लेकिन कोई भी चीज, औषधि भी अगर आपको मानसिक रूप से गुलाम

0: बना रही है तो भी गलत है ना। तो किसी भी तरह का नशा, किसी भी तरह की ये चीजें, उसको ग्लोरीफाई करके, उसको बहुत ज्यादा आप हाईलाइट करके और अपनी हीरोइनों से आप, क्योंकि आम आदमी, एक किस्सा सुनाती हूं मैं। हम लोग दिल्ली गए थे शादी के बाद, मैं और पुरी साहब। तो पुरी साहब तो आर्ट फिल्में और इस तरह की फिल्में थी, हम लोगों के पास कोई इतना पैसा तो था नहीं। तो मेरे एक वहां पर मित्र हैं, उन्होंने कहा कि हम एक एड पुरी साहब से बनवा देते तो तुम लोगों का आना जाना फ्री हो जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा। एड में बहुत पैसा मिलता है, जो पूरी एक फिल्म में जो एक साल तक बनती है उतना एक दिन की शूटिंग में एड में मिल जाता है। तो मैंने कहा हाँ हाँ बड़ी अच्छी बात है, ये तो पुरी साहब करेंगे। पुरी साहब बोले हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। मैंने कहा काय का ऐड है? बोले सिगरेट का। तो पुरी साहब बोले, उससे पहले ही मैंने कहा नहीं पुरी साहब सिगरेट का ऐड नहीं करेंगे। पुरी साहब ने मुझसे पूछा कि क्यों नहीं करूंगा, मेरे कहने से पी लेंगे क्या लोग? मैंने कहा पुरी साहब अगर आपके कहने से नहीं पिएंगे, ये आप तर्क दे रहे हैं, तो ये आपको इतना पैसा क्यों दे रहे हैं? आप जिस भी फील्ड में हैं, आप कला फील्ड में हैं, आपको लोग देखते हैं और इनको भी पता है कि आप कहेंगे तो 1000 लोग देखेंगे, 2 लोग तो पिएंगे, है ना। अब हमारे जो बड़े बड़े कलाकार हैं वो अगर इस तरह के ऐड करते हैं और कहते हैं कि हम कोई समाज सुधारक नहीं हैं, समाज सुधारक आप हो या ना हो, आप सेलिब्रिटी हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो बच्चा जो है 15 साल का से लेके 5 साल का बच्चा भी आपके उस पे डांस करता है और आपको सुनता है, आपको हीरो मानता है वो या हीरोइन मानता है, आप जो करेंगे वो उसका अनुसरण करेंगे। तो आप अगर इस तरह के ऐड करेंगे, विज्ञापन करेंगे, आपको तो करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, लेकिन करोड़ों लोगों की जिंदगियां जो है आपने स्टेक पे लगा दी है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो पुरी साहब ने नहीं किया फिर वो ऐड। तो हम उस तरह के लोग हैं जो सामाजिक रूप से अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि अगर हम कुछ कह रहे हैं और हमारी बात 10 लोग भी सुन रहे हैं तो हमें बहुत सोच समझ के करनी और कहनी चाहिए।
1: जी, आपकी कथनी और करनी में अगर अंतर है तो फिर आपकी सामाजिक जिम्मेदारी कहीं नहीं बनती।
0: जी
1: जी, बहुत बड़ी बात आपने कही कि एक कलाकार क्या कह रहा है, क्या विज्ञापन दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है, उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो समाज में क्या फैला रहा है। सीमा जी, बातचीत का ये सिलसिला तो चलता रहेगा और आपकी पसंद का एक गीत सुन लिया जाए।
0: जी, मेरी पसंद का गीत

0: सीमा जी, आपसे अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आपको कौन से कलाकार पसंद हैं इस इंडस्ट्री में, जो आपने बतौर एक्टर या एक गहराई के तौर पर पसंद किए, तो कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जिन्हें आप पसंद करती हैं?
1: दिलीप साहब, मोतीलाल जी, बलराज साहनी, फिर उसके बाद जो बचपन में हमारे हीरो हुआ करते थे वो राजेश खन्ना
0: जी,
1: और देव साहब, धर्म जी, इस तरह के जो कलाकार हैं उन्होंने अलग अलग तरह का सिनेमा किया। अब आप देखिए, धर्म जी बिल्कुल घोर कमर्शियल फिल्मों में थे, लेकिन उन्होंने अनुपमा की, सत्यकाम उन्होंने प्रोड्यूस की, है ना, और कितनी फिल्में हैं जो उन्होंने
0: ऑफबीट, बहुत सारी फिल्में हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे जितेंद्र को जब हम देखते हैं तो गुलजार साहब
1: जंपिंग जैक के नाम से जाने जाते थे,
0: लेकिन गुलजार साहब की फिल्मों में उनका एक अलग रूप देखने को मिला। और अगर नायिकाओं की बात करें तो कौन सी नायिकाएं आपको पसंद?
1: नायिकाओं में मुझे वो बिचारी अपने सौंदर्य की वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे कोई कभी जिक्र नहीं करता है, जबकि वो कलाकार बहुत अच्छी थी अगर आप उनकी सिनेमा उठाएं। लेकिन उनके साथ एक दुर्भाग्य रहा कि वो बहुत हसीन थी,
0: मधुबाला
1: उनकी सुंदरता पर चर्चा होती है, लेकिन आप जरा मुगले आजम उठा के देखें, आप मिस्टर एंड मिसेस 55 उठा के देखें, आपको वो रेंज मिलेगी, कहाँ कॉमेडी कहाँ सीरियस। वो कलाकार बहुत अच्छी थी, तो मधुबाला मुझे बहुत पसंद थी। नरगिस बहुत अच्छी परफॉर्मर थी, मीना जी बहुत अच्छी परफॉर्मर थी, वो उनका एक स्टाइल था, और शबाना बहुत अच्छी परफॉर्मर हैं अभी के उसमें, करीना अच्छी परफॉर्मर है। बस ये है कि ये लोग स्क्रिप्ट अच्छी चुन लें तो ज्यादा अच्छा हो।
0: शशि कपूर के लिए भी हम यही पढ़ते थे कि वो इतने हैंडसम थे कि उनकी एक्टिंग पर तो बात होती थी लेकिन की खूबसूरती के दीवाने ज्यादा थे।
1: जी जी,
0: तो कई बार आपकी अति सुंदरता भी जो है आपके लिए, आपकी कला के लिए घातक।
1: जैसे अभी ऐश्वर्या राय कितनी खूबसूरत है, लेकिन वो परफॉर्मर बहुत अच्छी है, परफॉर्मर अच्छी है, मैंने उनकी कई ऐसी फिल्में देखी है, परफॉर्मर बहुत अच्छी है वो, लेकिन अब जिक्र ही नहीं होता है। आप उनकी सुंदरता में बात करते हैं कि उसमें खूबसूरत लगी, ये करी वो सब, जबकि देखिए

0: अमीना जी भी कम खूबसूरत थी क्या? उनकी अपनी अलग तरह की खूबसूरती थी, नरगिस जी की अपनी खूबसूरती थी,
1: बहुत सुंदर
0: जी,
1: आंखें बोलती थी उनकी
0: जी,
1: उनके होठ बोलते थे जिस तरह से उनका,
0: परफॉर्मर मुमताज भी अच्छी थी। कुछ कलाकार डायरेक्टर के एक्टर होते हैं, आपने देखा होगा कुछ एक्टर्स जो हैं कुछ फिल्मों में बहुत खराब काम करते हैं और कुछ फिल्मों में ब्रिलियंट होते हैं, वो निर्देशक के कलाकार होते हैं। निर्देशक अगर आप देखिए ना, आप शक्ति सामंत की फिल्म कर रहे हैं, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म कर रहे हैं, फिर आप किसी और की फिल्म कर रहे हैं, तो उसमें परफॉर्मेंस में बहुत अंतर आ जाता है।
1: जी बिल्कुल, कि आपको निर्देशक ने किस रूप में पर्दे पर उतारा,
0: निर्देशक
1: है,
0: कितना स्ट्रांग है अपने काम में।
1: बतौर निर्देशक अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको कौन सा ऐसा कलाकार पसंद है जिसने आपके निर्देशन में बहुत ही अच्छा काम किया आपकी नजर में?
0: मेरे निर्देशन में तो मेरे परिवार के ही दो लोग तो काम कर ही रहे, अन्नू भाई और रंजीत भाई ने भी मेरी सीरियल में काम किया था एक्टिंग, जबकि वो एक्टर नहीं है। तो पुरी साहब आसान थे उनके साथ काम करना, अनुभया के साथ काम करना थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि कई बार वो बड़े भाई भी बन जाते थे। बाकी तो मैंने अभी तक जितने लोगों के साथ काम किया है, चाहे सुरेश ओबेरॉय हो चाहे दिव्या हो, सब का बहुत अच्छा सहयोग मिला।
1: दिव्या भी एक बहुत अच्छी कलाकार,
0: बहुत अच्छी,
1: बहुत ही संचिता कलाकार है
0: जी, और मेहनती बहुत है, अपने काम पे फोकस है उसका और मेहनत करती है, चीजों को बार बार पूछना सवालों को कि ये कैसे है, ये कैरेक्टर क्या है, ये क्या है, क्योंकि हर को गांव का नहीं मालूम होता ना, गांव के क्या है वो आप निर्देशक या राइटर से पूछते हैं
1: जी,
0: वो गांव में तो नहीं रहे हुए होते, तो वो उस तरह से ना उन लोगों का अपना जो होमवर्क है वो करने में पूरा टाइम बार बार फोन करके पूछना कि ये कर लूं क्या, ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब एक कैरेक्टर गांव का होता है तो उनके जो मैनरिज्म है ना, उनके हाव भाव, जैसे गांव का कोई एक कंधे उचका के ना नहीं कहेगा, ये बहुत ही शहरी जेस्चर है, तो वो ख्याल रखना वो निर्देशक का भी जरूरी है, कलाकार अगर उसमें गच्चा खा जाए थोड़ा कमजोर हो जाए तो निर्देशक का वो बनता है। लेकिन ये ऐसे कलाकार हैं जो होमवर्क जिसे बोलते हैं ना, कि फिर गांव का जो कैरेक्टर है वो कैसे उसके हाव भाव होंगे, कैसे हाथ उठा के बात करेगा, कैसे क्या करेगा, ये लोग होमवर्क बहुत करते हैं, इसलिए ये इतने
1: स्टैब्लिश कलाकार हैं, अच्छे और परिपक्व कलाकार हैं, जहां किसी भी फिल्म में इन कलाकारों ने कभी आपको बोर नहीं किया, जैसे हम एक सामान्य शब्दों में कहें, जिसे कहते हैं कि निरुत्साह नहीं किया, हमें कभी निराशा नहीं हुई इन्हें देखकर कि ये क्या एक्टिंग कर,
0: कमजोर नहीं पड़े ये अपने अपने किरदार में,
1: क्योंकि अपने काम को इतना मजबूती के साथ इन्होंने किया है। चलिए आपकी पसंद का गीत सुनते हैं और फिर एक सवाल आपसे पूछते हैं।
0: मदन मोहन जी का संगीत में एक गाना मुझे बहुत पसंद था, दुल्हन एक रात की, मैं लता जी ने गाया, सपनों में अगर मेरे तुम आओ तो मैं सो जाऊं,
1: बहुत सुंदर गाना है। चलिए तो सुनते हैं यही गीत।
2: सपनों में अगर

0: बहुत सुंदर गीत सीमा जी आपने हमें सुनवाया, और इससे पता चलता है कि क्लासिक जो है संगीत आपको पसंद है और जो रूह को सुकून दे रहा है।
1: जी
0: आपकी 2025 में एक आत्मकथा आई किताब के रूप में, उसके बारे में हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। मैं आप ही से सुनना चाहती हूँ उस किताब के बारे में, उस आत्मकथा के बारे में। बहुत ही सुंदर उसका शीर्षक है,
1: यूं गुजरी है
0: गुजरी
1: अब तलक। जी, तो किताब का ख्याल मुझे ऐसे आया था कई साल पहले। क्या हुआ था कि पुरी साहब से बिछड़ने के बाद आई लॉस्ट माई चाइल्ड, तो उसमें मेरे भाई, मेरी माता जी, वो सब इतने दुखी थे कि मेरे दुखी होने का मुझे समय नहीं मिला, ना अवसर मिल रहा था, क्योंकि सबको रोता देख के अगर मैं भी रो रही होती तो उनको संभालता कौन।
0: जी,
1: तो इसलिए मैंने एक फसाड, एक ना एक आवरण सा ओढ़ रखा था कि कोई बात नहीं, ये जीवन है, ये भी समय निकल जाएगा, और ऐसे करके। लेकिन मेरे अंदर ना एक दावानल चलता रहता था, आपको एक कोना चाहिए जहां आप रो सकें, जहां आप कथार्सिस जिसे हम लोग बोलते हैं, ये एक रेचन हो जाए, अंदर से जो गुबार है वो निकल जाए। तो मुझे, मैं सबके बीच में घिरी हुई थी, सारे मेरे दुख से दुखी थे, उनको मैं अपना दुख दिखा के दुखी नहीं होना चाहती थी। तो मैंने कहा कि कलम ही एक ऐसा मेरा साथी है जो मैं अकेले में जिसको लिख सकती हूँ, और अपने उद्गार पेपर पे ना उसकी स्याही जो है मेरे आंसुओं की तरह उसे निकालूं।
0: जी,
1: तो मैंने अपने बच्चे को एक खत लिखा जो चला गया कि भाई तुम, मेरी कोख इतनी खराब थी कि तुम नहीं रह सके उसमें। तो फिर उससे मैंने कई सवाल पूछे कि तुम क्यों नहीं आना चाहे, मैंने तो तुम्हारे लिए बड़े सपने देखे थे, मैंने तो तुम्हारे लिए सारा कुछ वो करके रखा था कि दुनिया में ऐसे तुम्हें वो करूंगी, ऐसे तुम्हारी तरबियत पालन पोषण करूंगी, कैसे भी अभाव होंगे, कैसे भी कुछ होगा, संघर्ष करूंगी, लेकिन तुम्हें मैं सारे वो सपने जो तुम देखोगे उनको पूरा करने की कोशिश करूंगी। तो वो सब मैंने खत लिखा उसको, फिर भी सवाल जब वो नहीं हुए तो मैंने बच्चे की तरफ से माँ को एक खत लिखा कि मैं क्यों नहीं आया।
0: जी,
1: तो ये जब लिखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये आत्मा को बड़ी मेरे कथार्सिस हो गया, एक दर्द जो है निकल गया। तो मुझे ऐसा लगा कि इतना जो जिंदगी में झंझावात झेले हैं, जिंदगी में जो अनुभव अच्छे बुरे खट्टे मीठे, थिएटर कंपनी के बाबूजी की जो लोगों ने जाना नहीं है, लोग ये जानते पारसी थिएटर हुआ करता था, नाटक मंडलियां हुआ करती थी, लेकिन उनकी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, उनकी स्त्रियां क्या थी, वहां पे स्त्रियों की क्या दशा थी, जो स्टेज पे

0: समाज से उपेक्षित थीं, स्टेज पे कमाती थीं, लेकिन फिर भी वो पुरुष के सत्ता के अधीन थी वो
1: जी।
0: तो वो सब मैंने उतारने के लिए मन बनाया और ऐसे मैंने कहा ये सिर्फ सारी चीजें कहानियों में नहीं आ सकती, क्योंकि इतनी सारी कहानियां कहाँ लिखूंगी मैं, अपनी आत्मकथा ही लिख दूं, उसमें तो सारे वो कैरेक्टर हैं, वही बिब्बी हैं, वही बुग्गी हैं और वही चंदा हैं और वही शरीफ भाई हैं और वो जो नाटक कंपनी के चरित्र हैं सारे हैं, वो उनको उतारा जो थे हमारी नाटक कंपनी में, क्या मेरी माँ थी उनका संघर्ष, क्या मेरे फादर थे उनका संघर्ष, हमारा संघर्ष के इतने अमीर माता पिता की संतान होके आज देखिए जब हमारा थिएटर कंपनी जो हमें इतना पैसा और खाना देती थी, उसके बाद जब सिनेमा आया तो थिएटर कंपनियां बंद हो गई, भुखमरी आ गई
1: जी,
0: है ना, सारी थिएटर कंपनियां बंद हो गई। एक जमाने में जिस फिल्मों ने सिनेमा ने हमारी रोजी रोटी छीनी, आज वो सिनेमा हमें रोजी रोटी दे रहा है। तो ये पूरा जो ग्राफ है जिंदगी का ये मैंने उसमें लिया और लोगों को शैली भी बहुत पसंद आई, कहने का स्टाइल पसंद आया।
1: काफी चर्चित रही ये किताब और 2025 की सबसे चर्चित किताबों में से एक किताब रही ये यूं गुजरी अब तलक, और उसमें मुझे लगता है कि हम
0: साहित्य तक ने तो उसको 2025 की टॉप 10 में बुक में
1: शामिल किया और काफी लोगों ने आपको उस वक्त जाना पहचाना, आपके दर्द को समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। तो सीमा जी आगे भी आप यूं लिखती रहे, ये शुभकामनाएं हम आपको देते ही है। चलिए एक और गाना हो जाए आपकी पसंद का।
0: जी।

0: आगे की नए प्रोजेक्ट्स आपके क्या क्या हैं, बस ये जानना चाहते हैं।
1: जी वो फिल्म बना रही हूँ, दो सीरियल का है वो कर रही हूँ, एक दो महिलाओं पे डॉक्यूमेंट्रीज हैं। जी एक जगह है जहाँ पर गांव से महिलाएं जो हैं वो नदी के पार करके जाती हैं, कुछ भी नमक भी खरीदना हो तो उनको नदी पार करनी पड़ती है, और नदी कैसे पार करनी पड़ती है, टायर ट्यूब होते हैं ना उसमें बैठ के और अपनी चप्पलों को चप्पू बना के वो नदी पार करती हैं।
0: अरे
1: तो वो मैं बना रही हूँ, अभी पानी थोड़ा सा नदी में कम है तो इस वजह से थोड़ा अब मैं सर्दियों में जाके, तो ये सारी चीजें मैं चाहती हूँ कि मैं जितना भी काम करूँ, मेरी जो महिलाएं हैं, मैं चूंकि स्त्री हूं तो मैं स्त्रियों पे ही काम करना चाहती हूँ।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, तो इस लाइन में आने वाली स्त्रियों को आप क्या कहना चाहती हैं, युवा स्त्रियों को जो इस लाइन में आना चाहती हैं बतौर राइटर, बतौर निर्देशक, बतौर एक्टर?
1: देखिए कोई भी विधा, जैसे अभी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, एक कोई पत्रकार हैं वो एक्टिंग में चले गए तो लोग उनको डिफेंड करने लगे कि भाई लोग सीखते सीखते सीखेंगे। मैं इसके खिलाफ हूँ। एक तो जो कलाकार आता है, जो जैसे अभी एनएसडी से ट्रेंड एक एक्टर आ रहा है
0: जी,
1: ठीक है, आपने उसकी रोजी रोटी छीन रहे, पहली बात, जिसने इसी को पढ़ा है जो यही कर रहा है, और फिर जब करोड़ों रुपए एक फिल्म में लगते हैं तो वहां पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई रोटी बनाना है कि धीरे धीरे सीखेंगे।
0: हाँ,
1: नहीं,
0: तो सीखने की प्रक्रिया भी चल रही है।
1: हाँ, ये प्रक्रिया नहीं है, करोड़ों रुपए आप पे लगते हैं तो प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, आपको ट्रेंड होना पड़ेगा। तो मैं युवाओं से ये कहना चाहूंगी कि देखिए दो तरह से आप सिनेमा की तरफ आकर्षित होते, ग्लैमर और पैसा। तो जब ये दो चीजों से आकर्षित होकर आप आते हैं तो सक्सेस मिलने के चांसेस जो हैं आपको 5% होंगे। लेकिन आप कलाकार हैं, आप पढ़ते हैं, आपने सिनेमा पढ़ा होता है, थिएटर पढ़ा होता है, आपने लिटरेचर पढ़ा होता है, म्यूजिक पढ़ा होता है, ये सारी चीजें जब आपने की होती हैं, थिएटर किया होता है और टेक्निक जानते हैं, मतलब ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। जैसे एक डॉक्टर बिना MBBS किए डॉक्टर, हम उससे इलाज नहीं करवाएंगे, एक इंजीनियर से बिल्डिंग नहीं बनवाएंगे जब तक कि वो नहीं है, इसी तरह कलाकार को, कला क्षेत्र को आप ऐसे मत सोचिए कि कोई भी आके कर ले, उसके लिए आपको ट्रेंड होना बहुत जरूरी, पढ़ाई पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप कुछ बनेंगे।
0: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी आपने एक संदेश युवा आने वाली लड़कियों को खासतौर से दिया है, जो केवल शारीरिक सौंदर्य के बल पर आना चाहती हैं और दूसरी चीजों को मद्देनजर नहीं रखते हुए काम करना चाहती हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा संदेश है कि किसी भी लाइन में जाने से पहले आपको वहां के लिए पढ़ना और गुनना बहुत जरूरी है खुद को। तो बॉम्बे टॉकीज में आज सीमा जी आपने विविध भारती के लिए अपना अमूल्य वक्त निकाला है, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: नहीं, विविध भारती तो जिंदगी में जब हम बच्चे थे तब से जुड़ा हुआ है हमसे, और जहां से जाएंगे तो विविध भारती सुनते हुए ही जाएंगे, कोई ना कोई गाना चलता ही रहेगा।
0: जी तो चलिए एक और गाना जान लेते हैं इस कार्यक्रम का।
1: जी एक गाना मजरू साहब का है, मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से, LP का म्यूजिक है, न जा अब कहीं न जा
0: दिल के सिवा।
1: दिल के सिवा
0: क्या बात।

0: बॉम्बे टॉकीज में आज दोस्तों हमारे साथ थी जानी मानी लेखिका, निर्माता और फिल्म निर्देशक सीमा कपूर। और अब बॉम्बे टॉकीज में आज इतना ही। मंदाकिनी जोशी चाहती हैं इजाजत, नमस्कार।
1: ये था जानी मानी लेखिका, निर्देशिका और निर्माता सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहायक किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: समाप्त करते हैं, नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार।

0: भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत में निजी क्षेत्र के पहले कक्षीय प्रक्षेपण यान विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि ये निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
1: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री जयशंकर ने कहा कि ये प्रमाण है कि जब भारत के युवाओं के नवाचार और उद्यमशीलता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक सुधारों का समर्थन मिलता है तो क्या हासिल किया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये अंतरिक्ष को अधिक सुलभ बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में परिवर्तनकारी अध्याय की शुरुआत है। श्री बिरला ने कहा कि विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र ने अपनी बढ़ती तकनीकी उत्कृष्टता, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का प्रदर्शन किया है। संसद का मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगॉव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। इसका उद्देश्य इंडिया पोस्ट के लिए ऐसा आधिकारिक शुभंकर तैयार करना है जो संगठन के विश्वास, विश्वसनीयता, सेवा और डिजिटल नवाचार जैसे मूल्यों का प्रभावी प्रतिनिधित्व करे। ये प्रतियोगिता सभी नागरिकों के लिए है। प्रतिभागियों को माईगॉव पोर्टल के माध्यम से मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच देर रात 2:30 अमरीका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यूफी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यूफी को चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे हिंदी समाचार आकाशवाणी के हमारे दिल्ली केंद्र से। एफएम बैंड के 103

तो आय श्रोता हूँ, शाम का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और एक बार फिर से मैं हूँ आपका रेडियो दोस्त रवि सचदेवा। श्रोताओं, आइए एक बार जान लेते हैं आज शाम की जो कार्यक्रम है जो हम आपको आपके सामने लेकर के आए हुए हैं, तो क्या क्या है हमारे आज के पिटारे में। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो 5:10 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम वंदन, ये भक्ति संगीत का कार्यक्रम है। 5:30 पर आप सुनाएंगे युवाओं का कार्यक्रम युवा वाणी, और आज इस कार्यक्रम के तहत हम बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई के संघर्ष के बलिदान दिवस के बारे में, क्योंकि आज लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस है। और इसके साथ ही साथ कुछ फिल्मी नगमे भी सुनेंगे। शाम के 6:00 आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत, 6:05 पर भोजपुरी समाचार बुलेटिन आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। 6:10 पर हम आपको सुनवाएंगे किसान भाइयों और बहनों का कार्यक्रम किसान वाणी, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। शाम के 6:40 पर आप सुनेंगे भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत। 7:15 पर आप सुनेंगे संध्याकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। इस कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे स्थानीय गतिविधियां, हिंदी फिल्म संगीत के कुछ कार्यक्रम, और 7:25 पर हम आपको सुनवाएंगे प्रादेशिक समाचार और समाचार के साथ ही जिले की हलचल एवं संदेश आकाशवाणी के हमारे पटना केंद्र से। 7:50 पर आप सुनेंगे फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद।

शाम के 8 बजे आप सुनेंगे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। 8:15 पर हम आपको सुनवाएंगे हेलो मनपसंद का दूसरा और आखिरी भाग। आप उसके पहले श्रोताओं, आप 7:50 पर हमारे हेलो मनपसंद का आप पहला भाग आप सुनेंगे, और इसके बाद 8 बजे हम आपको सुनवाएंगे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान, और 8:15 पर हेलो मनपसंद कार्यक्रम का दूसरा और आखिरी भाग हम आपको सुनवाएंगे। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के हमारी दिल्ली केंद्र से, और 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकधारा। ये भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम है, और 9:15 पर हम आपको सुनवाएंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल, और 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार आकाशवाणी के हमारे मुंबई केंद्र से। 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम रसरंग, और 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। 10:55 पर आप सुनेंगे अगले दिन का कार्यक्रम विवरण एवं मौसम पूर्वानुमान, और 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार, और 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार, और 11:10 पर आज की सभा समाप्त हो जाएगी। तो श्रोताओं, ये थी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की सूची। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त रवि सचदेवा। तो आइए श्रोताओं, अब हम आपको लिए चलते हैं भक्ति संगीत की दुनिया में, और सुनवाते हैं कुछ बेहतरीन भक्ति संगीत। और इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अनूप जलोटा की आवाज में गाए इस प्यारे से भजन के साथ।

अभी आप सुन रहे थे अनूप जलोटा की आवाज़ में ये प्यारा सा भजन। आइए श्रोताओं, एक और भजन हम आपको सुनवाते हैं एल नितेश कुमार की आवाज़ में, जिसे लिखा है गोविंद भारद्वाज ने और संगीत दिया है संजय राज नरिंदन ने।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अभी आप सुन रहे थे एल नितेश कुमार की आवाज में ये प्यारा सा भजन। आइए श्रोताओं, एक और भजन हम आपको सुनवाते हैं जिसे गाया है अनूप जलोटा ने। इसे लिखा है रवि चोपड़ा ने और संगीत अनूप जलोटा का है।

तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो घड़ी में शाम के 5:30 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में हम आपको सुनवाएंगे युवाओं का कार्यक्रम युवावाणी। तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के सासाराम केंद्र के साथ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो घड़ी में 5:30 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाते हैं युवाओं का कार्यक्रम युवावाणी। और इस कार्यक्रम के तहत हम आज आपसे बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, जो कि आज उनका बलिदान दिवस है। तो कुछ पुरानी यादें हम लोग ताज़ा करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हम आपसे रूबरू होंगे अपनी आवाज़ की बदौलत। तो आइए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं।

तो मेरे प्यारे श्रोताओं, एक बार फिर से मैं आपका रेडियो दोस्त रवि सचदेवा FM की 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो श्रोताओं, चलिए आज हम बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई के संघर्ष के बारे में, क्योंकि आज उनका बलिदान दिवस है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक कविता उनके बारे में मैं आप सभी के सामने लाना चाहूँगा, क्योंकि ये कविता सुनने के बाद इंसान पता नहीं कितना वो अपने आप को अंदर से एक बिल्कुल अपने आप को तरोताज़ा महसूस करता है और उनसे रानी लक्ष्मीबाई से अपने आप को कनेक्ट करता है। और इस कविता को आज से नहीं बल्कि न जाने कितने सालों से लोगों के बीच बहुत ज़्यादा सुनी और सुनाई गई है। तो मैं चाहता हूँ कि इस कविता को आपके सामने भी मैं सुनाऊं। रानी लक्ष्मीबाई। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसकी याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी के महाराष्ट्र मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। 1842 में 14 साल की लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराजा राजा गंगाधर राव निवालकर से हुआ था। शौर्य साहस व स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति रानी लक्ष्मीबाई जी को उनके बलिदान दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से और हम सभी रेडियो परिवार की ओर से सत सत नमन है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी ने देश में क्रांति भावना जागरूक की और भारत की नारी शक्ति का लोहा मनवाया। अपने असाधारण रण कौशल से रानी लक्ष्मीबाई जी ने बर्बर अंग्रेजी शासन के दांत खट्टे कर संपूर्ण विश्व में मां भारती के गौरव को पुनर्स्थापित किया। मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाली रानी लक्ष्मीबाई जी का त्याग व समर्पण सदैव हम सभी को प्रेरित करता रहता है। तो दोस्तों, अभी आगे और भी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि साथ ही साथ हम आपको कुछ हिंदी फिल्म संगीत के बेहतरीन नगमे भी सुनवाते चलें। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल और अमित कुमार ने। इसे लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारलाल का है।

तो श्रोताओं, हम बात कर रहे थे रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में उनकी महान वीरता के बारे में। तो दोस्तों, भारत की महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस प्रतिवर्ष 18 जून को मनाया जाता है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने 18 जून 1858 को ग्वालियर के निकट कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी। 1857 की क्रांति में जब अंग्रेजों ने झांसी पर अधिकार कर लिया था या अधिकार करने का प्रयास किया था, तब रानी लक्ष्मीबाई ने साहस और दृढ़ता के साथ उनका सामना किया। उनका प्रसिद्ध कथन, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। दोस्तों, इस कथन को जब भी हम सुनते हैं तो एक जोश भरने का काम करता है। इस लाइन, ये सिर्फ लाइन नहीं है बल्कि हमारे जीने का, हमारे हिंदुस्तानी होने का गर्व महसूस होता है। उन्होंने कितनी दृढ़ता के साथ इस लाइन को बोला होगा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, आज भी लोगों में देश प्रेम की भावना जगाता है। उन्होंने मातृभूमि के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राण के साथ साथ अपनी सारी चीजें न्यौछावर कर दिए। उनकी वीरता, त्याग और अदम्य साहस को याद करते हुए हर साल हमारा देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। तो दोस्तों, आइए एक और गीत हम आपको सुनवाते हैं।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: तो श्रोताओं, अभी हम बात कर रहे थे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। आइए श्रोताओं, अब हम आपको एक और टॉपिक पर लिए चलते हैं, और ये आज का टॉपिक है पर्यावरण के अनुकूल खान पान। श्रोताओं, आपने अक्सर सुना होगा, चाहे आपने टीवी पर देखा होगा ये कहते हुए कि पर्यावरण के अनुकूल हमें रहना चाहिए, हमें खान पान अपनाना चाहिए, ताकि इकोसिस्टम जो हमारा है वो स्वच्छ और तंदुरुस्त रह सके। तो पर्यावरण के अनुकूल यानी कि इको फ्रेंडली खान पान का मतलब क्या है, इसे हम क्या समझेंगे कि इको फ्रेंडली खान पान मतलब पर्यावरण के अनुकूल खान पान कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का, इन सारे प्रश्नों का आज हम आपको जवाब देंगे और आपके साथ अपनी बात शेयर करेंगे। श्रोताओं, पर्यावरण के अनुकूल खान पान का मतलब होता है ऐसा आहार जो आपके स्वास्थ्य के साथ साथ प्रकृति के लिए भी फायदेमंद होता है। इसके लिए मौसमी और स्थानीय रूप से उगाई गई ताज़ा सब्जियों, फलों और साबुत अनाजों को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह न सिर्फ कार्बन उत्सर्जन कम करता है बल्कि आपको रासायनिक मुक्त पोषण भी देता है। पर्यावरण और सेहत के अनुकूल खान पान अपनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान हमें बिल्कुल अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक हमारा इकोसिस्टम कभी दुरुस्त नहीं होगा और इसका असर हमारे और आपके ऊपर ही पड़ेगा। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपने डेली की लाइफ में, यानी कि रोज़ाना की जो हम अपनी एक्टिविटी करते हैं या खान पान अपनाते हैं, क्या किस किस चीज़ों को उसमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले लोकल प्रोड्यूस यानी स्थानीय उत्पाद। श्रोताओं, आप चाहे जिस भी राज्य के हों, चाहे आप बिहार के हों, आसाम के हों, महाराष्ट्र के हों, कहीं के भी आप हों, अपने राज्य बिहार या आसपास के क्षेत्रों में उगाई जाने वाली मौसमी सब्जियों और फलों का चयन हमें करना चाहिए, क्योंकि हम बिहार में रहते हैं। इससे क्या होता है कि दूर दराज से खाद्य पदार्थों को लाने में होने वाले जो परिवहन और ईंधन की खपत जो होती है वो कम हो जाती है, और अभी तो ये हालात हैं कि ईंधन के नाम सुनते ही जो है कि पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जो अभी स्थितियां भी हैं बहुत ही नाजुक बनी हुई हैं, जो ईरान और अमेरिका के बीच और इज़राइल के बीच जो युद्ध

हो रहा है, इसकी वजह से जो है कि बहुत ही मुश्किल हो गया है ईंधन को आसानी से अपने देश में लाना। तो इसीलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि जितना हो सके आप ईंधन का कम खपत करें। दूसरा है पौधे आधारित आहार, मतलब प्लांट बेस्ड डाइट। अपने दैनिक भोजन में हरी सब्जियां, फलियां जैसे दाल, मेवे और साबुत अनाज की मात्रा हमें बढ़ानी चाहिए। मांस उत्पादों की तुलना में पौधे आधारित भोजन का पर्यावरण पर काफ़ी कम प्रभाव पड़ता है। अब इस बात को आप ऐसे समझिए कि अगर आप, चाहे आप चिकन लाते हैं या फिर मटन लाते हैं, उसके लिए खस्सी या बकरे को मारा जाता है, तो उसके जो खून होते हैं या उसके जो चमड़ी होते हैं, वो कहीं ना कहीं उसको जो है कि फेंक दिया जाता है। इससे क्या होता है कि हमारा पर्यावरण दूषित होता है। भले धीरे धीरे दूषित हो रहा है, लेकिन बहुत काफ़ी दूषित हो चुका है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब आप प्लांट बेस्ड आप खाद्य पदार्थ लेते हैं, तो उससे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। पर्यावरण का नुकसान बिल्कुल ना के बराबर होता है। इसके अलावा कम प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ भी हैं, जैसे पैकेट बंद, डिब्बा बंद और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं और इनकी पैकेजिंग पर्यावरण में कचरा बढ़ाती है। आप कोई भी पैकेट बंद आप खाने पीने की चीज़ें लाते हैं मार्केट से या मॉल से, तो उसमें जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो तो आप यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो उसका पैकेट होता है उसको कहीं ना कहीं हम फेंक देते हैं। तो वो क्या होता है कि हमारे पर्यावरण पर उसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा पानी की बचत और सही हाइड्रेशन। श्रोताओं, आज के दौर में लगभग काफ़ी लोग आरओ या फिल्टर के बजाय पारंपरिक मटके के पानी का उपयोग करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। आरओ या फिल्टर किए पानी को तैयार करने में इससे कई गुना ज़्यादा पानी बर्बाद किया जाता है, क्योंकि मटके के पानी का पानी जो होता है यह प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है और बिजली की बचत करता है। इसके अलावा नारियल पानी या नींबू पानी जैसे प्राकृतिक पेय पदार्थ का भी हमें सेवन करना चाहिए। तो श्रोताओं, अब समय यानी टाइम हमें इजाज़त नहीं देता है आगे बढ़ने की, तो इसी के साथ हम आज का ये युवावाणी कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ FM बैंड के 103.4 MHz पर, आकाशवाणी के सासाराम केंद्र के साथ।

श्रोताओं, हमारे स्टूडियो घड़ी में शाम के 6 बज चुके हैं। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं एक भोजपुरी लोकगीत। इस गीत को गाया है भरत सिंह भारती और उनके साथी ने।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एपिमेंट के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब लीजिए सुनिए भोजपुरी समाचार बुलेटिन आकाशवाणी का हमारे पटना केंद्र से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब रहुआ डॉक्टर निखिल आनंद गिरी से भोजपुरी में समाचार सुने। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 के तहत पटना जॉय राइड के शुभारंभ कैले। मुख्यमंत्री बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के तीसरा दीक्षांत समारोह में भी शामिल भैले। वहां उपास भय लैकन के उपाधि और टॉपर छात्र छात्रन के स्वर्ण पदक भी दिले। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश कहले बाड़न कि नया परिसीमन के आधार पर पंचायत चुनाव करावल जाए। आकाशवाणी समाचार से खास बातचीत में श्री प्रकाश साफ कहले कि चुनाव टारे के कोनो फैसला नहीं खेली हल गए। वो कहले कि परिसीमन के काम चुनाव

आयोग के निर्देश में हुई और एकरा खातिर विभागीय तैयारी पूरा बा। परिसीमन के काम पूरा होते ही चुनाव के प्रक्रिया शुरू कर दिया जाए। योजना और विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा सब विधायक और विधान पार्षद लोगन के चिट्ठी लिख के विकास के काम में तेजी लावे के अपील कैले बारे। श्री कुशवाहा क्षेत्रीय विकास योजना के तहत सब सदस्यन से आपन आपन जिला के योजना खातिर जल्दी से अनुशंसा प्रस्ताव भेजे के कहले बारे। मंत्री कहले कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास के काम तेजी से कैल जा रहा बा और सब जिला के राशि उपलब्ध करा दिया गया बा। वो कहले कि सदस्य लोगन से अनुशंसा जल्दी मिलला पर योजना सबके क्रियान्वयन भी जल्दी हो सकी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज पटना पहुंचले। वो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के रणनीति पर चर्चा करे खातिर पार्टी के बूथ और मंडल स्तर के कार्यकर्ता लोगन के साथ बैठक करी हन। भाजपा के स्टार प्रचारकन के लिस्ट में उनकर नाम सबसे ऊपर बा। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री रामचंद्र प्रसाद दावा कैले बाड़े कि बांकीपुर में उम्मीदवार बदले के बाद भी जनता के पूरा साथ एनडीए के संगे बा। वो कहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाला एनडीए सरकार के काम पर जनता के पूरा भरोसा बा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल अता हुसनैन सेवानिवृत्त आज लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्य भर के खिलाड़ियों से संवाद कैलन। इस दौरान वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉम्पिटिशन में मेडल जीते वाला खिलाड़ी लोगन के सम्मानित भी कैलन। राज्यपाल कहलन कि अनुशासन और समर्पण कामयाबी के कुंजी बा। केंद्र सरकार कहली है कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से चल रहल वो वीडियो सब एकदम झूठ और फर्जी बा, जकरा में दावा कैल जा रहल बा कि पीएम एगो निवेश प्लेटफॉर्म के बढ़ावा देत बाड़न, जेमें 22,000 रुपया लगावे पर हर महीना 25,00,000 के कमाई के गारंटी दिया जाता। सरकारी एजेंसी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो बतौलस कि ई वीडियो AI माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनावल कैल बा। लोगन से ऐसन धोखाधड़ी और अनजान लिंक से बचे के अपील भी कैल गैल बा। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान दिल्ली में पत्रकार लोगन से बातचीत में कहले कि उनकर पार्टी एनडीए के एगो जरूरी हिस्सा बिया, बाकी संगठन के बढ़ावे खातिर पार्टी उत्तर प्रदेश पंजाब और उत्तराखंड से चुनाव मैदान में उतरी। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री पासवान बतौले कि गठबंधन के स्वरूप आ दोसर विषयन पर भी चर्चा करल जा रहल बा। राज्य सरकार दोपहिया और तिपहिया गाड़ी पर मोटर व्हीकल टैक्स बढ़ा देले बिया। परिवहन विभाग एकरा बारे में नोटिफिकेशन जारी कर देले बा। अब 1,00,000 रुपया तक के दोपहिया गाड़ी पर 15 साल खातिर 9% और 1,00,000 रुपया से बेसी के गाड़ी पर 10% टैक्स लागी। राज्य के ज्यादातर हिस्सा में मॉनसून के एक्टिव होकला से वर्षा के दौर जारी बा। मौसम विभाग अगला 24 घंटा में बेगूसराय गया जमुई और नवादा जिला में भारी से बहुत भारी बरखा के ऑरेंज अलर्ट जारी कैले बा। पटना अरवल बक्सर भोजपुर सहित कई जिलन में भारी वर्षा के संभावना बा। पिछला 24 घंटा में गया जिला के डोभी में सबसे ज्यादा 96.8 मिलीमीटर बरखा रिकॉर्ड कैल गई। पश्चिमी चंपारण जिला में बिजली के सप्लाई बढ़िया करे खातिर 3 गो नया ग्रिड लगाई जाए। स्थानीय सांसद और लोकसभा में भाजपा के सचेतक

पाए जाते हैं। पिट्ठलिंगी प्रजातियों के अंतर्गत पूसा जॉइंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, CO1, CO2, CO5, CO6 हैं। उभयलिंगी प्रजातियों में पूसा डिलीशियस, पूसा मजेस्टी, सूर्या, सनराइज, सोलो, ताइवान, CO3 हैं। पपीते का प्रसारण मुख्य रूप से बीज द्वारा किया जाता है। इसकी अच्छी उपज लेने के लिए प्रमाणित स्वस्थ बीजों का ही प्रयोग करना चाहिए। पपीते की नर्सरी लगाने का उचित समय मार्च से जून के मध्य का समय होता है। इस समय तैयार पौधे की रोपाई जुलाई अगस्त में की जाती है। एक हेक्टेयर भूमि में रोपाई हेतु डायोसियस प्रजाति के लिए 250 ग्राम से 300 ग्राम तक, डायनोसियस प्रजाति के लिए 500 ग्राम बीज पर्याप्त होते हैं। पपीते की नर्सरी लगाने हेतु जीवांश युक्त खाद डालकर भूमि को तैयार करते हैं। बीज बोने हेतु 4 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी तथा 10 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारियां तैयार करते हैं, जिसमें कतार से कतार की दूरी 10 सेंटीमीटर

एक मीटर चौड़ी तथा 10 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारियां तैयार करते हैं, जिसमें कतार से कतार की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हुए 3 सेंटीमीटर के अंतराल एवं 1 सेंटीमीटर की गहराई पर बीजों की बुवाई की जाती है। रोपाई के तुरंत बाद खर या पुआल से ढक देना चाहिए। सिंचाई पुआल ढकने के बाद करें। पौधे को गलका रोग से बचाने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या बोडो मिक्सर या मैंकोजेब का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। पपीता का बीज 7 से 15 दिन के भीतर जम जाते हैं। जमने के तुरंत बाद पुआल हटा देना चाहिए। पुआल हटाने के बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए। पपीते की नर्सरी पॉलीथीन की थैलियों में भी तैयार किया जाता है। इसके लिए 12x8 सेंटीमीटर आकार की 200 गेज मोटाई की पॉलीथीन की थैलियां उपयुक्त होती हैं। इसमें मिट्टी, खाद तथा बालू की बराबर मात्रा में मिलाकर भर देते हैं तथा 1 से 1.5 सेंटीमीटर गहराई में डायोसियस प्रजाति के 3 तथा गाइनोडायोसियस प्रजाति के 1 बीज की बुआई करते हैं। बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करनी चाहिए। पौधे उगने तक उचित देखभाल करें। पपीते के बाग लगाने के क्रम में वर्गाकार पद्धति में 2 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा के अंतर पर 7 सेंटीमीटर गहरा 7 सेंटीमीटर लंबा 7 सेंटीमीटर चौड़ाई के माप के गड्ढा तैयार करना चाहिए। यदि पपीते की सघन बागवानी के अंतर्गत पूषा नन्हा प्रजाति ली जा रही है तो 1.25x1.25 मीटर की दूरी पर गड्ढे बनाए जाने चाहिए। गड्ढे को 15 दिन तक खुला छोड़ दें। वर्षा शुरू होने के पूर्व गड्ढे के ऊपर की भुरभुरी मिट्टी में 20 किलो गोबर की सरी खाद, 1 किलो नीम की खल्ली, 1 केजी हड्डी की चूर्ण तथा 5 से 10 ग्राम फ्यूराडॉन या थीमेट 10G का मिश्रण मिलाकर गड्ढे को अच्छी तरह भर दें। जब पौधे नर्सरी में 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई के हो जाएं, तब अक्टूबर माह में पौधे को गड्ढे के बीचों बीच लगावें। डायोसियस किस्म के 3 पौधे तथा गाइनोडायोसियस किस्म का 1 पौधे प्रति गड्ढा लगाना चाहिए। पौधे को खेत में लग जाने के बाद समुचित देखभाल करने की आवश्यकता पड़ती है। डायोसियस प्रजातियों में फूल निकलने के पश्चात 10% नर पौधे को छोड़कर शेष नर पौधे को उखाड़कर फेंक देना चाहिए। समय समय पर पौधे के चारों ओर गोलाई में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए, जिससे भूमि खरपतवार मुक्त रहे। इसके लिए खरपतवार नाशी का भी प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी में नमी की कमी एवं अधिकता दोनों ही पपीते के लिए हानिकारक हैं। पपीते के अच्छे फलन एवं उपज हेतु मृदा में 40% नमी पर सिंचाई करना लाभकारी होता है। गर्मी में 1 सप्ताह के अंतराल पर तथा जाड़े के दिनों में 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। पपीते की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए प्रति पौधा 20 किलो कंपोस्ट, 1 किलो नीम की खल्ली, 1 किलो बोन मील, 250 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम फास्फोरस एवं 400-500 ग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। उर्वरक को 4 भागों में बांटकर जुलाई से अक्टूबर तक प्रत्येक माह के प्रारंभ में देना चाहिए। जिंक एवं बोरॉन की कमी होने पर जिंक सल्फेट 2 बार, बोरेक्स का 1 बार छिड़काव करना चाहिए। पपीता का पौधा 10 से 15 महीनों के अंदर फल देना प्रारंभ कर देता है। जब फलों पर पीली धारियां दिखने लगे तो फल तोड़ने लायक समझना चाहिए। उन्नतशील प्रजातियों में 30 से 35 फल लगते हैं, जिससे एक पौधे लगभग 70 से 80 किलोग्राम तक तथा प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन तक उपज प्राप्त होती है। पपीते पर लाल मकड़ी दिखने पर गंधक का छिड़काव करें। तना तथा जड़ सड़न रोग में पपीते के तने के निचले भाग पर जलीय चकत्ते बन जाते हैं, जो बाद में बढ़ जाते हैं और तने के चारों ओर फैल जाते हैं। भूमि से 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक

0: बोडो मिश्रण का लेप करना चाहिए जिससे ये रोग नहीं लगेंगे। पर्ण कुंचन रोग में पत्तियों को आकार छोटा हो जाता है एवं पत्तियां गुच्छेनुमा हो जाती हैं। इनकी सिराओं का रंग पीला पड़ जाता है। रिंग स्पॉट या ब्लैर रोग जिसमें पत्तियां कटी फटी तथा आकार में छोटी हो जाती हैं, हरे रंग के फफोले पत्तियों एवं फलों पर दिखती हैं, ऐसे पौधे को तुरंत उखाड़कर जला देना चाहिए। माहू कीट इस रोग के प्रसार में सहायक होता है जिसके नियंत्रण हेतु डाइमेथोएट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर का छिड़काव करना चाहिए। पर्ण कुंचन रोग का रोगजनक विषाणु तंबाकू विषाणु 16 है जिसका वाहक कीट सफेद मक्खी है। इमिडा क्लोरोपिड 1 मिलीलीटर प्रति लीटर का छिड़काव करना चाहिए। इस तरह किसान भाई सफल बागवानी करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं।
1: देखिए सीमा कुमारी जी कितना बढ़िया ढंग से पपीता के वैज्ञानिक खेती कैसे कर लो बारे में फरिया फरिया के बतौनी एक खातिर यहाँ के हमनी के धन्यवाद दे दिया जाए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद दिल जाओ सीमा कुमारी जी के।
1: जी जी
2: मनु भाई कार्यक्रम में आगे बढ़े से पहले कुछ संदेश बा
1: जी
2: हमने के सुन लिया जाओ।

0: ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं, जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतरवर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
1: सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है।
0: कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ये पर्यावरण के लिए ठीक

0: नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं।
1: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
2: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा जमीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
3: ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं, उन्हीं रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं।
4: ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है, साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है।
0: सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं।

0: देखें सुमन भाई, अभी हमनी के चर्चा संदेश सुनत रही जा, आई अपना चर्चा पमनी के कि आज हमनी के धान के खेती चारू ओर हो रहा बा, एक में श्री विधि से यदि खेती कल जा तो एक साथ अनेक लाभ ले सकत बनी जा। किसान भाई लोग भी यह विधि से खेती करके अपन आय बढ़ा सकत हैं। एक में का होला सुमन भाई कि कम बीज, कम पानी और कम लागत से आ पुराना पद्धति जो खेती होता ओकरा से दुगुना तिगुना उपज अधिक प्राप्त कर सकत बनी जा। तो हमनी के सबसे पहले श्री विधि से खेती करे खातिर बीज के चयन जरूर करे के चाहिए। बढ़िया बीज हुई तो बढ़िया पैदावार हुई। संकर और उन्नत प्रभेद जौन बा हमनी के लेवे के चाहिए। एकरा खातिर 2 किलो बीज जौन बा एक एकड़ खातिर काफी बा। बीज उपचार जौन बा हमनी के 2 या 3 ग्राम कार्बेंडाजिम या सीडोमोनास प्रति किलो बीज के हिसाब से घोल बना के ओकरा में 2 से 4 घंटा बीज के भिंगा के रखी। एक एकड़ धान खातिर रोपाई खातिर लगभग 4 से 5 किलो हमनी के बीज पर्याप्त होला। तो एक तरह से श्री विधि के जो पौधा बा सुमन भाई 8 से 14 दिन के या जब पत्ती 2 से 3 संख्या में हो जाए तब पौधा लगावे के चाहिए। बहुत छोट छोट पौधा ही श्री विधि में लगाओ जला। रोपाई खातिर बहुत अच्छा रहे, लाइन से लाइन के दूरी हमें 10 इंच रखे के चाहिए। पौधा से पौधा जौन बा 25 सेंटीमीटर ही दूरी पर रखी तब जाके अच्छा हुई। नर्सरी से पौधा के जो माटी सहित कबारो तबे तो जाके अच्छा रही आ सावधानी पूर्वक हुई। कहे कि बहुत कोमल आ बहुत नाजुक बीज होला, बहुत छोटा 14 दिन के बीज कितना बड़ा हुई।
1: एक गो
0: लगाई ओकरा एगो ही लगाई आ जड़ न टूटे। पौधा के ज़्यादा गहराई में भी मत रोपी। ये विधि में खेत में हमेशा पानी भरल ना रखी बल्कि पानी 0 से 1 इंच खाली रखी, बहुत कम पानी रखी, आवश्यकता अनुसार हल्का ओकरा में नमी रखी। खेत सुखाए के भी चाहिए, सूखेला और फिर पानी दे तो ओकरा में भरपूर ऑक्सीजन मिलेला। माटी जांच कराने के आधार पर जैविक कंपोस्ट हमनी के ओकरा में देवे के चाहिए। एक एकड़ खेत खातिर हमनी के 2 किलो बीज तो लेते बन जा। एक बाल्टी पानी में इतना नमक मिलाई कि एक अंडा या आलू पानी के सतह पर तैरे लगे और जब बीज के घोल में डाली तो बीज तैरे लगे। अगर से बाहर निकाल दें और नीचे बैठ जाए तो ओकरा के साफ पानी से धो ली। एक तरह से हमनी के नमक के घोल से भी हमनी के उपचारित कर सकत बनी जा। एकरा बाद हमनी के जौन गोबर के उपयोग करे वह प्रत्येक नर्सरी में 120 किलो सड़ल गोबर के खाद हमनी के डाल सकत हैं पहले ही बीज लगावे से पहले। एक तरह से अगर हमनी के श्री विधि से खेती करते हैं जा तो बहुत अच्छा लाभ ले सकत हैं जा। एकरा में निराई गुड़ाई और खाद कोनो बीटर के प्रयोग न करी। चौड़ाई दूर होके कर हमनी के खर पतवार निकाले के अधिक कोनो बीटर

0: मशीन जो चला सकत बढ़िया बढ़िया रही इससे कि दूरी 10 इंची पर बा 10 इंची के दूरी पर हमने के एकरा के हमने के खरपतवार निकाल सके एकरा से फसल में 10 से 15 दिन के अंतराल पर कम से कम 2 बार जरूर चला दी। एकरा साथ साथ हमने के ओकरा पर कीटनाशक के भी प्रयोग करे से पहले कीट के प्रयोग को देख लेवे के चाहिए तबे जाके कीटनाशक
1: देखे जाएगा में कौन कौन कीट के खतरा बा कौन कौन लागत आ।
0: देखिए सुमन भाई एगो पत्र भी आइल बा हमनी के
1: हाथ में ले ले बानी
0: इ पत्र आइल बा ग्राम दामोदरपुर पोस्टमडिया सासाराम से लिखियो लवान जा राम सज्जन सिंह अनिल सिंह भागवत सिंह नागाजी सन्यासी जी लिखत हैं कि हमनी के आम के बाग लगावे के सोचत हनी जा। आम के बाग लगावे खातिर माने हमनी के का करे के चाही एकरा के हमनी के कार्यक्रम तो हमेशा सुनत रही जा तो आम के बाग जौन बाटे रुआ लगा सकते हैं हमनी के तो हमेशा बतावत रही जा तो आम के बगीचा का बाग लगावे खातिर का करे के चाहिए सुमन भाई।
1: देखें आम के बाग लगावे खातिर हमनी के चाहिए कि पहले खोदल गई गड्ढा जौन बा जो लगावे के बाद वगैरह के मिट्टी के साथ जो अनुशंसित मात्रा बा खाद के उर्वरक के या कीटनाशी के वगैरह के दे के ऊपर से भर देवे के चाहिए
0: जी।
1: आ मौसम जो में आम के पौधा के रोपाई मने वो अनुकूल होके जो मौसम होके वो धूप में निखे लगाव के कि सूख जा गड्ढा के मिट्टी बैठ जाए पर पौधा के रोपण करे के चाहिए। कलमी आम खातिर 10x10 मीटर आ बीजू आम खातिर 12x12 मीटर के दूरी रखे के चाहिए। आम्रपाली किस्म के सघन बागवानी खातिर 2.5 से 2.5 मीटर के दूरी पर हमने के पौधा लगावल जाओ
0: जी।
1: आ परिपक्व वृक्ष में प्रति वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन 300 ग्राम फास्फोरस 700 ग्राम पोटास 80 से 100 किलोग्राम तक खूब बढ़िया से सड़ल जो गोबर बा
0: जी जी
1: ओकर प्रयोग कर ली तो ये बहुत बढ़िया आम के हमने के बगीचा तैयार हो जाए।
0: देखिए अगर समय भी चलता है जुलाई अगस्त में हमने बाग लगा सकते हैं बहुत बढ़िया समय चल रहा बा।
1: ये घड़ी देखिए आम मिलत भी बा क्वालिटी के आम मिलत है जौन बढ़िया जौन चाहत रही जौन आम लगावे के तौन भी मिल रहा बा तो बगीचा बहुत अच्छा से कल जा सकेला। तो अब देखिए हाँ आज के मौसम के मिजाज पर भी हमने के
0: एक नज़र रखल जा आज मौसम देखल जा का बा आज के मौसम
1: देखिए 7 मिलीमीटर वर्षा के संभावना रहल
0: जी।
1: अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहल अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 80% आ न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 60% रहल हवा के गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलल है। आ देखिए जो मौसम विभाग के जो पूर्वानुमान बा ओकरा में आसमान में घना बादल और जिला में एक कई जगहन पर तेज गरज के साथ वर्षा भी हो सके हो रहल बा हुई और आगे के जो चेतावनी भी बा कि हमनी के वर्षा के संभावना के देखे हमनी के कोनो खड़ा फसल के सिंचाई अभी ना करे के चाहिए खाद कीटनाशक के छिड़काव आसमान साफ रहला के बादे कर लिया।
0: तो देखिए समय तो एकदम सुमन भाई उरागिल चलत चलत के समय सभी श्रोता भाई लोगों के मनु भाई के तरफ से नमस्कार बा और साथे साथ सुमन भाई रोरो के नमस्कार बा
1: सब श्रोता भाई बहन के सुमन भाई की ओर से प्रणाम मनु भाई रोहो के नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों और बहनों का कार्यक्रम किसान वाणी, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब लीजिए सुनिए भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत, और इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म शराबी के इस प्यारे से गीत के साथ, जिसे गाया है कुमार सानू ने। इस गीत को लिखा है श्याम देहाती ने और संगीत लाल सिन्हा का है।

अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू की आवाज़ में शराबी फिल्म का ये प्यारा सा गीत। अब लीजिए सुनिए फिल्म निरहुआ मेल, इस फिल्म का ये प्यारा सा सॉन्ग जिसे गाया है मोहन राठौर ने, इसे लिखा है प्यारे लाल यादव ने और संगीत राजेश रजनीश का है।

अभी आप सुन रहे थे निरहुआ मिल फिल्म का ये प्यारा सा गीत मोहन राठौर की आवाज़ में। अब लीजिए सुनिए निरहुआ रिक्शा वाला फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसे गाया है उदित नारायण ने। इस गीत को लिखा है श्याम देहाती ने और संगीत राजेश रजनीश का है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सुन, सोचतानी की काहे न आपन बिजनेस बढ़ाएं।
2: तो रोकले के बा?
1: रोकले तो कोई नहीं खे, बाकी समझ में नहीं खे आवत की कैसे मदद मांगी।
2: हमरा से?
1: तुहरा से? तो बतावो।
2: आकाशवाणी बा ना, हम सुनले बानी की आकाशवाणी के नेटवर्क देश भर में फैलल बा।
1: तो ओकरा से हमरा की का फायदा बा?
2: फायदा बा, जौना शहर में चाही विज्ञापन के माध्यम से वही जगह पहुँच जाई।
1: तो इहो बता द कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे हुई?
2: बहुत आसान बा, हम बतावत बानी। नंबर लिखी 8700014242।
1: ओ, 8700014242।
2: हाँ।
1: तो बहिने फोन लगावत बानी 8700014242 पर।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही अभी आप सुन रहे थे ये अब लीजिए सुनिए फिल्म दरोगा बाबू आई लव यू फिल्म का ये प्यारा सा गीत श्रेया घोषाल और उदित नारायण की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है विनय बिहारी ने और संगीत लाल सिन्हा का है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म दरोगा बाबू आई लव यू का ये प्यारा सा गीत श्रेया घोषाल और उदित नारायण की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा था विनय बिहारी ने और संगीत लाल सिन्हा का था। अब लीजिए सुनिए फिल्म आपन भइल पराया, इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत जिसे गाया है सर्वेश मिश्रा और सुचिता ब्यास ने। इस गीत को लिखा है MD प्यासा ने और संगीत संतोष सुमन का है।

इस गीत के साथ ही भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब हम आपको लिए चलते हैं अगले कार्यक्रम की तरफ, जिसका नाम है गुड इवनिंग रोहतास। इस कार्यक्रम में अभी हम आपको सुनवाएंगे संध्याकालीन सूचना कार्यक्रम, जो कि स्थानीय गतिविधियां होंगी। उसके बाद हम आपको एक बेहतरीन फिल्म संगीत भी सुनवाएंगे। तो आज का ये गतिविधि है सासाराम से, शेरशाह मकबरा इनलेट नहर पर शीघ्र होगा काम, टेंडर प्रक्रिया पूरी। ऐतिहासिक शेरशाह मकबरा परिसर स्थित तालाब में स्वच्छ जल पहुंचाने की बहुप्रतीक्षित इनलेट नहर परियोजना को आखिरकार गति मिल ही गई। चार बार निविदा प्रकाशित होने के बावजूद विभिन्न कारणों से टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी, लेकिन अब पांचवीं बार जारी की गई निविदा के बाद टेंडर की कार्रवाई लगभग पूरी कर ली गई है।

रोहतास के संझौली में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली। और साथ ही साथ नोखा में भी श्रद्धा उत्साह के साथ निकली भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। शादी से इनकार करने पर प्रेमिका पहुंची प्रेमी के घर, ये न्यूज है रोहतास के डेहरी ऑन सोन का। बिक्रमगंज में नए एसडीएम दिलीप ने संभाला पदभार। बिक्रमगंज अनुमंडल के नए एसडीएम दिलीप कुमार ने शुक्रवार को अपना कार्यभार संभाल लिया और अनुमंडल कार्यालय में निवर्तमान एसडीएम प्रभात कुमार ने विधिवत रूप से उन्हें पदभार सौंपा। और बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं से जुड़े भू अर्जन के लंबित मामलों की समीक्षात्मक बैठक की। डीएम दीपक कुमार मिश्र तथा संबंधित विभागों के वरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। इसमें कहा गया कि भू अर्जन के लंबित मामलों को यथाशीघ्र निपटाना होगा। चावल की आपूर्ति 25 तक सुनिश्चित करने का निर्देश। जनता दरबार में पहुंचे 112 फरियादी। सासाराम डीएम दीपक कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय में स्थित डीआरडीए सभागार में सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम के तहत जिला जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंची 112 फरियादियों ने अपनी समस्याओं एवं शिकायतों के आवेदन प्रस्तुत किए। तो आइए श्रोताओं एक गीत सुन लेते हैं, जो कि फिल्म आदमी खिलौना है से लिया गया है।

ये अगला खबर है सासाराम से ही। शेरशाह मकबरा क्षेत्र के 7.5 मीटर में ऊंची इमारतों के निर्माण पर रोक। संरक्षित स्मारक के आसपास निर्धारित सीमा में निर्माण पर NMA ने जारी किया निर्देश। विश्व प्रसिद्ध शेरशाह सूरी मकबरे व उसके आसपास के क्षेत्र में नए निर्माण के साथ पुराने भवनों में बदलाव को लेकर राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत संरक्षित क्षेत्र में 7.5 मीटर से ऊंची इमारतों का निर्माण पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। साथ ही पुराने इमारतों के बदलाव को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किया गया है ताकि मकबरे की पहचान को सुरक्षित रखा जा सके। तो श्रोताओं, ये थी आज की सूचना और इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM की 103.4 MHz पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और उसके बाद जिले की हलचल आकाशवाणी के हमारे पटना केंद्र से।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: अरे, मेरा वोटर आई कार्ड घर पर रह गया, अब क्या मैं मतदान नहीं कर पाऊंगा?
2: क्यों नहीं, पहचान के और भी कई मान्य विकल्प है। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त बैंक या डाकघर पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, पैन कार्ड, सेवा पहचान पत्र, एमपीआर स्मार्ट कार्ड, सांसद, विधायक, एमएलसी की आधिकारिक पहचान पत्र, आयुष्मान भारत या श्रम मंत्रालय योजनाओं के स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड तथा यूडीआईडी कार्ड दिखाकर भी मतदान किया जा सकता है।
1: मतलब वोट जरूर दे सकता हूँ?
3: बिल्कुल, पहचान पत्र की वजह से आपका वोट नहीं छूटना चाहिए।
4: 182 बांकीपुर विधानसभा उप निर्वाचन 2026 में मतदान तिथि है 30 जुलाई 2026। मतदान के दिन मान्य पहचान दस्तावेज साथ रखें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
5: कोई मतदाता ना छूटे।
6: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।
7: जी नमस्कार, मैं सम्राट चौधरी बोल रहा हूँ। राज्य में अग्नि कांडों से होने वाली जान माल की क्षति अत्यंत दुखद और अपूर्णीय है। यदि हम सभी सतर्क रहें और आवश्यक सावधानियों का पालन करें तो इन घटनाओं को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। बिहार अग्निशमन सेवा जनहित में निरंतर जन जागरूकता अभियान के माध्यम से आप सभी के अग्नि सुरक्षा एवं निवारण के प्रति जागरूक कर रही है। यह सेवा राज्य के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा हेतु सदैव तत्पर है। मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि बिहार

0: अग्निशमन सेवा द्वारा किया जा रहा सुझाव का पालन करें। आपकी सजगता और सहयोग से हम राज्य में अग्निकांडों को रोक सकते हैं और जान माल की क्षति को न्यूनतम कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर सुरक्षित बिहार का निर्माण करें। जय बिहार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार हेली टूरिज्म सेवा आम लोगों के लिए आज से शुरू। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना जॉय राइड का शुभारंभ किया। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा, पंचायत चुनाव टाला नहीं गया, नए परिसीमन के आधार पर कराए जाएंगे चुनाव। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार का शोर बढ़ा। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने एनडीए प्रत्याशी के लिए किया जनसंपर्क। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बेगूसराय, गया, जमुई और नवादा जिले में अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 के तहत पटना जॉय राइड का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
1: राज्य में पर्यटक अब हेली टूरिज्म का आनंद ले सकेंगे, इसकी शुरुआत हो गई है। योजना के तहत मात्र 2100 रुपए में हेलीकॉप्टर से 10 मिनट तक पटना शहर का हवाई भ्रमण कराया जा रहा है। पटना जॉयराइड के दौरान उन्हें राजधानी का मनमोहक बर्ड्स आई व्यू देखने का अवसर मिलेगा। यह सुविधा फिलहाल प्रत्येक शनिवार और रविवार को उपलब्ध होगी। वहीं बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा योजना के तहत पटना से राजगीर, पटना से वाल्मीकि नगर और पटना से कैमूर स्थित मां मुंडेश्वरी मंदिर तक भी हेलीकॉप्टर राइड उपलब्ध कराई जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: इधर मुख्यमंत्री श्री चौधरी बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुए। उन्होंने विश्वविद्यालय के सफल विद्यार्थियों को उपाधियां और टॉपर छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किए। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि

0: नए परिसीमन के आधार पर पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री प्रकाश ने स्पष्ट किया है कि विभाग ने चुनाव टालने का कोई निर्णय नहीं लिया। उन्होंने कहा कि परिसीमन का कार्य पूरा होते ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
1: पंचायत चुनाव को टालने के लिए कोई अभी निर्णय नहीं हुआ है। अभी बस निर्णय हुआ है कि परिसीमन कराया जाएगा पंचायतों का 2011 की जनगणना के आधार पर, और उसके उपरांत फिर चुनाव कराए जाएंगे। परिसीमन का काम पहले करना है, अगर समय पर परिसीमन का काम हो पाता है तो पूरी कोशिश की जाएगी कि चुनाव भी सही समय पर कराए जाए।
0: श्री प्रकाश ने कहा कि परिसीमन का कार्य चुनाव आयोग के दिशा निर्देशन में होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभागीय तैयारी पूरी कर ली गई है।
1: जो भी काम परिसीमन से संबंधित हो, तमाम काम निर्वाचन आयोग के निर्देशन में किया जाता है। अभी जो बिहार पंचायत राज अधिनियम में जो मानक तय किए गए हैं, 5,000 की जनसंख्या पर पंचायत समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण किया जाता है। साथ ही साथ जिला परिषद के लिए 50,000 की जनसंख्या पे किया जाता है, ग्राम पंचायत के लिए 7,000 और ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 500 की जनसंख्या पे क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। क्योंकि पिछले परिसीमन का काम 1991 की जनगणना के हिसाब से हुआ था, तो इन 20 में जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है, इस कारण से परिसीमन करने की जरूरत है। तो परिसीमन का काम किया जाएगा, परिसीमन के उपरांत निर्वाचन आयोग के द्वारा आरक्षण के रोस्टर के ऊपर काम किया जाएगा और फाइनली फिर उसके बाद चुनाव कराए जाएंगे।
0: योजना एवं विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने सभी विधायकों और विधान पार्षदों को पत्र लिखकर विकास कार्यों में तेजी लाने की अपील की है। श्री कुशवाहा ने विधानमंडल सदस्यों से क्षेत्रीय विकास योजनाओं के तहत अपने अपने जिले की योजनाओं को लेकर अनुशंसा प्रस्ताव भेजने को कहा है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं और सभी जिलों को राशि उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि सदस्यों से अनुशंसा शीघ्र प्राप्त होने पर योजनाओं का क्रियान्वयन भी जल्द हो सकेगा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार का शोर जोर पकड़ रहा है। एनडीए, राजद और जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी, नेता और समर्थक लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। एनडीए की ओर से आज कदमकुआं स्थित साहित्य सम्मेलन परिसर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, सांसद रविशंकर प्रसाद, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी समेत एनडीए घटक दलों के प्रमुख नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी आज पटना पहुंचने के बाद जनसंपर्क में जुट गए। श्री नवीन पार्टी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उपचुनाव को लेकर रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। भाजपा अध्यक्ष श्री नवीन मंडल अध्यक्षों और पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। राजद प्रत्याशी रेखा कुमारी के समर्थन में पार्टी के कई नेता प्रचार कार्य में जुटे हुए हैं। इधर जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर चुनाव चिन्ह स्कूल बस्ता मिलने के बाद ताबड़तोड़ प्रचार अभियान में लग गए हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने दावा किया है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी बदले जाने के बावजूद जनता का समर्थन एनडीए के साथ है। उन्होंने कहा कि लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के काम पर भरोसा है।
2: देखिए, प्रत्याशी बदल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की जनता जो हमारे नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है ना, उनके गारंटी पर विश्वास करती है। और ये बांकीपुर विधानसभा हमारे जो केंद्र के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माने नितिन नवीन जी, उनका ये जमीन है और ये इनका जमीन उतना मजबूत है कि इन पर किसी के भी दाल गलने वाली नहीं है। अगर कोई दावा करते हैं तो ये हवा हवा ही दावा करते हैं।
0: लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि उनकी पार्टी एनडीए का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन संगठन विस्तार के लिए पार्टी उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में चुनाव मैदान में उतरेगी। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री पासवान ने कहा कि गठबंधन के स्वरूप और अन्य विषयों को लेकर चर्चा की जा रही है।
3: देखिए, मेरा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ, मैं एनडीए का एक मजबूत हिस्सा राष्ट्रीय स्तर पर है। हम लोगों ने देश भर के चुनाव एक साथ लड़े, जहां से मैंने बिहार में 5 सीटों पे मैंने चुनाव लड़ा। बिहार विधानसभा का चुनाव हम लोगों ने साथ मिलकर लड़ा। मैं जब पार्टी के विस्तार की सोच रखता हूं, मेरे नेता, मेरे पिता झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार को हमेशा एक सांस में उन्होंने देखने का काम किया। ऐसे में दर्शाता है कि उनके लिए उत्तर प्रदेश भी उतना ही महत्वपूर्ण था। और आज की तारीख में जब मेरी पार्टी के विस्तार की सोच रखती है, अलग अलग राज्यों में जब हम लोग अपने फुटप्रिंट्स को गहराने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हम लोग के लिए हो जाता है।

0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। भारत का आर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज दोपहर 12:05 पर प्रक्षेपित किया गया। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है। एक रिपोर्ट।
4: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि के लिए स्काई रूट एरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
5: भारत और पूरी टीम, बहुत बहुत बधाई। आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने विक्रम 1 की टीम को उनसे मिलने का भी निमंत्रण दिया है। इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैज्ञानिक और पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की वैज्ञानिक क्षमता, नवाचार और निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती शक्ति का सशक्त प्रमाण है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने आज लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्य के खिलाड़ियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले कई खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। राज्यपाल ने कहा कि अनुशासन और समर्पण कामयाबी की कुंजी है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 26 जुलाई को आयोजित होने वाली एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तिथि की घोषणा शीघ्र की जाएगी। मधेपुरा जिले के गमहरिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत जीवजपुर में जागीर टोला उत्क्रमित मध्य विद्यालय में मध्याह्न भोजन खाने से लगभग 35 बच्चे बीमार पड़ गए। इन सभी को सिंहेश्वर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। पश्चिम चंपारण जिले में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 3 नए ग्रिड की स्थापना की जाएगी। स्थानीय सांसद सह लोकसभा में भाजपा के सचेतक संजय जायसवाल ने बताया कि ऊर्जा विभाग के प्रतिनिधियों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को सहमति मिली है।

0: आज यहां विद्युत उपभोक्ताओं को लेकर के बैठक थी। हम लोगों ने 3 नए ग्रिड के लिए भी अनुशंसा किया है और इसके साथ जिले के सभी किसानों से हम लोग अनुरोध करेंगे कि कृपया कर किसान अपने बिजली के लिए आवेदन करें। कुल मिला के पूरे चंपारण में केवल 700 लोगों का आवेदन पेंडिंग है, जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं हम बिजली लेने में पीछे हो रहे हैं। कृपया कर सभी लोग कंप्यूटर पर अप्लाई करें जिससे कि उनको मिल सके।
1: राज्य के अधिकांश हिस्सों में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बेगूसराय, गया, जमुई और नवादा जिले में कई स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इस अवधि में पटना, अरवल, बक्सर, भोजपुर, किशनगंज, नालंदा, रोहतास और शेखपुरा जिले में भारी बारिश की संभावना जताई है।
2: राज्य के अधिकांश स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के सभी जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के बेगूसराय, गया, जमुई और नवादा जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अरवल, बक्सर, भोजपुर, जहानाबाद, किशनगंज, नालंदा, पटना, रोहतास एवं शेखपुरा जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
1: बेगूसराय जिले के विभिन्न स्कूलों में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान अब तक 1 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। मुंगेर जिले में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर टीबी की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार इस दौरान संभावित लक्षणों वाले 30 लोगों की पहचान की गई। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के बिशनपुर मकिया स्थित खिरोई नदी में डूबने से एक 14 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। कैमूर जिले में कुदरा और भभुआ थाने की पुलिस ने एक चारपहिया वाहन और पिकअप से 1283 लीटर शराब जब्त की है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मद्य निषेध विभाग की टीम ने मुंगेर जिले के नवागढ़ी एनएच के पास जांच के दौरान एक पिकअप वाहन से 24 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार हेली टूरिज्म सेवा आम लोगों के लिए आज से शुरू। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना जॉयराइड का शुभारंभ किया। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा, पंचायत चुनाव टाला नहीं गया, नए परिसीमन के आधार पर कराए जाएंगे चुनाव। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार का शोर बढ़ा, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने एनडीए प्रत्याशी के लिए किया जनसंपर्क। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बेगूसराय, गया, जमुई और नवादा जिले में अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: वाह, यहाँ ठंडा पानी है
4: और देखिए साफ सुथरा शौचालय भी।
5: मेरे लिए रैंप और व्हील चेयर की व्यवस्था भी है। वाह,
6: दिशा सूचक इतने स्पष्ट हैं कि केंद्र ढूंढना बिल्कुल आसान हो गया। हेल्प डेस्क पर हर जानकारी तुरंत मिल रही है।
7: वाह, मोबाइल रखने की व्यवस्था, छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र, शाम तक रोशनी की सुविधा, सब कुछ है।
8: और ये पोल वॉलंटियर्स कितना सहयोग कर रहे हैं।
9: 182 बांकीपुर विधानसभा उपनिर्वाचन 2026 में आपका मतदान अनुभव होगा सुगम, सहज और सुरक्षित। मतदान केंद्रों पर भूतल पर मतदान केंद्र, ठंडी पेयजल, स्वच्छ शौचालय, स्पष्ट संकेतक, रैंप, व्हीलचेयर, हेल्प डेस्क, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर, प्रकाश व्यवस्था, छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र, पूल वॉलंटियर्स और मोबाइल रखने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। 30 जुलाई 2026 को घर से निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।
10: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।

0: Akashwani at 90.
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पटना जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष रंजन।
2: पटना जिले के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शास्त्री नगर स्थित राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय से बिहार स्कूल लाइव क्लासेस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए राज्य स्तर के अनुभवी और विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा सीधे ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलाई जा रही है। पहले चरण में जिले के 150 सरकारी स्कूलों को इस योजना से जोड़ा गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पटना के 10 मॉडल स्कूलों में इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क जेईई और नीट कोचिंग की भी शुरुआत। मुख्यमंत्री ने इसे बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में नए युग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
3: और अगले कुछ दिनों में आपको दिखेगा कई चीजों का काम सरकार कर रही है, चाहे वो डिग्री कॉलेज खोलने की व्यवस्था हो, 500-3400 ब्लॉक में मॉडल स्कूल खोलने का काम किया जा रहा है, बिहार लाइव हमारे कोचिंग सेंटर जो हमारे सरकारी स्कूल में चलेंगे उसकी व्यवस्था की जा रही है।
2: बांकी पूर्व विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभिन्न दलों के नेता और कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में जुटे हैं और लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस सीट पर आगामी 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना के साथ चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव मैदान में कुल 25 प्रत्याशी शेष रह गए हैं। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के नीरज कुमार सिन्हा, राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता और जनसुराज के प्रशांत किशोर के बीच माना जा रहा है। वहीं चुनाव को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर का विस्तार हो गया है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव के साथ मलाही पकड़ी से भूतनाथ तक मेट्रो यात्रा भी की। उद्घाटन के साथ ही न्यू ISBT, जीरो माइल, भूतनाथ रोड और मलाही पकड़ी स्टेशनों के बीच मेट्रो सेवा शुरू हो गई है। इससे प्रायोरिटी कॉरिडोर की परिचालन लंबाई बढ़कर 6.5 किलोमीटर हो गई। एम्स पटना में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं में संवाद विषय पर राष्ट्रीय शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी मुख्य अतिथि तथा डॉक्टर अभिजीत सेठ विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। देश भर से 700 से अधिक चिकित्सा शिक्षक, विशेषज्ञ चिकित्सक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षु और स्वास्थ्य कर्मी इसमें शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावी संवाद मरीज और चिकित्सक के बीच विश्वास की सबसे मजबूत कड़ी है तथा बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। जिले में खरीफ सीजन के तहत धान की रोपाई का कार्य तेजी से जारी है। हाल के दिनों में सक्रिय मानसून और कुछ दिन के हुई वर्षा के बाद फुलवारी शरीफ, नौबतपुर, संपतचक, पालीगंज और बेहटा सहित कई क्षेत्रों में किसानों ने रोपाई का काम तेज कर दिया है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना में आयोजित खरीफ सीजन की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को किसानों के लिए हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। राजधानी पटना में गिग वर्कर्स और डिलीवरी कर्मियों की सुविधा के लिए गांधी मैदान और आयकर गोलंबर के पास अत्याधुनिक वातानुकूलित लाउंज तैयार किए गए हैं। इन लाउंज में आरामदायक बैठने की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, मोबाइल चार्जिंग सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही पटना देश का तीसरा शहर बन गया है जहां गिग वर्कर्स के लिए इस तरह की विशेष सुविधा विकसित की गई है। आपातकाल की वर्षगांठ पर जिले भर में संविधान हत्या दिवस के रूप में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पटना में आयोजित मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने आपातकाल के दौरान पटना से शुरू हुए लोकतांत्रिक आंदोलन को याद किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हुए इस संघर्ष में उनका व्यक्तिगत जुड़ाव रहा है।
4: वो 5 जून 1974 को मैं भी उसमें शामिल था, मैट्रिक का विद्यार्थी हुआ करता था, मुझे याद है, जब जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और हम सब लोग उस समय की गफूर सरकार को बर्खास्त करने के लिए गवर्नर RD भंडारे को एक ज्ञापन देने के लिए गए थे, वो 5 जून 1974 और वो 18 मार्च 1974 ये दोनों दिन नींव के पत्थर साबित हुए इस आंदोलन को चलाने के लिए, ये हमको समझ।
2: बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित स्पोर्ट्स समर कैंप 2026 का समापन हो गया। शिविर में 775 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, योग, शतरंज, स्केटिंग, खो खो, तीरंदाजी और ताइक्वांडो सहित विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही बच्चों को संतुलित आहार, पोषण और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में भी जानकारी दी गई।
1: अभी आप सुन रहे थे पटना जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता

0: आशीष रंजन, आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार और समाचार के बाद जिले की हलचल आकाशवाणी के हमारे पटना केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है।

फ्रीक्वेंट के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूं आपका रेडियो दोस्त रवि सचदेवा आकाशवाणी के एफएम बैंड की 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात के 7:53 हो चुके हैं और हम आपको अभी कुछ ही पलों में सुनवाने जा रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम हेलो मनपसंद। श्रोताओं, एक संदेश मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप में से किसी के पास यहाँ का अगर वो नंबर नहीं है जिस पर आप कॉल करके अपने फरमाइश के गीत सुनते हैं या फिर अपने घर वालों को भी सुनाते हैं, तो फटाफट वो नंबर नोट कर लें। वो नंबर है 0618422130। यहाँ दोस्तों वो नंबर है 0618422130। आप इस नंबर पे कॉल करके आप अपने मनपसंद गीत को आप सुन सकते हैं, अपने मनपसंद गीत को आप नोट करा सकते हैं और हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हेलो मनपसंद बजाया जाएगा।

0: स्वागत है आप सभी का हमारे इस फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम में, जिसका नाम है हेलो मनपसंद। श्रोताओ, मैं हूँ आपका रेडियो दोस्त लाल बहादुर। नमस्कार। फोन की घंटी बजनी शुरू हो गई है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रोग्राम हेलो मनपसंद। हेलो मनपसंद
1: जी। हेलो मनपसंद,
0: कौन बोल रहे हैं? स्वागत है आपका।
1: मैं सराबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोहबा जिला समस्तीपुर से भाई कारी राय कारी बोल रहा हूँ।
0: कारी राय कारी जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं, आपकी चिट्ठी भी।
1: जी सर, हम खास करके आप ही से बात करने के लिए सर, क्या आप जरूर होंगे इस कार्यक्रम में।
0: चलिए शुक्रिया, क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: आज हमको सुना दीजिए सर, आपकी कसम ये गाना है किशोर कुमार जी गाए हैं, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मका और सिर नहीं आते।
0: ये तो हकीकत बात है, बहुत ही
1: पदम की है कि जो गुजरेगा ही जो बात, कितनी अच्छी बात है कि देखिए आप हमसे कितनी दूर है, फिर भी हमारी आपकी कितनी प्यार भरा दिल है, आप मुझे बहुत याद करते हैं।
0: चलिए धन्यवाद, शुक्रिया
1: जी जी जी।
0: तो चलिए कारी राय कारी जी, हम आपको सुनवा रहे हैं आप ही की पसंद पर आपकी कसम फिल्म का ये गीत।

तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हेलो मनपसंद का ये पहला भाग। इसका दूसरा भाग हम आपको सुनवाएंगे इस कार्यक्रम के बाद। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफ एम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो घड़ी में रात के 8 बज चुके हैं। अब लीजिए सुनिए हमारा प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आर्किड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
1: उड़ान उड़ान उड़ान कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से राजेश आ गया आप सबों के बीच में। जी हाँ, उड़ान करियर से संबंधित बातें होती हैं, खास करके बीसी और बीबीए के लिए। लगातार लगातार हर साल इसी समय आते हैं और पूरे बिहार के युवाओं को प्रेरित करते हैं एक ऐसा कोर्स चुनने के लिए, हाँ, जिससे उनकी जिंदगी में आगे बढ़ पाना बहुत आसान हो जाए। और ये कोर्स है बीसीए और बीबीए का, और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं आर्किड बिजनेस कॉलेज। आर्किड बिजनेस कॉलेज 27 वर्षों से जो बीसी और बीबीए के क्षेत्र में लगा हुआ है, उनकी तरफ से ये पटना के आर्य कुमार रोड, राजेंद्र नगर पटना में है और सगुना मोड़ पटना में है। पूरे बिहार और बाहर के बच्चे आते हैं, अपना करियर बनाते हैं बीसीए और बीबीए हाँ में, और आगे बढ़ जाते हैं। एक नंबर हम आपको बताते हैं, अगर आप बीसीए और बीबीए या करियर की प्लानिंग कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कोर्स चुने, तो राजेश की बात मानिए। हम नंबर देते हैं, नंबर नोट कीजिए, नंबर है 7520800800, 7520800800, यानी 7520800800। इस नंबर को डायल कीजिए और बातचीत कीजिए आर्किड बिजनेस कॉलेज से। पिछले एपिसोड में हमने आर्किड विजिट किया था, आर्किड गए थे वहाँ के युवा साथियों से जो बीसी और बीबीए कर रहे हैं, उनसे बातचीत की थी और हमने वो सारी चीज़ें आपके पास भेजा था इस उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से। जी हाँ, बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया आई है उस प्रोग्राम के बाद। बहुतों ने कहा है, युवाओं ने, कि एक भरोसा बना और हमें अच्छा लगा और हम विचार कर रहे हैं। बहरहाल, ये मामला आपके करियर का है, आपकी जिंदगी का है। हम कह सकते हैं, कहते रहेंगे, डिसीजन लेना आपका काम है। और हम बार बार एक ही चीज राजेश कहता है, टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, इसे भूलने का नहीं। और बीसी और बीबीए की पढ़ाई बहुत ही उम्दा है। आज हमारे साथ स्टूडेंट्स भी हैं और डायरेक्टर भी हैं आर्किड बिजनेस कॉलेज से। एक सीधा सपाट सा सवाल हमने उनसे पूछा जब वो कार्यक्रम में आए। पहले स्वागत है आपका आशीष आदर्श जी हमारे इस कार्यक्रम में। और एक सीधा सा सवाल आपसे है कि आर्किड बिजनेस कॉलेज को कोई भी बिहार का युवा या कहीं का युवा बीसी और बीबीए के लिए क्यों चुने?
2: जी बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि हमारा संस्थान पहला संस्थान है बिहार का जिसने वोकेशनल कोर्सेज, टेक्निकल कोर्सेज बिहार में शुरू किया। बीसीए और बीबीए जैसे कोर्सेज को कोई नहीं जानता था उसके पहले। बात 1998 की है, उस समय में हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को लाया और ला करके पहला संस्थान बना ये बिहार का जिसने बीसीए और बीबीए जैसे संस्थान पाठ्यक्रम शुरू किए। पहले हमारा संस्थान मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत एफिलिएटेड था, संबद्ध था। बाद में 2018 में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय नई बनी और मगध विश्वविद्यालय के जितने भी कॉलेज थे जो पटना के, वो सब पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में स्थानांतरित हो गए और हम भी उसी में हैं। और आपको मैं बता दूं, मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि बिहार का यह एकमात्र ऐसा संस्थान है जो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से बीसीए बीबीए पाठ्यक्रमों के लिए स्थायी मान्यता प्राप्त है। आपने कई बार देखा होगा, कई कॉलेजेस हैं पटना के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां आए दिन हल्ला हंगामा होता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो इन सब बातों को लेकर के एक आर्किड बिजनेस कॉलेज की एक अलग पहचान है, एक अलग विश्वसनीयता है और बिल्कुल अलग तरीके से ये काम करता है। और यही कारण है कि आज हमारे यहाँ 10,000 से अधिक स्टूडेंट सफल।
3: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
4: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
3: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
4: आर्किड बिजनेस कॉलेज, जहाँ से बीसीए या बीबीए कोर्सेज कर सकती हो।
3: फिर तो आर्किड से ही बीसीए या बीबीए करना सेफ है।
5: आर्किड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड़ पटना। कॉल करें 7520800800, याद रखें 7520800800।
1: आपने जो बताया आशीष जी, पूरे बिहार के बच्चों ने सुना कि स्थायी मान्यता प्राप्त एकमात्र संस्थान है आपका बीसी और बीबीए के लिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से, और लगभग 27 वर्षों से आप लगातार इसमें लगे हुए हैं। लेकिन एक ये भी बात है, किसी भी संस्थान के निदेशक से, लोगों से बात कीजिए तो अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन एक्चुअल स्थिति कैसे पता चलेगी आर्किड बिजनेस कॉलेज के बारे में, ये हमें आप बताइए एकदम बेबाकी से।
2: देखिए, एक बात बताता हूँ, आप कोई भी संस्थान का विज्ञापन उठा के देखिए, हर संस्थान अपने आप को हमेशा बढ़ा चढ़ा कर पेश करेगा। आपको यह देखना है कि उस संस्थान के जो पहले के जो

0: छात्र हैं, उनका क्या मंतव्य है? अगर आपको कोई वैसा स्टूडेंट मिल जाए जो आर्केड बिजनेस कॉलेज से पढ़ा हो, आप जरा उससे बात कीजिए, आपको पता चलेगा कि वो किस प्रकार का स्टूडेंट है, क्या उसको पढ़ाई की कैसी उसको चीजें मिली, नंबर वन। नंबर टू, आपको ये देखना है कि जिस ध्येय से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने BCA किया या BBA किया, उसके बाद आपको जॉब मिलता है कि नहीं मिलता, परसेंटेज कितना है। और हम ये बात आश्वस्त करते हैं हर स्टूडेंट को कि आपके लिए कम से कम 10 कंपनी का हम इन कैंपस इंटरव्यू लेकर के आएंगे, कहीं ना कहीं तो आपका सिलेक्शन होगा ही। बस आपको अपनी क्लासेस में अपनी जो अटेंडेंस रखनी है और अपने कोर्स के ऊपर में पूरा फोकस करना है, बाकी जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं।
1: ये कहना है आर्केड बिजनेस कॉलेज के डायरेक्टर आशीष आदर्श जी का। आशीष जी लगातार 27 वर्षों से युवाओं के साथ काम कर रहे हैं और BCA और BBA को लेकर के, और रोजगार की बात आपने सुन ली ही, कम से कम 10 कंपनियां आती हैं इंटरव्यू के लिए हर एक लड़के के पास। बहरहाल पढ़ाई तो लेकिन आपको करनी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि आप क्लास कीजिए, अटेंडेंस पूरा कीजिए। ये भी स्वीकार किया कि हर इंस्टीट्यूशन अपने आप को बढ़ा चढ़ा के करता है, लेकिन हकीकत सीनियर स्टूडेंट से या पढ़ने वाले लड़कों से बातचीत कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसीलिए इसी बात को मानते हुए हमसे जब बातचीत चल रही थी, मैं गया था आर्केड बिजनेस कॉलेज आर्य कुमार रोड में और हमने युवाओं से बात की, जिसमें से कुछ युवाओं की बातें हमने पिछले एपिसोड में सुनवाई थी और आज भी हमको सुनवाएंगे। फिलहाल जिन्होंने देर से इस कार्यक्रम को ट्यून किया है, उनको बता दें कि कार्यक्रम चल रहा है उड़ान। उड़ान कार्यक्रम इसी समय हर वर्ष आर्केड बिजनेस कॉलेज की मदद से राजेश लेकर आता है युवा साथियों को दिशा निर्देशित करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए कि भैया आपके लिए ये करियर भी हो सकता है, अगर आप कर लेते हैं तो आपको फायदा ही फायदा होगा। और वो कोर्स है BCA और BBA का, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलते कि आप यहीं ले लीजिए। बस ज्यादा जानकारी के लिए डायल कर सकते हैं आर्केड बिजनेस कॉलेज का ये नंबर 7520800800 7520800800। BCA और BBA एक भरोसेमंद कोर्स है। आइए आर्केड बिजनेस कॉलेज में जो एक विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अपना नाम बताइए।
2: नमस्कार, मेरा नाम कीर्ति रंजन है, मैं BCA सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ और मैं आर्केड बिजनेस कॉलेज से BCA कर रही हूँ। मैं पटना बिहार की हूँ, कंकड़बाग मेरा होम टाउन है।
1: वाह कीर्ति, बहुत खूब, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतने से ही हमें पता चल गया, और ऐसा कहा जाता है ये आर्केड के बच्चों में ही आता है। बहरहाल हमारे सुनने वाले बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, आप BCA का कोर्स कर रही हैं, आप BCA के बारे में पहले थोड़ा सा हमें बताइए।
2: BCA एक ऐसा कोर्स है जहां हमें कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में समझाया जाता है, बताया जाता है। इसके फर्स्ट ईयर के अनुभव से मुझे पता चला है कि हमें कंप्यूटर के हर बेसिक्स के बारे में भी बताया गया है और बहुत अच्छे से समझाया गया है यहां पे। इसमें आगे चल के हमें बहुत सारे अलग अलग कोडिंग्स, और यहाँ तक कि अगर हमारे पास बहुत सारे अलग ऑप्शंस भी हैं, जैसे अभी बीच में हमारा पाइथन और HTML का एग्जाम्स भी हुआ था, जिसमें हमें सर्टिफिकेट भी मिला था हमारे स्कोर के अकॉर्डिंग।
1: आर्केड बिजनेस कॉलेज में क्या चीजें आपको अच्छी लगती है?
2: हाँ, आर्केड बिजनेस कॉलेज का मुझे सबसे अच्छा चीज ये लगा कि यहाँ के फैकल्टी ना सिर्फ पढ़ाते हैं, ना सिर्फ लेक्चर देते हैं, बल्कि हमें प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं और जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ उस चीज का फिजिकल मॉडल्स भी हमें दिखाते हैं, हमें उस चीज से भी गाइड करते हैं कि हमें कैसे क्या करना है और कैसे। यहाँ तक कि अभी बीच में मेरे लैपटॉप में मुझे इश्यूज आ रहे थे, तो यहाँ के फैकल्टीज ने मुझे सामने बैठा के वो चीज़ सिखाया कि अगर मेरे PC में कोई प्रॉब्लम है जो मैं खुद से टैकल कर सकती हूँ तो उसे कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ के फैकल्टीज, यहाँ की डायरेक्टर मैम, डायरेक्टर सर और HOD मैम भी हमारी काफ़ी सपोर्टिव हैं।
1: यानी हम कहें कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में एकदम कंफर्टेबल माहौल है, एकदम अपनापन है और दोनों एक दूसरे से मिलजुल करके अपनी पढ़ाई पठन पाठन का कार्य आगे बढ़ाते हैं।
2: यहाँ का एटमॉस्फेयर काफी फ्रेंडली है, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में बिल्कुल भी डर का माहौल नहीं है। टीचर्स से हम फेस टू फेस इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि अगर हमारे क्लासेस छूट जाते हैं तो टीचर्स हमें अलग से बैठा के वो हमारे छूटे हुए क्लासेस के बारे में समझाते हैं कि उस टाइम में क्या पढ़ाई हुआ, कैसे वो लेक्चर जो हमारा छूटा है उसे कैसे कवर करें और कैसे हम अपने एग्जाम्स के टाइम

0: में भी अपने आप को शांत रख के अपना एग्जाम अच्छा दे सकते। आर्केड बिजनेस कॉलेज में हमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, इसलिए बीसीए बीबीए ये सब करने के लिए काफी अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है।
1: धन्यवाद, थैंक यू आपका। तो सुना आप लोगों ने, पूरा बिहार स्टूडेंट में अगर ये कॉन्फिडेंस दे पा रहा है कोई भी इंस्टीट्यूशन जैसा कि आर्केड बिजनेस कॉलेज दे रहा है, तो सफलता झक मार के भी उस स्टूडेंट उस युवा के पास आएगी ही आएगी। बहरहाल हम ये कहना चाहते हैं कि बीसीए और बीबीए की पढ़ाई बहुत ही उम्दा है, जब करियर चुनिए तो इसको आंख के सामने रखिए और कहीं कोई समझ में ना आए तो 27 वर्षों से बीबीए और बीबीए के कोर्स को लेकर आगे बढ़ रहा है जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थान है। और ये कार्यक्रम उड़ान जिसकी तरफ से हम लेकर आ रहे हैं आर्केड बिजनेस कॉलेज, उसका ये नंबर है, इस पर आप बात कर सकते हैं 7520800 ये नंबर है, इस पर बातचीत कीजिए।
2: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
3: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
2: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
3: आर्केड बिजनेस कॉलेज, जहां से बीसीए या बीबीए कोर्सेज कर सकती हो।
2: फिर तो आर्केड से ही बीसीए या बीबीए करना सेफ है।
4: आर्केड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड़, पटना। कॉल करें 7520800800, याद रखें 7520800800।
1: मिलिए अगले स्टूडेंट से, अपना नाम बताइए और कहां के रहने वाले हैं, क्या कर रहे हैं?
5: मेरा नाम राज गुप्ता है। सो आई एम करेंटली अ सेकेंड ईयर बीसीए स्टूडेंट आर्केड बिजनेस कॉलेज। सो बेसिकली मैंने कॉलेज बेसिकली इसलिए ज्वाइन किया था, आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम द आशीष आदर सर। मैंने उनकी वीडियो देखी थी जो स्टॉक्स में, एंड ही इज़ अ करियर काउंसिलर सिंस फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स। तो मुझे उनका जो विजन और पैशन था टूवर्ड्स द एजुकेशन, बच्चों को हर लोगों को एजुकेशन पहुंचाना सिटी और टीयर 3 टीयर 4 सिटीज में, वो मुझे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड करा।
1: राज, आपने कॉलेज चुन लिया, आशीष आदर जी से इंस्पायर हुए, बहुत कुछ आपने R&D की, सर्च किया, उसके बाद आर्केड बिजनेस कॉलेज को आपने चुना। लेकिन बहुत सारे युवा साथी जो आपके हम उम्र हैं, घर पर बैठे हैं या आपसे कुछ छोटे होंगे, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो बीसीए और बीबीए का कोर्स राजेश में जो मैं हूं, कहता हूं कि बहुत ही अच्छा है, आप अपनी तरफ से उनको क्या सजेशन देना चाहिएगा?
5: सो बेसिकली आई थिंक डिसीजन तो ले लेना चाहिए, बट अगर आपने ट्राई सोचा ही है कुछ करने का ही, सो इट्स अ बेस्ट टाइम टू ज्वाइन इट।
1: एंड जॉब अपॉर्चुनिटी
5: प्लेसमेंट के लिए, सी मेरा तो टेक में मेरे को जाना नहीं है, मेरे को तो नॉन टेक में ही जाना था, बट प्लेसमेंट जो अब तक हुआ है वो काफ़ी बेटर है और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के, तो आई थिंक कोई अगर डे वन से अगर लगा रहे सो वो डेफिनेटली अच्छा ही करेगा।
6: मेरा नाम कुमकुम गुप्ता है, मैं पटना बिहार की रहने वाली हूँ, मैं बीसीए वोकेशनल कोर्स कर रही हूँ। आर्केड बिजनेस कॉलेज का एक परमानेंटली अपलीटेड कॉलेज है और यहाँ के जो टीचर्स फैकल्टीज होती काफ़ी कॉपरेटिव है और यहाँ काफ़ी स्किल्स टेक वगैरह ये सब के लिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस वगैरह ये सब किया जाता है और पहले से यहाँ पे इंटरव्यू ये सब के लिए भी प्रिपेयर किया जाता है। स्टूडेंट यदि इफर्ट करेगा तो यहाँ प्लेसमेंट ऑप्शंस भी हैं, काफ़ी कंपनीज भी आती हैं यहाँ, और बच्चा इफर्ट करेगा तो हाँ 100% ही उसका प्लेसमेंट हो जाएगा।
1: थैंक यू कुमकुम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो सुना आपने, स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, कहते हैं ना कि स्टूडेंट ही आईना होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन का। और हमने पिछले एपिसोड में भी और इस एपिसोड में भी हमने जो बातचीत की थी स्टूडेंट से, आर्केड बिजनेस कॉलेज, बीसीए, बीबीए, एनवायरमेंट, प्लेसमेंट, सारी चीज़ों को लेकर वो बातें हमने आप तक रख दी। और आपसे हम यही कहते हैं कि जब भी करियर का चुनाव कीजिए, एक ऐसा करियर चुनिए जिसमें आपको कंफर्टेबली एक जॉब मिल जाए, खड़े होने की जगह मिल जाए, और बीसीए और बीबीए उसी में से एक है जिनकी तरफ से ये कार्यक्रम हम ला रहे हैं। आर्केड बिजनेस कॉलेज बहुत ही उम्दा कॉलेज है, 27 वर्षों से लगा है इसी क्षेत्र में आप युवाओं के लिए। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होना तो आप जरूर बात कर लें 7520800800 पर, 7520800800 ये नंबर है आर्केड बिजनेस कॉलेज का। अगले शनिवार को अगले एपिसोड में जब हम आएंगे तो और भी स्टूडेंट की बातें हमने रखी है, बातचीत जो किया था आप तक पहुंचाएंगे। तब तक करियर को संभल कर चुनने के लिए अपने लोगों से सजेशन लीजिए और हमें इस नंबर पर फोन भी कर सकते हैं 7520800800 पर। राजेश को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
7: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आर्केड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान, और आइए एक बार फिर से हम आपको लिए चलते हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम हेलो मनपसंद। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का दूसरा और आखिरी भाग लीजिए, पेशे खिदमत है।
1: हेलो मनपसंद।
2: हेलो मनपसंद, नमस्कार सर।
1: नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं?
2: मैं गुजरात से धीरज जबारी बात कर रहा हूं। सर आप कैसे हो?
1: हम यहां ठीक हैं।
2: सर मुझे गाना सुनना है।
1: कौन सा गाना?
2: अक्षियों की जरूर किसी फिल्म का गाना है, और शीर्षक गाना है, टाइटल सॉन्ग हेमलता के।
1: अच्छा ठीक है, गाना तो हम आपको सुनवा देंगे ही, क्या करते हैं?
2: सर मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, और समय मिलने पर आकाशवाणी से जुड़ता हूँ। सासाराम में मेरे ख्याल से मेरा पहला ही कॉल होगा, क्योंकि मैं कई बार प्रयत्न किया, लेकिन जो लोकप्रिय कार्यक्रम होता है उसमें लाइन बिजी रहती है, ये इसका प्रमाण है सर।
1: हाँ हाँ, वो देश भर से कॉल आते रहते हैं ना, खुश नसीब है कि आपका कॉल लग गया।
2: जी सर,
1: हम आपको सुनवा रहे हैं आप ही के पसंद पर ये गीत।
2: नाम ले सको सर?
1: हाँ लीजिए शौक से।
2: तो ये हमारे गुणवंत कड़ू है, लोकेंद्र वर्मा जी, गौतम राय बोली जी, तुकाराम दादर जी है, फिर गंगाधर जी है, ये सब दोस्तों के साथ सर आप भी ये गाना सुनोगे।
1: अपने दोस्तों के साथ सुनिए ये गीत।

हेलो मनपसंद। नमस्कार, कौन सा आप बोल रहे हैं? हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा, उदयपुर राजस्थान से बोल रहे हैं। नाम में तो टाइटल टेलर है, कौन सा काम करते हैं? अच्छा, इसीलिए अपना टाइटल भी टेलर रख दिए। अच्छा, किस चीज़ की सिलाई करते हैं, जेंट्स या लेडीज या दोनों? जेंट्स स्पेशलिस्ट हैं, कोट पैंट भी सी

हेलो मनपसंद। नमस्कार, कौन सा आप बोल रहे हैं? हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा, उदयपुर राजस्थान से बोल रहे हैं। नाम में तो टाइटल टेलर है, कौन सा काम करते हैं? अच्छा, इसीलिए अपना टाइटल भी टेलर रख दिए। अच्छा, किस चीज़ की सिलाई करते हैं, जेंट्स या लेडीज या दोनों? ओ, जेंट्स स्पेशलिस्ट हैं, कोट पैंट भी सीते होंगे। आकाशवाणी सासाराम आप सुनते हैं, के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। और हमारे कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं इस फरमाइशी कार्यक्रम के अलावा? अच्छा, फरमाइशी कार्यक्रम सुनते हैं। आज क्या सुनवा दिया जाए कार्यक्रम में, कौन सा गाना? जी, चोरी चोरी फिल्म से कौन सा गीत सुनवा दिया जाए? चलिए, बहुत ही अच्छी पसंद है आपकी। ठीक है, तो हम आपकी पसंद पर सुनवा रहे हैं ये गीत।

0: हेलो मनपसंद। नमस्ते, कौन सा बोल रहे हैं?
1: सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बसोड़ा तहसील नागपुर जिला उज्जैन से।
0: क्या करते हैं प्रेम जी?
1: जी मैं खेती किसानी का काम करता हूँ।
0: अच्छा, आपके यहाँ किस चीज़ की खेती लगी हुई है आजकल या हो रही है?
1: जी आजकल सोयाबीन की फसल लगाई हमने। हाँ
0: अच्छा, आपके यहाँ सोयाबीन की खेती होती है।
1: जी, प्रचुर मात्रा में सोयाबीन पैदावार होता है हमारे यहाँ पर।
0: तो अभी उसमें उत्पादन हो रहा है?
1: हाँ जी, मेरी फसल लगाई अभी 15 दिन की हो चुकी है फसल हमारी।
0: तो आपके जो फसल है वो लोकल में बिक जाता है या बाहर भेजते हैं?
1: यहाँ से सप्लाई होती है, आगे जाता है फिर मार्ग। सर
0: सोयाबीन का तो बाजार भाव अच्छा रहता है
1: बताना चाहूंगा, मोबाइल ऐप पे कार्यक्रम सुन रहा हूँ आपका।
0: जी। धन्यवाद, शुक्रिया। देश भर में और देश के बाहर के लोग भी ऐप के जरिए सुनते हैं हमारे कार्यक्रम को। तो आज क्या सुनवा दिया जाए कार्यक्रम में, कौन सा गाना? तो चलिए, हम आपके लिए पेश कर रहे हैं यही गीत।
2: धीरे

0: हेलो मनपसंद।
1: नमस्कार
0: हाँ नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
1: सर जी, मैं तरिष्ठा निगार बोल रही हूँ जी।
0: सगुप्ता निगार, कहाँ से बोल रही हैं?
1: झारखंड गोमला से बोल रही हूँ जी।
0: गुमला से।
1: आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है,
0: हाँ, आपकी
1: हमें
0: चिट्ठी
1: गाना सुना
0: भी,
1: दीजिए। पहली
0: आपका मैसेज भी आता है मेल के जरिए कार्यक्रम में।
1: बार भी लगा चुकी हूँ 1 महीना पहले। हाउस
0: अच्छी बात है। क्या करती हैं सगुप्ता जी?
1: वाइफ हूँ जी।
0: अच्छा, हाउस वाइफ हैं, तो काम करते
1: हाँ, हमारा
0: करते
1: ससुराल है, सासाराम है हमारा मायका है
0: इसलिए सासाराम से इतना लगाव है।
1: जी। वही हमारा मायका है चौक बाजार।
0: ठीक है, काम करते करते रेडियो सुनती रहती हैं। हाँ,
1: आपके
0: रेडियो की यही तो खूबी है कि काम करते करते रेडियो सुनते रहिए, आपके काम में बाधा नहीं डालता है रेडियो।
1: मन लगा रहता है तो घर में अकेले रहते हो तो बच्चे चल जाते हैं। पत्थर
0: कौन सा गीत सुनवा दिया जाए आज?
1: के
0: अच्छा, पत्थर के सनम, कौन सा गीत?
1: सनम बता दूं क्या लाना, ये छोटा सा नजराना, या याद
0: चलिए
1: रखोगे ये भूल जाओगे।
0: सगुप्ता जी, बहुत ही अच्छी पसंद है, तो चलिए हम आपको सुना रहे हैं ये गीत।

0: हेलो मनपसंद।
1: हेलो मनपसंद
0: हाँ, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: जी, नमस्कार
0: नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? कौन साहब बोल रहे हैं?
1: जी। मैं राजू यादव, ग्राम उपरेखा, श्रीरामपुर डेरा, सरीला राठ, मुस्करा, हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश।
0: जी, आपने तो अपना पूरा पता बता दिया। क्या करते हैं राजू कुमार जी? जी, बहुत ही अच्छी बात है। और आपका शायद पहले भी फोन लग चुका है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: कॉल है उठता मेरे।
0: चलिए, स्वागत है आज भी आपका। खेती बाड़ी करते हैं, किस चीज की खेती हो रही है?
1: इस समय मूंगफली की बुवाई हो चुकी है, 125 दिन में तैयार हो जाएगी।
0: बुआई हो चुकी है।
1: हाँ, बुवाई हो चुकी है, अब 125 दिन में तैयार हो जाएगी।
0: कौन सा गीत सुनवा दिया जाए?
1: गाना तो सर जी हम उसका सुनेंगे, मूवी का नाम रहेगा राजा हिंदुस्तानी।
0: जी, कौन सा गीत?
1: हाँ भाई,

0: इस गाने के साथ ही कार्यक्रम हेलो मनपसंद अब समाप्त होता है। श्रोताओं, कार्यक्रम हेलो मनपसंद के लिए हम रिकॉर्डिंग करते हैं हर बुधवार दिन के 11 बजे से 12 बजे के बीच। तो अपनी पसंद का गाना सुनने के लिए आप हमें हमारे इस फोन नंबर पर रिकॉर्डिंग करा सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0618422110। श्रोताओं से एक आग्रह कि जिन श्रोताओं का कॉल आज शामिल हुआ है वे कृपया अगली बार कॉल ना करें ताकि हमारे दूसरे श्रोताओं को भी मौका मिल सके।
1: 77वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु, प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान और अमरीका का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
2: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, फिल्म मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
1: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
3: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमीदास और रूपश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकुम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का

0: पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। कल की 2898 AD को भरपूर मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मारन को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म, लहरी को सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म, मिथ्या को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म, सुनीता को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म और ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना UBT सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी गई है। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा कारखाने में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह कारखाना रामोल गात्राड रोड पर है।
2: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वालों के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरो स्पेस ने किया है। एक रिपोर्ट।
3: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। यह अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने विक्रम 1 से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है।
4: टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री
5: आज देश में पहली बार एक निजी रॉकेट ने सफलतापूर्वक एक सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और इससे युवाओं में आर्थिक विकास और

0: वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना बढ़ती है। वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है।
1: इट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मोमेंट।
2: हुर्मुज जलडमरू मध्य पर संघर्ष बढ़ने के कारण अमेरिका और ईरान ने आज हमले तेज कर दिए। कुवैत में हमलों से भारी तबाही होने की खबर है। वहां ईरान ने वाटर डिसेलिनेशन संयंत्र और एक तेल सुविधा केंद्र पर हमले किए। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और बिजली उत्पत्ति बाधित हुई है। पिछले दो दिन में डिसेलिनेशन संयंत्र पर यह दूसरा हमला था। पेयजल के लगभग 90% हिस्से का डिसेलिनेशन के जरिए आने के कारण देश में चिंताएं बढ़ गई है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी हमलों में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 घायल हुए हैं। रूस के अधिकारियों ने बताया कि रूस के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर के दो विशाल गोदामों पर यूक्रेन ने रात को ड्रोन हमले किए। एक गोदाम रूस के तांबो ओब्लास्ट क्षेत्र में और दूसरा मॉस्को में है। ओब्लास्ट क्षेत्र के कोटोवस्क में रात्रि पाली में काम करने वाले 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 25 घायल हो गए। वहीं मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टल शहर में एक व्यक्ति मारा गया और 36 घायल हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की पत्नी चिनम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चिनम्मा अपनी विनम्रता और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जनप्रिय थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं श्री देवेगौड़ा और उनके पूरे परिवार के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चिनम्मा शांत स्वभाव, गरिमा और परिवार के प्रति अटूट समर्पण की प्रतीक थी। वे श्री देवेगौड़ा जी के लंबे सार्वजनिक सेवा काल में एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी रहीं। श्री देवेगौड़ा HD कुमारस्वामी और पूरे शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कामना की कि ईश्वर उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस निर्णय की घोषणा की और कठुआ के लोगों को बधाई देते हुए इस कदम को शहीद के बलिदान और राष्ट्र के प्रति सेवा को श्रद्धांजलि बताया। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वज वाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT ऊषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मीराबाई चानू लगभग एक दशक से भारत की अग्रणी भारोत्तोलक रही हैं। उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और उसके बाद 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यूजर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम

0: में हराया। दूसरे गेम में चेन यूफी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र अड़ापा विजय अनुष्ठान आज शाम पुरी के श्री गुंडिचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। यह वार्षिक रथ यात्रा के सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समारोहों में से एक है। रथ यात्रा के सफल समापन के बाद कल पवित्र त्रिमूर्ति को वैदिक मंत्रों, भक्ति गीतों और सदियों पुराने मंदिर अनुष्ठानों के बीच पारंपरिक पहंडे जुलूस में उनके संबंधित रथों से श्री गुंडिचा मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य पर अमेरिका और ईरान का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार संध्या आकाशवाणी के हमारे दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में रात के 9 बज चुके हैं। अब लीजिए सुनिए भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक धारा।